रेडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाश

आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की तिथि 22, तदनुसार 13 जुलाई सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:49 होने को हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा।

简单的。देव आलसी पुकार।

0: आ रोगरोधी किस्म के बुआई करबाक चाही। किसान भाई जखन फल्ली भूरा सूखा पड़ जाए तखन पौध के काट कर सुखा ली, डंटल के पीट कर बिया के अलग कर ली। आधुनिक या वैज्ञानिक तरीका से उन्नत खेती करे पर 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज होते है। अही के संग आजू कृषि चर्चा संपन्न भेल। शांतनु कुमार मिश्र के आज्ञा दिल जाओ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा। विषय था खरीफ अरहर की खेती और जानकारी दे रहे थे शांतनु कुमार मिश्र। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैंबर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश के

0: राम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौ वहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंदाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा।
3: आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम जानेंगे उच्च रक्तचाप लक्षण और सावधानियों के बारे में। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता। डॉक्टर AK गुप्ता साहब, ये हाई BP जब हम कहते हैं, उच्च रक्तचाप, ये है क्या?
4: सामान्य रक्तचाप का मतलब होता है 120/80 से कम। अगर किसी भी व्यक्ति को 120/129 से ऊपर में सिस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी 80 से कम है तो वो होते हैं प्री हाइपरटेंसिव। और उच्च रक्तचाप का मतलब हुआ अगर आपका बीपी 130/80 से ज्यादा है तो आपको उच्च रक्तचाप है और आपको इसका इंतजाम बात करना चाहिए।
3: क्या उच्च रक्तचाप की समस्या किसी खास उम्र में होती है या फिर ये किसी को भी हो सकती है?
4: उच्च रक्तचाप हम लोग दो टाइप में जानते हैं। एक का नाम होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरे का नाम होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब होता है इसमें कुछ न कुछ कारण मरीज को जरूर होता है। अगर किसी बच्चे को अपने किडनी की बीमारी हो, किडनी के आर्टरी की बीमारी हो, क्वाक्टेशन ऑफ एओर्टा हो, या इस तरह की शरीर में या हार्मोन की कोई बीमारी हो, तो बीपी कम ही उम्र में बहुत हाई हो सकता है, इसको सेकेंडरी

0: हाइपरटेंशन कहते हैं, लेकिन इसकी वारदात बहुत कम है, लेस देन 5%। 95% ऐसे लोगों को होती है बीपी जिनका कॉज हमको अंदाजा नहीं होता है, और वो ज्यादातर 40 साल के बाद लोगों को होती है।
1: क्या इसके कुछ लक्षण हैं या फिर ये चुपचाप बीपी बढ़ी हुई होती है?
0: लक्षण
1: सालों साल
0: ज्यादातर लोगों में जो हम लोगों ने देखा है बीपी के पेशेंट को, लक्षण इसमें नहीं होता है। कुछ लोगों को जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं किसी अन्य कारण से, उस समय बीपी उनको अपना देखा गया तो बीपी बहुत हाई था। कुछ लोगों की मान्यताएं हैं कि माथा में दर्द या भारीपन या चक्कर हो या कमजोरी हो तो बीपी होगा, लेकिन इस तरह के संख्या बहुत कम है। ये मान के चलिए कि ये साइलेंट अपना किलर है, इसमें लक्षण का इंतजार करना अकलमंदी नहीं है।
1: तो सवाल ये है कि डॉक्टर की सलाह यानी चिकित्सक की सलाह लोग कब लें?
0: उसके बारे में रिकमेंडेशन है कि अगर आपके फैमिली में किसी भी व्यक्ति को हार्ट की बीमारी हो, हाइपरटेंशन हो, तो आप 18 साल की उम्र से जागरूक हो जाएं, साल में एक बार अवश्य बीपी अपना जानें। बीपी, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और वेट, इतना साल में एक बार आपको जानना चाहिए। अगर फैमिली में इस तरह की कोई बात नहीं है तो 30 साल की उम्र के बाद आपको साल में एक बार अपना चेकअप ये सब जरूर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप तंबाकू से रहते हैं दूर, तो समझिए कि 95% उम्मीद है कि हार्ट अटैक लगवा से अपने आप को आप बचा पाएंगे।
1: दवा की जरूरत कब है?
0: दवा की जरूरत है कि अगर लगातार बीपी 130/80 से ऊपर रहता है, 134/84, 140/90, तो एज ए फिजिशियन, एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हम लोग लाइफ स्टाइल में कुछ उनको बताते हैं परिवर्तन। उससे एक दो महीने के इस्तेमाल के बाद अगर बीपी नहीं कंट्रोल होता है तो हम लोग दवा स्टार्ट कर देते हैं।
1: अगर किसी व्यक्ति की बीपी हमेशा हाई रहती है तो क्या उन्हें जीवन पर्यंत दवा खाने की जरूरत पड़ सकती है?
0: ऑलमोस्ट उनको दवाई खाना पड़ता है।
1: हाई बीपी की समस्या झेल रहे लोगों में किस तरह की स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे उत्पन्न हो सकते हैं?
0: खासतौर से हार्ट की जो भी समस्या है उसकी माँ है ये। सारी दुनिया में अपने विद्वानों का सारा फोकस बीपी पर है। वो मान के चलते हैं कि बीपी को अगर आपने कंट्रोल अपना कर लिया तो आप जैसे हार्ट अटैक, हार्ट में स्टेंट का लगना, बाईपास सर्जरी का होना, किडनी का फेल होना, इसमें काफ़ी हो जाएगी कमी। इतनी सारी रोगियों का संख्या का बढ़ना के पीछे एक ही कारण है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन।
1: कौन कौन सी सावधानियां हैं जिसकी जरूरत हाई बीपी के पेशेंट्स को है?
0: सावधानियों में सबसे जो आवश्यक है कि अपने वेट को नियंत्रण में रखें, खाने में नमक की मात्रा को घटाएं, उसमें सबसे आवश्यक है कि बाहर की जो अपने बनी हुई चीज है, प्रोसेस्ड फूड है, या जो पैकेट में आती है नमकीन वगैरह सब चीज, स्नैक्स की चीज, बेकरी प्रोडक्ट, इसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है। घर का अपना बना हुआ शाकाहारी खाना खाएं तो बहुत अच्छी बात है, और घर के खाने में भी कुछ परहेज करना पड़ेगा, चटनी, चाट, पापड़, अचार जिसमें अधिक सॉल्ट है उसको नहीं खाएं। हरी सब्जी, हरे फल और शाकाहारी खाना खाएंगे तो आपको नमक कम मात्रा में होगी। और नमक का अगर खाने की घर में बात हो तो अगर लोग सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, खास करके जिनको बीपी है तो उनके लिए ये फायदेमंद है। मानसिक अपना तनाव को कम करें, और सबसे जरूरी चीज़ है कि अपनी जीवन शैली को सक्रिय बनाएं। अभी का सेडेंटरी हैबिट का मुख्य कारण है मोबाइल फोन का देखना कम करें, और उस वो समय एक्सरसाइज, योगा, टहलने में बिताएं तो आपके लिए ज़्यादा ठीक होगा।
1: डॉक्टर AK गुप्ता साहब, आपने अपना समय हमारे लिए निकाला, आपका धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं ये देशगान।

ये भक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना।

भरत भाई कपि से उड़िन हम नाही। ये भक्तिगीत अभी आप सुन रहे थे पंडित जसराज के स्वर में। हमारे कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी।

पुरुषोत्तम दास जालोटा के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम वंदना अब समाप्त हुआ। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान। आज के प्रसंग में आप सुनेंगे महेंद्र कपूर और शोभना राव को।

ब्रह्मा ने सब प्रकार से योग्य पाकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया था। इतना बड़ा अधिकार पाकर दक्ष को सत्ता का मद हो गया और उन्होंने शिव का अपमान करने की धृष्टता कर दी। जब यक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसमें भगवान शंकर को निमंत्रित ना करके उस अपमान को जैसे दोहरा कर दिया। यही कारण था कि जब

पार्वती ने पिता के यज्ञ में उपस्थित होने के लिए जाना चाहा, तो शिव ने बिना निमंत्रण जाना सती के शील स्नेह अथवा मान मर्यादा के अनुरूप नहीं पाया। जब सती ने पिता के यज्ञ में जाने की जिद ही कर दी तो भगवान शंकर ने अपने प्रमुख गणों के साथ उन्हें विदा कर दिया। उधर पिता ने सती का कुशल क्षेम तक नहीं पूछा। यज्ञ में सभी देवताओं के भाग की सामग्री थी, किंतु कहीं भी शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। पति की ये उपेक्षा देख अपमान से सती के अंग प्रत्यंग जल उठे। उनके क्रोध की सीमा न रही। इस मदांधता तथा नादानी के लिए उन्होंने पिता की भर्त्सना ही नहीं की, बल्कि ग्लानि तथा क्रोध के वशीभूत हो

समुझी और सहे पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा जस यह भय।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। आज के प्रसंग में स्वर महेंद्र कपूर और शोभना राव के थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें, आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। कार्यक्रम नमस्कार मिथिला आप सुनेंगे अब से कुछ देर बाद, यानी प्रातः 7:05 से। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण समय होगा 9:10 पर, जिसे हम अपने पटना केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे।

फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे दिन में 10 बजे, 12 बजे, दिन के 1:15 पर और अपराह्न 2:30 पर। विद्यापति गीतों का समय होगा दिन में 10:30 पर, संध्या 6:10।

दिन के 11 बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का हमारा कार्यक्रम। कलाकार होंगे पंडित जसराज। महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार लेकर हम उपस्थित होंगे दिन में 12:30 पर। अपराह्न 3 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। शाम 5 बजे हमारी दूसरी सभा के आरंभ में आप सुनेंगे युवाओं के लिए हमारा कार्यक्रम तरुण कुसुम। मैथिली संवाद आप सुनेंगे संध्या 6:25 पर। इसके तुरंत बाद संध्या 6:30 से आप सुनेंगे हमारा सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम गांव घर। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे अनुभव के चश्मा सॉन्ग। कार्यक्रम गांव घर में आप सुनेंगे आज एक प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद खेती गृहस्थी। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7 बजे। कुछ फिल्मी गाने हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:52 पर। रात 8:15 पर समय होगा मैथिली कार्यक्रम सिंहरहार का। पब्लिक स्पीक ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 से। फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी आप सुनेंगे रात 10 बजे। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: निःशुल्क दूरभाष संख्यायाः 1800 1170 इति माध्यमेन अस्य कार्यक्रमस्य कृते स्वकीय परामर्शान् प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। जनाः तावत् नरेन्द्र मोदी ऐप इत्यस्य अथ च MyGov इति मुक्त मञ्चस्य अन्तर्जालीय माध्यमेन च स्वकीय परामर्शान् दातुं शक्नुवन्ति। अस्य आगामिनः भागस्य कृते परामर्शाः अस्य मासस्य 24 दिनांकं यावत् स्वीकरिष्यन्ते। केन्द्रीय सहकारिता मन्त्री अमितशाहः अद्य गुजरात राज्यस्य गान्धीनगरे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी APMC इत्यस्य अमृत महोत्सवावसरे नूतनस्य शाक उपविपणन केन्द्रस्य उद्घाटनं विधास्यति। सहकारिता मन्त्रालयानुसारम् अस्मिन् कार्यक्रमे श्रीशाहः एक पेड़ मा के नाम इत्यभियानान्तर्गतं पादपारोपणं विधास्यति। सहैव APMC संस्थायाः अमृत महोत्सवस्य संस्मरणाय संकलितां एकां स्मारक पुस्तिकां विमोचयिष्यति। अत्रावधौ श्रीशाहः दहेगाम APMC परिषदः सदस्यैः सह अपि वैचारिक विमर्शं साधयिष्यति। गतदिने ओमान तटे भारतीय नाविक युक्ते GFS गैलेक्सी इत्याख्ये वाणिज्यिक पोते आक्रमणात् परं नवदिल्ल्या पश्चिमेशिया क्षेत्रे उत्पातस्य शमनाय स्वकीयम् आह्वानं पुनः प्रतिपादितम्। आक्रमणस्य तीव्र निन्दां कुर्वता विदेश मन्त्रालयेन निगदितं यत् पोते स्थितेषु 11 भारतीय नागरिकेषु 10 नागरिकाः एतावता सुरक्षिततया निष्कासिताः, अपरत्र एकः नाविकः अधुनापि विलुप्तः। मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् ओमान देशे स्थितः भारतीय दूतावासः स्थिते सूक्ष्मावलोकनं करोति। सहैव प्रचलत्सु रक्षाकार्येषु ओमान देशस्य प्राधिकारीभिः साकं सक्रिय समन्वयं साधयति। नवदिल्ल्या वाणिज्यिक नौवहनेषु प्रचलत्सु निरन्तर आक्रमण प्रसंगेषु स्वकीया गभीरा चिन्ता प्रकटिता। अनेनैव सह भारतस्य अस्य राजनैतिक समाधानाय वार्तानां शीघ्र सम्पूर्त्यै याचना विहिता, येन अस्मिन् क्षेत्रे पुनः शान्तिः स्थिरता च प्रवर्तेत। फीफा विश्वचषक पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायां सर्वेषां प्रागुपान्त्य चरणात्मकानां द्वन्द्वानां समाप्त्यनन्तरम् उपान्त्यचक्रस्य रूपरेखा पूर्णतः सिद्धा सञ्जाता। प्रथमायाम् उपान्त्यस्पर्धायाम् आगामि बुधवासरे फ्रांस स्पेन दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविता। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं रात्रौ 12:30 समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक

विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठकें भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। राज्य स्तर के विजेताओं को 12 और 13 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाले फाइनल में

0: शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। राज्य स्तर के विजेताओं को 12 और 13 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाले फाइनल में भाग लेने का अवसर मिलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जांच की गई। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। इन तीनों परीक्षणों से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वो डूबेगा या उल्टेगा नहीं। कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार में लगी आग से 27 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 9 पुरुष और 18 महिलाएं शामिल हैं। 60 से अधिक लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री अनुतिन चरनविराकुल ने संवाददाताओं को बताया कि 27 शव बरामद कर लिए गए हैं। आग लगने के कारणों की जांच चल रही है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। प्रस्तुत है प्रातःकालीन दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।
2: नमस्कार मिथिला। नमस्कार श्रोता लोकन, आज नमस्कार मिथिला कंक में हम रंजीत और हमारे संग उपस्थित कुशल हूँ कमर। नमस्कार
3: रंजीत जी, आपको भी मेरा नमस्कार और साथ ही साथ नमस्कार मिथिला सुनने वाले तमाम श्रोताओं को कुशल का प्यार भरा नमस्कार।
2: और जना कि श्रोता लोकन के बुझल छन कि कार्यक्रमक शुरुआत हम अपन करै छी सुविचार सँ, तो सबसँ पहले आजुक सुविचार।
3: आज का सुविचार है चाणक्य नीति से सफलता के मूल मंत्र। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है और हर परिस्थिति में ठंडे दिमाग से सोचता है, वही जीवन में बड़ी सफलता हासिल करता है। यह है चाणक्य नीति।
2: निश्चित तौर पर देखियो जो सफलता प्राप्त करवा के लिए निरंतरता और धैर्य के सबसों बेसी जरूरत जीवन में होइत अछि। ओना किताबक बाद किताबे तक निक लागै छै। किताबक लिखल जे शब्द छै ओ लोक के जीवन में उतारबा में बड़ा कठिन होइ छै, लेकिन जे व्यक्ति ओकरा आत्मसात करै छथि ओ सफलता के शिखर पर जरूर पहुँचै छथि। और सुविचार के बाद हम लोकन सीधा रुख करै छी आजुक दिनक इतिहास पर, जे आजुक दिन की खास महत्व रखैत अछि हमरा राष्ट्र में, हमरा समाज में। तो आओ ई जानकारी साझा कऽ रहल छथि कुशल कुमार, जे 13 जुलाई की खास महत्व हमरा लोकन के रखैत अछि।
3: आज के दिन सन 1931 में कश्मीर में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे 22 लोगों को डोगरा सैनिकों द्वारा मारा गिराया गया। इन शहीदों के सम्मान में इसे कश्मीर शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। सन 1793 में आज के दिन फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कट्टरपंथी नेता और पत्रकार जीन पॉल भारत की उनकी बाटप में हत्या कर दी गई थी। सन 1985 में आज के दिन इथियोपिया के भीषण सूखे और भूखमरी से पीड़ित लोगों की मदद के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रॉक कॉन्सर्ट लाइव एड आयोजित किया गया था, जिसे 1 अरब से अधिक लोगों ने देखा था। 1994

0: 1977 में आज के दिन हेंडिगले ने भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला वनडे खेला। सन 1998 में आज के दिन लिएंडर पेस का पहला एटीपी खिताब जीता। लिएंडर पेस ने हाल फेम टेनिस चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचा था। ब्राजील में जर्मनी ने अर्जेंटीना को हराकर आज ही के दिन सन 2014 में विश्व कप जीता था। और आज ही के दिन सन 1932 में अभिनेता बीना राय का जन्म हुआ।
1: तो इछल आजुक दिन के इतिहास जो श्रोता लोगों जानकारी साझा कलूँ और बात करे छी आजुक नमस्कार मिथिला के अंक में जो हमारा लोग आई है श्रोता लोग दूटा विषय पर बात विचार विमर्श करो। पहल जो बात करबा हम लोग आलेख समाज का आईना सिनेमा भारतीय सिनेमा और समाज का आईना और दोसर बात हम लोग रोजगार के क्षेत्र से जुड़ल विषय पर करब वो विषय है हम लोग के मधुमक्खी पालन से आत्मनिर्भरता की राह। तो सबसे पहले हम आकाशवाणी दरभंगा के परिवार के तरफ से समस्त श्रोता बंधु के एक अपील करी छे जे बारिश के मौसम लगभग आ गए। मानसून आबे में थोड़े के देर जरूर भेल मुदा बारिश छिटापुटी तरफ से भो रहल तो प्रकृति के बचाव के लिए हमरा लोकन के ज्यादा से ज्यादा गाछ वृक्ष लगेबाक चाही जैसे प्रकृति बाँचल रहत संतुलित रहत। और ये बेर बेर मानसून के जे मौसम वैज्ञानिक के तरफ से कहल जाते हैं जैबेर मानसून लेट आबि रहल है 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन तो जो पर्यावरण संतुलित रहत बेसी गाछ वृक्ष हमरा लोकन अगर लगेने रहब तो हम उम्मीद करे छी जे पूर्व के भांति मानसून सेहो अपना समय पर आयत और सब मौसम का आनंद हमरा लोकन लेत रहब।
0: तो आगे हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे रंजीत जी कि मौसम और जैसा कि अभी आपने कहा भारतीय सिनेमा समाज का आईना। लेकिन जब कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग करते हैं तो सबसे पहले करते हैं मैथिली सुगम संगीत थे उसके बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे।
1: तो आओ अखन हमारे लोकन सुने छी मैथिली गीत और मैथिली गीत के अंतर्गत हमारे लोकन आई गया सुनब विद्यापति गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: तो रंजीत जी, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में वक्त हो चला है आज के सामाजिक और सांस्कृतिक गति

0: विधियों पर नजर डालने का, यानी हालचाल का। हालचाल लेकर उपस्थित है रंजीत कुमार झा।
1: धन्यवाद कुशल, नमस्कार। सरकार माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण GSTAT में अपील दाखिल करवा के अंतिम तिथि एक महीना बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 तक कर दलक है। पहले इस समय सीमा 30 जून तक निर्धारित किया गया छल। वित्त मंत्रालय के अनुसार पोर्टल पर तकनीकी दबाव और भारी संख्या में लंबित मामला के करीब 4.80 लाख के कारण हितधारक के अनुरोध पर यह व्यवहारिक फैसला लेल गया, ताकि करदाता के अपन समय सीमा के अभाव में दाखिल खारिज करवा में कन्नो कोनो दिक्कत नहीं हुई। मौसम वैज्ञानिक राहत भरल खबर दलन है कि 15 जुलाई के बाद पटना सहित बिहार के अधिकतर भागों में झमाझम बारिश होबे के प्रबल संभावना है। विभाग चेतावनी दिलक है जुलाई में जून के जका कम बारिश है, जैसे कतेको हिस्सा में सुखार जैसन स्थिति बन सकत है। मौसम सेवा केंद्र के निदेशक CL प्रभु बतौलन कि 15 जुलाई के बाद पटना और आसपास के सहित बाकी सब जिला में नीक बारिश होबे के संभावना बन रहल है। सरकार PPF और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC जैसन विभिन्न लघु बचत योजना पर ब्याज दर में कोनो बदलाव नहीं कैलक है। 1 जुलाई 2026 से शुरू होने वाला चालू वित्त वर्ष के दूसर तिमाही में दर के यथावत रखल गेल है। ई लगातार 9वीं तिमाही है जिसमें दर में कोनो बदलाव नहीं कैल गेल है। वित्त मंत्रालय के अधिसूचना के मुताबिक सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा पर 8.2% के दर से ब्याज भेटत रहत, जखन कि 3 साल के सावधि जमा पर ब्याज दर 7.1% बरकरार रखल गेल है। PPF पर ब्याज दर 7.1% और डाकघर बचत योजना पर के दर पर प्रतिशत के हिसाब से स्थिर रहत। किसान विकास पत्र KBP पर ब्याज 7.5% है और ई निवेश 115 महीना में परिपक्व भ सकत है। ओत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र NSC पर जुलाई सितंबर में तिमाही के लिए ब्याज दर 7.7% बनल रहवा के पहले तिमाही के तरह है। डाकघर के मासिक आय योजना के निवेशक के दूसरी तिमाही में 7.4% के दर से ब्याज देल जायत। तीन दिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह 22 नवंबर से शुरू है। आयोजन के रूपरेखा तय करवा के लिए विद्यापति सेवा संस्थान में आम सेवा प्रधान कार्यालय परिसर में भेल। संस्थान के अध्यक्ष और पूर्व कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा के अध्यक्षता में आयोजित बैसार में हर वर्ष के तरह कवि कोकिल विद्यापति के निवारण दिवस कार्तिक धवल त्रयोदशी तिथि तदनुसार 22 नवंबर को 3 दिवसीय समारोह के आयोजन करवा के निर्णय लेल गेल। पूर्व में जिला सांख्यिकी विभाग के द्वारा जारी हस्तलिखित जन्म प्रमाण पत्र के अब ऑनलाइन प्रणाली में परिवर्तित करो के प्रक्रिया चल रहल है। एकरा लेल विभाग आधुनिक सॉफ्टवेयर के माध्यम से पुराना अभिलेख के डिजिटलीकरण कर रहल है। हालांकि तकनीकी और प्रशासनिक कारण से प्रक्रिया अखन कतेको जगह प्रभावित भ रहल है, जैसे आम जनता के परेशानी के सामना करो पड़ रहल छन। सूत्र के जानकारी के हिसाब से कतेको मामला में हस्तलिखित जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित अभिलेख अधिकांश प्रखंड मुख्यालय में रिकॉर्ड रूम में उपलब्ध नहीं है। उत्ते पूर्व के पंचायत सचिव के द्वारा अभिलेख के समुचित संरक्षण नहीं किया जवा के कारण एक सत्यापन प्रक्रिया प्रभावित भ रहल है। एकरा अलावा कतेको बेर सर्वर डाउन रहबा के कारण सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या के कारण ई कार्य में विलंब भ रहल है। जिला सांख्यिकी कार्यालय बतौलक है कि कतेको पंचायत से आवेदन के बिना आवश्यक अभिलेख के सत्यापन के द्वारा अग्रशासित कर देल जाय छल, जे पर रोक लगा देल गेल। जिलाधिकारी कौशल कुमार के अध्यक्षता में समाहरणालय में कस्टर्ड मिल राइड CMR के 100% आपूर्ति के लक बैसार कैल गेल। बैसार में विभिन्न प्रखंड के राइस मिल के द्वारा CMR आपूर्ति के वर्तमान स्थिति और प्रगति के समीक्षा कैल गेल। जिलाधिकारी सब प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के राइस मिलर से निर्देश पठौलन है कि निर्गत स्वीकृति आदेश के विरुद्ध 2 दिन के भीतर 100% CMR आपूर्ति सुनिश्चित करें। सब राइस मिलर के शेष CMR आपूर्ति के प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा कर निर्धारित मानक के अनुरूप बिहार राज्य खाद्य निगम के उपलब्ध कराब के लेल कहल गेल और एकरा लेल 15 जुलाई तक के तिथि निर्धारित कैल गेल। मानसून के दस्तक देते दरभंगा शहर के हालात बद से बदतर भ गेल। एकरा संगे मानसून पूर्व नाला के सफाई महीनों पहले जुटल नगर निगम प्रशासन के कले सेहो खुज गेल। बताबे चले कि पिछला 2-3 दिन में रुकड़ी कभेल बारिश के कारण शहर जलमग्न

भ गेल सड़क तालाब में तब्दील नजर आबैत अछि। आवागमन प्रभावित भ रहल अछि और आम लोग घंटो जाम सँ सेहो प्रभावित भ रहल छथि और ओते छोट छोट धियापुता के स्कूल जेबा में सेहो दिक्कत भ रहल अछि। सांसद गोपाल जी ठाकुर राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर दरभंगा एयरपोर्ट के नवका सिविल एनक्लेव के जोड़बाक लेल प्रस्तावित लगभग 4.18 किलोमीटर लंबा 4-लेन अप्रोच रोड तथा टेम्पेट फ्लाईओवर इंटरचेंज के निर्माण स्थल के निरीक्षण कयलनि। एहि दौरान ओ परियोजना से जुड़ल औपचारिकता के शीघ्र पूरा करबाक और निर्माण कार्य में तेजी लेबाक निर्देश देलनि हैं। निरीक्षण के दौरान संसद के एनएच के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आशुतोष कुमार, सहायक अभियंता विजेंद्र कुमार और दरभंगा एयरपोर्ट के निदेशक डॉक्टर दिलीप कुमार सहित एनएच और एयरपोर्ट अथॉरिटी के और अधिकारी मौजूद छलाह है। ई हाल चाल अखन अपने लोकन आकाशवाणी दरभंगा सँ सुनि रहल छी। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल कहलनि हैं कि अभियान बसेरा 02 के अंतर्गत आगामी 15 अगस्त को 30,000 सुयोग्य भूमिहीन परिवार के बीच बास भूमि और बंदोबस्ती प्रमाण पत्र बांटल जाएत। अखन तक राज्य में 71,569 पात्र परिवार के बास भूमि उपलब्ध कराबे के दिशा में बंदोबस्ती प्रमाण पत्र देल जा चुकल है। इस संबंध में विभाग के सचिव जय सिंह सब अधिकारी के विस्तृत निर्देश जारी कलन है। सब जिला के 31 जुलाई 2026 तक सब बंदोबस्ती प्रमाण पत्र तैयार कर हस्ताक्षर के प्रक्रिया पूरा करा लेबा के निर्देश देल गेल है। बिहार के सब सरकारी अस्पताल में ओपीडी, इमरजेंसी, ओटी या परिसर में कतो मरीज के दवा बेचो के लिए बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर सख्ती से आब कार्रवाई कैल जाए। स्वास्थ्य विभाग में एहन लोग के पहचान क हुनका खिलाफ अब कार्रवाई कैल जाए। विभाग जल्दी एगो गाइडलाइन जारी करत जे कि ओपीडी के दौरान मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के डॉक्टर से भेंट करवा के अनुमति नहीं देल जते। अगर कोनो एमआर कोनो चिकित्सक के कमरा में ओपीडी के दौरान पहुंचता तो संबंधित चिकित्सक पर कार्रवाई सेहो कैल जते। विभागीय समीक्षा में पायल गेल कि कोनो डॉक्टर एहन दवाई लिख दै छथिन जे कि महज एक दुकान पर नहीं भेटत अछि और कतेको दुकान मरीज के घूम पड़ित अछि। एहन डॉक्टर पर सेहो विभागीय कार्रवाई करबा के लेल विचार विमर्श कयल जा रहल अछि। गोरखपुर चिल्ली गोरी और रक्सौल हल्दिया रूट के 6-लेन हाईवे में बदलवा के रास्ता लगभग तय भ गेल है। अई यात्रा के समय करीब आधा घंटा भ जाएत। ओते औद्योगिक केंद्र के सीधा जुड़ाव बंदरगाह से भ जाएत। एकरा संगे संगे राज्य के आर्थिक विकास के गति सेहो भेटत। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी के संगे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेन्द्र और विभागीय अधिकारी के महत्वपूर्ण बैसार पर इस विषय में सकारात्मक सहमति बनल है। पथ निर्माण विभाग के पंकज कुमार पाल के अनुसार गोरखपुर सिल्लू गोरी और रक्सौल हल्दिया रूट के 6-लेन हाईवे बदलवा के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री संबंधित अधिकारी के निर्देश पठा देलन है। बहरी प्रखंड के मिटुनिया पंचायत के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्र के निरीक्षण के दौरान CDPO मीनाक्षी प्रभा कतेको अनियमितता पौलन है। वार्ड संख्या 5 के स्थित पार गांव में आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 163 पर पहुंचवा पर केंद्र बंद भेटल। ओत कतो उनका नाराजगी जतौलन है। एक बाद वार्ड संख्या 6 स्थित केंद्र संख्या 283 पार उत्तरी के निरीक्षण में केवल 12 गो बच्चा उपस्थित भेटला, जखन के उपस्थिति पंजी में 24 बच्चा के नाम उपस्थित दर्ज कैल गेल छल। केंद्र के संचालन सहायिका नीलम कुमारी कहलन कि जखन सबिका संगीता कुमारी बाद में पहुंचली तो जांच के दौरान केवल अन्य प्रशासन मातृवंदना और उपस्थिति पंजी के प्रस्तुत कैल जा सकल और अन्य कागजात नहीं देल जा सकल छल। मनीगाछी के रेफरल अस्पताल में रोगी कल्याण समिति के शासी निकाय के बैसार आयोजित कैल गेल। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विभा झा के अध्यक्षता में सदस्य अस्पताल भवन के जर्जरता के देखत अविलंब नवका भवन में हस्तांतरण करवा के लेल कहलक है। पुरना भवन में भ रहल ANM और ड्राइवर गार्ड रसोईया के तत्काल नवका भवन में रहबा के लेल कमरा उपलब्ध करायल जाए। अल्ट्रासाउंड में टेक्नीशियन बहाल करवा के लेल और विशेषज्ञ डॉक्टर के सब सृजित पद पर बहाल करवा के प्रस्ताव पर सदस्य सेहो पारित कलन। विशेषज्ञ डॉक्टर में सृजित 4 गो पद में शिशु रोग विशेषज्ञ, सर्जन के पदस्थापना एहि अस्पताल में नहीं भेल छल, अकरा करेनाई बहुत जरूरी भ गेल। CTSP फेकला थाना के औचक निरीक्षण कलन। एहि दौरान आवश्यक विभागीय के दिशा निर्देश सेहो देलन। संगे थाना में आगंतुक पंजी, पासपोर्ट पंजी, RTI पंजी, महिला हेल्प डेस्क, लोक शिकायत पंजी, मासिक कार्य विवरणी, मालखाना, ओडी जांच, हाजत सुरक्षा, चार्जशीट और स्टेशन डायरी सहित अन्य अभिलेख के

0: बारीकी सँ जांच कलन और चलत चलत ओ आवश्यक दिशा निर्देश सेहो देलनि हैं। एहि के संगे आजुक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि सम्पन्न होइत अछि। नमस्कार।
1: अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं मौसम संबंधित। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 12 जुलाई से 16 जुलाई 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर बिहार के अधिकांश स्थानों पर 13 से 15 जुलाई के बीच मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। समस्तीपुर, सिवान, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी एवं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिलों के कुछ स्थानों पर आज यानी 13 और कल 14 जुलाई के आसपास भारी वर्षा होने की संभावना है। वर्षापात के समय कहीं कहीं वज्रपात हो सकती है तथा तेज हवा बहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में ज़्यादातर दिनों में आसमान में हल्के से घने बादल छा सकते हैं। वर्षा की गतिविधियों के कारण इस सप्ताह अधिकतम तापमान में पिछले सप्ताह की तुलना में कमी रहने की संभावना है। अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है, जबकि बेगूसराय, वैशाली और सिवान जिलों में यह 34 से 36 डिग्री के बीच रह सकता है। न्यूनतम तापमान 24 से 28 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। सुबह में सापेक्षिक आर्द्रता 90 से 95% तथा दोपहर में सापेक्षिक आर्द्रता 50 से 55% के बीच रहने का अनुमान है।
0: जब बात करी हमारे लोग यातायात संबंधी के जानकारी के बारे में तो श्रोता लोग अपने के बताबे चली। सबसे पहले सड़क मार्ग की अगर हमारे लोग बात करी तो सड़क मार्ग में जे पहले से वन वे सिस्टम लागू है वो आइयो लागू रहत। ओहिमे कतौ कोनो फेरबदल नहीं कयल गेल है। अगर कोनो वी वी आई पी मूवमेंट के कारण एहिमे रूट चार्ट में फेरबदल कयल जाय तो एकर सूचना आप लोग के आकाशवाणी दरभंगा परिवार के द्वारा जरूर देल जाय। जो हमारे लोग बात करी ट्रेन रूट के रेलवे सफर के तो रेलवे अथॉरिटी के तरफ से जे गाड़ी के जे आगमन के समय है निर्धारित और जाहि गाड़ी के जे प्रस्थान करबाक समय निर्धारित है ओहिमे कतौ कोनो रेलवे बोर्ड के द्वारा परिवर्तन नहीं कयल गेल है। हालांकि आई भोर से मौसम किछ गड़बड़ छल, मेघ लागल छल, आसमान में काला बादल छायल छल और किछ बूंदा बूंदी भ रहल छल तो मौसम के असर पड़बा के कारण भ सकैए कोनो गाड़ी विलम्ब से प्रस्थान करय और विलम्ब से आगमन ओकर भ सकय। जो हमारे को बात करी हवाई अड्डा अथॉरिटी के हवाई सफर के बारे में तो हवाई अड्डा अथॉरिटी जे से अपन विमान के जे परिचालन के समय निर्धारित छे ओहिमे कतौ कोनो समय में फेरबदल हवाई अड्डा अथॉरिटी के तरफ से नहीं भेलैए। हालांकि मौसम किछ खराब है, मौसम का असर अगर विमान हवाई सफर पर पड़त तो किछ विलम्ब जे छे निश्चित रूप से भ सकैत अछि। तो हम श्रोता लोकनि से कहबनि जे जँ आइ कतौ हुनकर योजना बनल होइन सफर करबाक तीनू माध्यम के सँ तो ओहिठमन का जे इन्क्वायरी नंबर देल गेल छै एक बेर ओ इन्क्वायरी नंबर पर जरूर फोन कऽ कऽ जानकारी प्राप्त कऽ ली, ओकरा बाद अपने अपन सफर के शुरुआत करी। और हमरा लोकनि आजुक नमस्कार मिथिला में अपना अपना सफर के शुरुआत कऽ कऽ सफर के आगा बढ़ाबी कुशल।
1: और मनोरंजन पे जब आपने कहा कि आज हम भारतीय सिनेमा समाज की आईना पे चर्चा करेंगे तो फिलहाल सिनेमा है तो कहीं भी मनोरंजन तो होगा ही होगा। अब मनोरंजन होगा तो फिल्म संगीत का एक आनंद लेना ही चाहिए।
0: देखियो कुशल, निश्चित तौर पर सिनेमा एक मनोरंजन के साधन हमारा सबके नहीं छल। सिनेमा मनोरंजन और संदेश सामाजिक संदेश के सेहो एक बड़ पैघ साधन छल। और अइमे केना उतार चढ़ाव भेले 90 के दशक के बाद कोना एक पक्षीय सिनेमा जगत के छै से सिनेमा नहीं कऽ कऽ एक पक्षीय कह दिल गेलै ओहू पर चर्चा विचार विमर्श हम करब, मुदा ताहि से पहले फिल्म संगीत का नाम लै छी।

0: तो रंजीत जी आज हम लोग बात कर रहे थे कि भारतीय सिनेमा पे, सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज की वास्तविकताओं के संघर्षों, सपनों, मूल्य और परिवर्तनों का सशक्त दर्पण है। यही कारण है कि भारतीय सिनेमा को समाज का आईना कहा जाता है। जिस प्रकार दर्पण किसी व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप दिखाता है, उसी प्रकार सिनेमा समाज की अच्छाइयों, बुराइयों, उपलब्धियों और चुनौतियों का दर्शकों के सामने प्रस्तुत करता है। भारतीय सिनेमा ने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आधुनिक डिजिटल युग तक समाज के हर परिवर्तन को अपने कायनाओं से स्थान दिया है। यह सामाजिक चेतना जगाने, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने तथा नई पीढ़ी को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है।
1: देखो जना के हम पहले कहने छो कि सिनेमा हमलोगन के एक मनोरंजन के साधन नहीं छल बल्कि सामाजिक समरसता के संदेश देव में सिनेमा के बड़ पैघ हाथ छे। सिनेमा से पहले ही काल हमारे नाटक करे अब छल और वही नाटक के स्वरूप के सिनेमा के रूप में बदल गए, कैमरा के माध्यम से रिकॉर्ड कर पर्दा पर देखा हो गए तो सिनेमा भ गए और वह नाटक के मंचन मंच पर हुई। लेकिन सिनेमा जगत, हम पूरे सिनेमा जगत अगर हम बात करी तो हाँ उसमें देख ले जे 90 के दशक के बाद सिनेमा जगत में एक बहुत पैघ बड़ पैघ परिवर्तन नजर अल और वो परिवर्तन नजर की अल कि सिनेमा के जे स्क्रिप्ट राइटर हुई छला है वो राइटर कतौ ने कतौ भारतीय सांस्कृतिक सभ्यता, भारतीय सांस्कृतिक संवेदना के छोड़कर पश्चिमी सभ्यता के बेसी समावेश कलखिन अपना लेखनी में। और जखन सिनेमा के स्क्रिप्ट के लेखनीय में पश्चिमी सभ्यता के बेसी आत्मसात कर लेल गेल होय तो जे सिनेमा बनबो वाला जे निर्देशक होय छथिन, जे प्रोड्यूसर उत्पादक होय छथिन, हुनका संगे ई मजबूरी भेलन जे ओ लिखल स्क्रिप्ट के संगे ओकरा फिल्मेलखिन, ओ सीन के देखेलखिन, ओ दृश्य के जैसे से लोक के देखेलखिन, तकर परिणाम हमरा समाज पर बड़ पैघ असर पड़ले। और असर की पड़े यहाँ के कुशल कि पश्चिमी सभ्यता बड पैघ बड तेजी से हमरा समाज में अपन स्थान बनाव लागल। भारतीय जो मूल सभ्यता संस्कृति छे तई से लोग थोड़े विमुख होबय पड़ला, लेकिन ओकरा बाद फिर एकाएक समय करवट बदललक और कुछ निर्देशक, कुछ उत्पादक, कुछ कलाकार के द्वारा कुछ एहन सिनेमा के लावल गेल 90 के बादों और 90 से पहले हूँ जे भारतीय सिनेमा जगत के एक अमर अमिट छाप छोड़लक और वही सिनेमा के असर भारतीय दर्शक पर सेहो बड़ पैग और व्यापक रूप में देखवा में हमारे के समाज में आये।
0: और रंजीत जी अगर इसके इतिहास की बात करें तो भारतीय सिनेमा इतिहास में 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्मित पहली पूर्ण लंबाई की मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र से प्रारंभ हुई
1: जी।
0: यह भारतीय फिल्म उद्योग की आधारशिला थी। इसके बाद 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा आई जिसने भारतीय सिनेमा में नई क्रांति ला दी
1: जी।
0: अगर इसकी बात करें सामाजिक परिवर्तन का माध्यम तो भारतीय सिनेमा ने अनेक सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जनमत तैयार किया है। कई फिल्मों ने तो महिलाओं के अधिकार, बेटियों की शिक्षा, स्वच्छता, खेलों में महिलाओं की भागीदारी, दिव्यांगजनों के अधिकार और सामाजिक समानता जैसे मुद्दों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है और इन फिल्मों ने लोगों को की सोच भी बदली है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कई कार्य किए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और मानवीय मूल्यों से जुड़े संदेशों को सिनेमा ने सरल और प्रभावशाली तरीके से आम जनता तक पहुंचाया है।
1: देखो सिनेमा दो तरह बनले अपना फिल्म इंडस्ट्री में, एकटा छले आर्ट फिल्म जेकरा रोकन कलात्मक फिल्म कहै छी और एकटा भेले जे फिल्म जेकर व्यावसायिक फिल्म सेहो बनबै छलखिन है। अब दुनू में अंतर की छता आपको सिद्ध देख ले जाओ। कलात्मक सिनेमा जे बनले ओइमे सुच्चा कलाकार काज केलखिन, ओइमे जे अभिनय नहीं भेलखिन ओइमे सुच्चा कलाकार छलखिन, जिनका कि हमरा लोकन रंगमंच रंगकर्मी सेहो कहै छियनि। ओ रंगमंच सँ जुड़ल रहला, ओ नाटक के माध्यम से सिनेमा जगत तक के

0: अभिनय के सफर के शुरुआत करें और ओतय तक पहुँचलन। व्यावसायिक फिल्म सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय के लिए बनाओल गेलै। व्यावसायिक फिल्म में कलात्मक समाज के दोष, समाज के निर्दोष, समाज के संस्कृति, सामाजिक सभ्यता, भारतीय परंपरा, ऐ चीज से ओकरा कोनो लेना देना नहीं छले। ओकरा लेना देना सिर्फ अतबे छले जे हमर फिल्म ज्यादा से ज्यादा व्यवसाय कोना करे। कलात्मक फिल्म में ये चीज नहीं हुई छे। कलात्मक फिल्म में होइ छे जे हम मनोरंजन, स्वच्छ मनोरंजन,
1: स्वच्छ मनोरंजन, स्वस्थ मनोरंजन।
0: जी मनोरंजन दू तरह के छे, कलाकार और अदाकार में अंतर होइ छे श्रीमान। कलाकार अपन कला दिखाबै छथिन, अदाकार अपन बदन दिखाबै छै। एहिठमन अदाकार के चलती भगले कलाकार भूख मर रहल छै। कौन सिनेमा जगत के बात हम करिए, हम सच कह रहल छी अहाँके। आइ भारतीय सिनेमा के उल्टा कहाँ देख लियो, NHD प्रोडक्ट कैटा छथि, नाटक से जुड़ल कैटा कलाकार छथि, जे कहियो नाटक के स्टेज पर मंचन नहीं केला हो, अपना आपके सदी के महानायक कहै छथिन, पैरवी पुत्र। तो कतौ ने कतौ ई जे कलात्मक फिल्म से लोग के रुख बदलने, व्यावसायिक के तरफ, व्यावसायिक फिल्म के तरफ लोग के विचार विमर्श थोड़े ज्यादा अग्रसर भले, वो कतौ न कतौ हमारा समाज के प्रभावित केलक। अहाँ के 90 के दशक के सिनेमा के दौर याद है कुशल, जो एक तरह के सिनेमा अबै छलै, जो काले अथी सिनेमा के नायक कॉलेज में पढ़े छलखिन, सब सिनेमा में किया अबै छलै स्क्रिप्ट, लिखनी अहाँ देख लियो, संगीत गीत के बोल अहाँ देख लियो, सिनेमा के पहनावा ओढ़ावा अहाँ देख लियो, गाना के बोल देख लियो, द्विअर्थी भाषा, द्विमर्जी भाषा, संगीत ओहने अहाँ देख लियो। कर्णप्रिय संगीत भारतीय सिनेमा के पहल पहचान छे, कर्णप्रिय संगीत आब एठमन कर्ण उबाऊ संगीत के प्रचार प्रसार होबय लगले। फिलहाल चर्चा हमारे लोग आगे पर सेहो करब, घड़ी के टिकटिक का किछु और इशारा कर रहल अछि, और तेकर दोसर विषय बिंदु पर सेहो हमारे लोग श्रोता से बात करबाक अछि। तो पहले एक और फिल्म संगीत के आनंद लै छी, ओकरा बाद हमारे लोग बात करब जे मधुमक्खी पालन सँ आत्मनिर्भरता के राह कोना खुजि सकैत अछि, एहि पर चर्चा करब, मुदा ताहिसँ पहले सुनै छी फिल्म संगीत।

0: घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक ही क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के
0: आकाशवाणी दरभंगा सुनते रहिए
3: अब नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी आवाज में कविता कहानी पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं।

0: फुलवारी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।
1: हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगे जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो। उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन भरतुहार आबे छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काट लेला आ अपने बनल हमालू मा।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनी आनि के दिया त बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझ के सुपारी बुझ के आनि के देता।
2: अपन परंपरा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू।
3: इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
4: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत DIG रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं।

0: हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
2: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण में एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर

0: संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स सीईओई और आईसीईएक्स स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
3: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो AI आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री देहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: भोपाल में आज MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रूपए, राजगीर के लिए 4000 रूपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रूपए और कैमूर के लिए 6000 रूपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
0: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मुज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और UAE को बनाया निशाना। वहीं नव भारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, 1 लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश। मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का SIR

0: ब्यौरा अनिवार्य। दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर, अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गांव अब निर्जन, पलायन करने में युवा आगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। 2 न्यू एंटी क्राइम लॉज पास्ड बाय वेस्ट बंगाल असेंबली कम इनटू फोर्स इन द स्टेट टुडे। ISRO successfully carries out 3 major tests of Gaganyaan crew module systems. 5 Indian students win gold medals at 56th International Physics Olympiad 2026. India secures world number 1 rank jointly with other countries. IMD forecasts heavy rainfall over northeast India, West Bengal and Bihar during next 2 to 3 days. US launches fresh strikes on Iran. And Yannick Sinner beats Alexander Zverev to retain Wimbledon men's singles title. And now the news in detail. In West Bengal, 2 new anti-crime laws come into force in the state today. State Governor Arun Ravi has given his assent to the bill related to the control of anti-social activities. In June this year, the Assembly passed the stringent anti-crime bills, the West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026. More from our correspondent.
3: Under the West Bengal Public Safety and Control of Antisocial Activities Act 2026, a person involved in antisocial activities or one who is likely to engage in such activities in the future may be placed under preventive detention. Such a person can be detained for a maximum period of 1 year. The state government says the new law will enable quicker and stricter action against antisocial activities, riots, attacks on police personnel and organized crime. Chief Minister Shubhendu Odhikari has earlier stated that violence or disruption of public order in the name of protest will not be tolerated. He also expressed hope that the new law will play an important role in ensuring the safety and security of women and children. Sandeep Bandashgupta, Akashvani News, Kolkata.
2: The Indian Space Research Organization says it has successfully carried out 3 major tests of the Gaganyaan crew module systems. More from a correspondent.
4: The first test pertained to ensuring an upright position for the crew module after splashdown in the sea, considered one of the most important crew safety requirements. To do this, a stored cold gas-based uprighting system was developed and tested. The second test involved examining the separation of the umbilical mechanism that serves as a link between the crew module, where astronauts live, and the service module, which provides power and propulsion. The third test validated the structural integrity of the crew modules during the apex cover separation event. Yashasvi Kiryas, Akashvani News, Delhi.
2: 5 Indian students have won gold medals at the 56th International Physics Olympiad 2026, which was held at Bucaramanga in Colombia from 4th to 12th of this month. With the exceptional performance, India reaffirmed the growing stature in science education and excellence at the international level. We have a report.
5: delivering an extraordinary performance at the 56th International

0: सूर्या और अहमदाबाद के सावित्र जोशी। इन मुकाबलों में 87 मुल्कों के 381 तलबा ने हिस्सा लिया, जबकि भारत ने रूस, चीन, कजाकिस्तान, जुनूबी कोरिया और ताइवान के साथ मिलकर पहला मकाम हासिल किया है। इस हुसूलियाबी से भारत के ओलंपियाड प्रोग्राम की ताकत का अंदाजा होता है, जिसकी क्यादत साइंसी तालीम के होमी भाभा मरकज ने की, जो बुनियादी तहकीक के टाटा इंस्टीट्यूट का एक कौमी मरकज है। सोमिया शारन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इंटरपोल के डिजिटल फोरेंसिक माहिरीन के ग्रुप की 11वीं मीटिंग की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। इस तकरीब के साथ जराइम के तहकीकारों का पहला बैन अलाक्वामी मुकाबला और समिट भी मुनक्किद होगा। ये तकरीब आज गांधीनगर में फोरेंसिक उलूम की कौमी यूनिवर्सिटी के कैंपस में मुनक्किद होगी। इस बावकार आलमी फोरम में, जिसकी मेजबानी भारत 2022 से दूसरी बार कर रहा है, आला शख्सियतें शिरकत करेंगी, जिसमें वजीर आला भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र पटेल, नायब वजीर आला हर्ष सांघवी और 47 मुल्कों के कानून नाफिज करने वाले मंदूबीन शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
0: जनाब शाह इस तकरीब के दौरान महारत के 3 सरकर्दा मरकजों का आगाज करेंगे, जिसमें मसनूई जहानत की मदद से जराइम की तफ्तीश, मौके वारदात की देखभाल और भारत के पहले मीडिया फोरेंसिक मरकज पर तवज्जो दी जाएगी। वो मुल्की में तैयार की गई एशिया की पहली साइबर फोरेंसिक तफ्तीशी वैन और मुल्की में तैयार की गई मोबाइल लेबोरेटरी का भी आगाज करेंगे, जो मौके वारदात पर शवाहिद बरवक्त इकट्ठा करने की सलाहियत की हामिल है। इस तकरीब की खास बात यह है कि आला तकनीक से मुतालिक नुमाइश भी, जिसमें गूगल समेत दुनिया के 30 से ज्यादा बड़े मुल्कों के जदीद तरीन साइबर सिक्योरिटी टूल्स भी शामिल हैं। वजीर दाखिला दोपहर बाद सेकार से समृद्धि का खाका पेश करेंगे। वो धीगम का दौरा करेंगे और अमृत महोत्सव तकरीबात के दौरान सब्जियों के एक नए तामीर शुदा APMC अहाते को अवाम के लिए वक्फ करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के हमरा आज दोपहर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करेंगे। वो उन्नाव में 49 किलोमीटर तक एक्सप्रेसवे का मुआयना करेंगे। भारत की दूसरी सबसे तवील कॉरिडोर के साथ 63 किलोमीटर 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे भी मुल्क का पहला एक्सप्रेसवे है, जिसे ऑटोमेटिक और जदीद मशीन और जदीद तामीराती टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है। भोपाल में आज मध्य प्रदेश टेक्नोलॉजी तरक्की का तीसरा इजलास MPTech ग्रोथ कॉन्क्लेव स्वयं मुनक्किद किया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव इस तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इस मुकम्मल इजलास में असल तवज्जो सलाहियत के आलमी मरकजों, डेटा मरकजों और सेमी कंडक्टर शोबे के फरोग पर मरकूज की जाएगी। डॉक्टर यादव टेक्नोलॉजी पर मबनी सनअती तरक्की से मुतालिक रियासती सरकार के खाके की भी जानकारी देंगे। वो सरमायाकारी और नए प्रोजेक्टों पर बातचीत के लिए सरकर्दा सनअतकारों में से हरेक के साथ अलग अलग मुलाकातें करेंगे। इस इजलास में भारत और बैरूनी मुल्कों की टेक्नोलॉजी की सरकर्दा कंपनियों के नुमाइंदे, सरमायाकार, स्टार्टअप्स, सनअती इदारे और तालीमी इदारे यकजा होंगे। बिहार में आज हेलीकॉप्टर के जरिए फजाई सियाहती खिदमात शुरू की जा रही है। वजीर आला सम्राट चौधरी पटना से इस स्कीम का आगाज करेंगे। इस स्कीम के पहले मरहले के तहत जिन मकामात को शामिल किया गया है, उनमें मगरबी चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले में मां मंदेश्वरी और नालंदा जिले में राजगीर शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
0: सियाहत और शहरी हवाबाजी के महकमे के जरिए ये खिदमात मुश्तरका तौर पर शुरू की जाएंगी। आवाम ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत रियासती सरकार की तरफ से माली इमदाद के साथ सयाह रियायती किरायों पर टिकट बुक कर सकते हैं। रियासती सरकार फी टिकट पर 15,422 रुपए की सब्सिडी फराहम करेगी। हेलीकॉप्टर सियाहत खिदमात 18 जुलाई को शुरू होंगी, जो हर हफ्ते और इतवार के रोज फराहम की जाएंगी। पटना से सविता पारीख की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: भारत के खलाई तहकीक के इदारे इसरो ने गगनयान अमले के मॉड्यूल निजाम के कामयाब तजर्बात किए हैं। पहले तजर्बे का ताल्लुक खलाई तैयारे के समंदर में उतरने के बाद अमले मॉड्यूल के लिए उमूदी पोजीशन को यकीनी बनाना है, जो अमले के तहफ्फुज की जरूरतों के लिए अहम समझा जाता है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान शिमाल मशरकी भारत, मगरबी बंगाल और बिहार में कहीं कहीं शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है, जबकि मशरकी उत्तर प्रदेश में भी बाज़ जगहों पर 4 से 5

तक शदीद बारिश का इम्कान है। एजेंसी ने 18 जुलाई तक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में वसी पैमाने पर बारिश की पेशगोई की है। इसी तारीख तक शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना के दूरदराज मकामात पर छींटे पड़ने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक आइंदा 6 से 7 दिन के दौरान शिमाल मगरबी, वस्ती और जनूबी जजीरा नुमा भारत के मैदानी इलाकों में बारिश की शिद्दत में कमी आ जाने का इम्कान है। इधर मेघालय में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि मशरकी उत्तर प्रदेश में कल बहुत ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। अमरीका ने ईरान के खिलाफ ताजा फौजी हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमान सेंटकॉम ने बताया कि इस फौजी कार्रवाई का मकसद आबनाए हुरमुस से गुजरने वाले गैर फौजी जहाजों के अमले के अलावा तजारती जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की सलाहियत को कम करना है। एक्स पर एक पोस्ट में सेंटकॉम ने बताया कि यह हमले कमांडर इन चीफ की हिदायत पर किए गए ताकि ईरानी फौजों को जवाबदेह बनाया जा सके। ये ताजा हमले खलीजी खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर किए गए हैं। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक अमरीकी हमलों के बाद ईरान के जनूबी शहरों जास्क, बंदर अब्बास और सिरिक में धमाकों की आवाजें सुनी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि आबनाए हुरमुज तजारती जहाजों के लिए खुला है। उन्होंने ईरान के कंट्रोल के दावे को मुस्तरद कर दिया। अमरीका के सेक्रेटरी जनरल अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने ईरान और अमरीका के दरमियान ताज़ा फौजी महाजाराई पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और इस सिलसिले में शदीद इलाकाई और आलमी नताइज के लिए खबरदार किया है। भारत ने ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय अमले के अरकान को ले जाते हुए एक कमर्शियल जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले के बाद मगरबी एशिया खित्ते में कशीदगी को फौरी तौर पर खत्म करने के लिए एक बार फिर कहा है। हमले की मजम्मत करते हुए वजारत खारजा ने एक बयान में बताया कि इस जहाज में सवार 11 भारतीय बाशिंदों में से अभी तक 10 को बचाया गया है, जबकि एक बाशिंदे के लापता होने की खबर है। बयान में कहा गया है कि ओमान में भारतीय सिफारतखाना सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है और वो तलाश और बचाव के काम में ओमान के हुक्काम के साथ सरगर्मी के साथ तालमेल रखे हुए है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार में आग लगने की वजह से कम 27 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में 18 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि अस्पताल में 60 से ज्यादा लोग जेरे इलाज हैं। ये आग बार में निस्फ शब के दौरान लगी थी, जिसके बाद आग बुझाने वाला अमला जाए हादसे पर पहुंचा, जिसने फंसे हुए कई लोगों को वहां से निकाला। थाईलैंड के वजीर आजम अनुतिन चरनोरिकोल ने मीडिया के अफराद को बताया कि 27 लाशें बरामद हुई है। आग लगने की तहकीकात की जा रही है। बताया जाता है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। बैंकॉक के चतुचाक जिले में यह एक मशहूर रेस्तरां है। विंबलडन टेनिस में इटली के चोटी के खिलाड़ी यानिक सिनर ने कल रात लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में फाइनल में जर्मनी के अलेक्सेंडर ज्वेरेव को 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराने के बाद मर्दों का सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। यह सिनर का विंबलडन टेनिस में लगातार दूसरा मर्दों का सिंगल्स का खिताब है। सिनर विंबलडन में मर्दों का सिंगल्स का खिताब कामयाबी के साथ दिफा करने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में इस माह की 26 तारीख को मुल्क के अवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 136वां नशरिया होगा। लोग इस प्रोग्राम के लिए अपने ख्यालात और तजावीज इस टोल फ्री नंबर पर भेज सकते हैं 1-800-117-800। लोग अपनी राय नरेंद्र मोदी ऐप या माई गव ओपन फोरम पर भी भेज सकते हैं। छत्तीसगढ़ असेंबली का मानसून इजलास आज से शुरू हो गया है। ये इजलास इस महीने की 17 तारीख तक जारी रहेगा। इस इजलास के दौरान माली मामलात पर गौर किया जाएगा और रियासती हुकूमत तकरीबन 8 तरमीमी बिलों का भी ऐलान करेगी। इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMC के अमृत महोत्सव के दौरान सब्जी के नए सबयार्ड का इफ्तिताह करेंगे। इमदाद बाहमी की वजारत के मुताबिक इस प्रोग्राम के दौरान जनाब शाह एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत पौधा लगाएंगे और APMC के अमृत महोत्सव के मौके पर तैयार की गई एक यादगारी किताब का इजरा करेंगे। भारत ने कतर के मौजूदा अमीर के वालिद शेख हमद बिन अल खलीफा अस्सानी के इंतकाल पर आज एक दिन के कौमी शोक का ऐलान किया है।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बिहार हेली और एयर टूरिज्म सेवा की शुरुआत करेंगे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा और जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर करेंगे नामांकन। प्रदेश में कृषि के लिए कमजोर मानसून को देखते हुए विकसित भारत जीराम जी के श्रमिकों को खरीफ की खेती के लिए मिलेगी छूट। और मौसम विभाग ने आज अररिया, बांका, भागलपुर, कटिहार और किशनगंज समेत 8 जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का शुभारंभ करेंगे। पर्यटन विभाग की ओर से पहले चरण में पटना, पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले के मां मुंडेश्वरी और नालंदा के राजगीर को शामिल किया गया है। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रुपए, पटना राजगीर के लिए 4000 रुपए, पटना वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रुपए और पटना कैमूर के लिए 6000 रुपए में टिकट बुक कर सकते हैं। प्रति टिकट सरकार अधिकतम 15422 रुपए का अनुदान दे रही है। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
0: इसके अलावा मुख्यमंत्री आज ही पर्यटन नीति के अंतर्गत मुजफ्फरपुर में एम्यूजमेंट पार्क परियोजना और मुख्यमंत्री होम स्टे नीति के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। श्री चौधरी बोधगया में 165 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विश्व स्तरीय ध्यान और अनुभव केंद्र का शिलान्यास और 28 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का उद्घाटन तथा शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुजफ्फरपुर स्थित एमआईटी परिसर में आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। मुजफ्फरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार का उत्कृष्ट केंद्र बनेगा। इससे प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध होंगे। श्री चौधरी ने कहा कि मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य भी जल्द प्रारंभ होगा। वहीं पटना मुजफ्फरपुर रैपिड रेल कॉरिडोर बनने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय लगभग 40 मिनट रह जाएगा। साथ ही हल्दिया रक्सौल हाईवे के निर्माण से मुजफ्फरपुर से मात्र 6 घंटे में कोलकाता पहुंचा जा सकेगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा और जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी भी अपना पर्चा दाखिल करेंगी। उपचुनाव के लिए अब तक 11 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उम्मीदवार 16 जुलाई तक नाम वापस ले सकते हैं। उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को कराई जाएगी। प्रदेश में कृषि के लिए कमजोर मानसून को देखते हुए विकसित भारत जीराम जी के श्रमिकों को खरीफ की खेती को लेकर छूट दी जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। विभागीय मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि कम वर्षा वाले जिलों में पूर्व में घोषित कृषि चरम मौसम लीन पीरियड की तिथियों में बदलाव किया गया है। कम वर्षा और अल नीनो के गंभीर प्रभाव को देखते हुए प्रभावित जिलों में 10 जुलाई से 19 जुलाई तक वीबीजी रामजी योजना के तहत काम कराया जा सकेगा। संशोधन के बाद शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, भागलपुर और बांका में 10 अगस्त तक लीन पीरियड प्रभावी रहेगा। वहीं रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, अरवल, पटना, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, औरंगाबाद और गया में ये पीरियड 9 अगस्त तक माना जाएगा। प्रदेश के किसानों को अब हर महीने बिजली बिल मिलेगा। इससे पहले किसानों को प्रत्येक 3 माह पर बिजली बिल का भुगतान करना होता था। बिजली कंपनियों की अपील पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने 3 महीने के बाद

ले प्रत्येक महीने बिजली बिल भुगतान करने की मंजूरी दी है। इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। इस पहल से लगभग 8 लाख किसान लाभान्वित होंगे, जिन्हें 3 महीने का बिल एक साथ भुगतान करने में परेशानी हो रही थी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जिलावार समीक्षा का दूसरा चरण आज से पटना से शुरू हो रहा है। इस समीक्षा बैठक में सभी अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी शामिल होंगे। इस दौरान राजस्व संबंधी अहम मामलों और जन शिकायतों में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की जाएगी। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। ये प्रतियोगिताएं 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए होंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए आप अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई गव ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके आप सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी कड़ी के लिए सुझाव 24 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज अररिया, बांका, भागलपुर, मधेपुरा, पूर्णिया और सुपौल जिले में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। वहीं कटिहार और किशनगंज जिले में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है।
1: दिनांक 13 जुलाई राज्य के कटिहार एवं किशनगंज जिलों में मेज गर्जन वज्रपात तथा अत्यधिक भारी वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, बांका, भागलपुर, मधेपुरा, पूर्णिया एवं सुपौल जिलों में मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों जमुई, खगड़िया, मुंगेर एवं सहरसा जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सीवान जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। जिले के मैरवा में सबसे अधिक 75.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अब तक पूरे प्रदेश में 155.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस बीच हमारे संवाददाता ने बताया है कि अररिया जिले के विभिन्न भागों में देर रात से आज सुबह तक तेज बारिश हुई है। बारिश से सदर अस्पताल परिसर, कचहरी, बस स्टैंड में जल जमाव हो गया है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में भारी बारिश और उत्तर बिहार के कई क्षेत्रों में लगातार बारिश से गंडक समेत अन्य नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। गंडक नदी का पानी पश्चिम चंपारण जिले के योगापट्टी प्रखंड के सिसवा गांव में कई घरों में प्रवेश कर गया है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता बाढ़ और कटाव की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

गोमती नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए नदी पर स्थित बराज के कई फाटकों को खोल दिया गया है। इधर पटना और मुंगेर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मोकामा घाट और ओटा में गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से तेजी से कटाव भी हो रहा है। जल संसाधन विभाग इन क्षेत्रों में कटाव को देखते हुए विशेष निगरानी बरत रहा है। वहीं मुंगेर में भी प्रत्येक घंटे 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। पूर्व मध्य रेलवे ने मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, हाजीपुर, सीतामढ़ी और मोतिहारी सहित सभी स्टेशनों के सर्वर अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सिस्टम को यूनिफाइड टिकटिंग नेटवर्क से अपग्रेड किया जाएगा। इस नेटवर्क के उपयोग से यात्री टिकट 5 सेकंड में बुक कर सकेंगे। वहीं IRCTC और PRS काउंटर से भी बुकिंग कम से कम समय में हो सकेगी। ये सुविधा पूर्व मध्य रेलवे के सभी 5 रेल मंडलों में उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 15 जुलाई को भागलपुर के गौराडीह के कासिल में नवस्थापित डिग्री कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान श्री चौधरी प्रदेश के सभी नवस्थापित डिग्री कॉलेजों के सत्रारंभ की भी शुरुआत करेंगे। जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियों का निरीक्षण किया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का 67वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। पूर्व कुलपति प्रोफेसर A.K. रॉय, पूर्व कुलपति प्रोफेसर क्षेमेंद्र कुमार और अन्य गणमान्य अतिथियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने अवैध तरीके से आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का उद्भेदन किया है। इस मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से लैपटॉप समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किए गए हैं। मधुबनी जिले में ऐतिहासिक सौराठ सभा का कल समापन हो गया। सभा के अंतिम दिन पंजीकारों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सौराठ सभा समिति के अध्यक्ष कृष्णकांत झा गुड्डू ने बताया कि इस वर्ष विभिन्न पंजीकारों के पास 30 से 100 सिद्धांत यानी वैवाहिक सहमति संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की सभा में पंजी प्रथा के प्रति समाज में नई जागरूकता देखने को मिली है। विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों द्वारा भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिहार के सेतु मिश्रा ने चीन में आयोजित एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही वे एशियाई एथलेटिक्स में 2 पदक जीतने वाले राज्य के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। सेतु मिश्रा पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के रहने वाले हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रविंद्रन शंकरन ने बताया कि सेतु ने 4x400 मीटर मिश्रित रिले में भारतीय टीम को स्वर्ण पदक तथा पुरुष 4x400 मीटर रिले में रजत पदक दिलाने में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सेतु मिश्रा की इस उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, नई सरकार के 100वें दिन दीदियों को दूसरी किस्त, छूटी हुई जीविका दीदियों को भी पहली किस्त मिलेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना के लिए राज्य के 16 जिलों में 34 पर्यटन स्थल चयनित। महिला और युवा उद्यमियों को 25,000 रूपये अतिरिक्त सहायता देगी राज्य सरकार। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, बिहार में पत्थर और गिट्टी के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम। अखबार लिखता है, मुख्यमंत्री ने 6 जिलों में 44 नई खाद्यान्नों को दी हरी झंडी। प्रभात खबर ने लिखा है, VBG रामजी योजना के तहत काम कराने की अवधि बदली, 20 से 17 जिलों में काम रुकेगा, धान बुआई की अवधि में हुआ बदलाव। आज अखबार ने फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी खबर पर लिखा है, अर्जेंटीना 6ठी बार सेमीफाइनल में। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बिहार हेली और एयर टूरिज्म सेवा की शुरुआत करेंगे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा और जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर करेंगे नामांकन। प्रदेश में कृषि के लिए कमजोर मानसून को देखते हुए विकसित भारत जीराम जी के श्रमिकों को खरीफ की खेती के लिए मिलेगी छूट। और मौसम विभाग ने आज अररिया, बांका, भागलपुर, कटिहार और किशनगंज समेत 8 जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी

0: से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको बता दें एक बार फिर से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। आकाशवाणी के पटना दरभंगा केंद्र से इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा 9:10 पर। 10:00 रसमंजरी कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्म संगीत, और 10:30 प्रस्तुत करेंगे अंग्रेजी वार्ता। 10:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनेंगे कुछ गीत अनुपमा शैरन की आवाज में। 12:00 प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम बिहार का लोक संगीत, और 12:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम सुरों का सफर।

प्रस्तुत करेंगे अंग्रेजी वार्ता। 10:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनेंगे कुछ गीत अनुपमा शैरन की आवाज में। दोपहर 12 बजे प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम बिहार का लोक संगीत और दोपहर 12:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम सुरों का सफर।

सांधकालीन सभा में शाम 4:30 पर प्रस्तुत करेंगे युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी। भोजपुरी कार्यक्रम आरती का प्रसारण होगा शाम 5:30 पर। ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम चौपाल प्रस्तुत करेंगे शाम 6:30 पर और खेती गृहस्थी कार्यक्रम में किसान भाई कृषि संबंधी जानकारी हासिल कर सकते हैं शाम 7:00।

0: रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत और रात्रि 8:30 पर प्रस्तुत करेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे सीताराम सिंह से कुछ भजन। रात्रि 10 बजे आप सुन सकते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सोमवासरीय संगीत सभा। कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर नीरा चौधरी से शास्त्रीय गायन। श्रोताओं, ये थे आकाशवाणी पटना से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। अगला कार्यक्रम कुछ ही पल।
1: आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर संध्या 6:30 पर।
2: भोर होते उठ जाओ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबय वाला काल्हि लेल।
3: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप सँ सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
4: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं हैत तो खेती नहीं हैत, आ खेती जँ नहीं हैत उपजा नहीं हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
5: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
6: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
2: घर घर केर वाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केर वाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
6: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
7: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
8: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
7: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
6: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
9: अब नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।
2: हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगें जिन तक

पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो। उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू मा।
1: गुआ यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में। यह आकाशवाणी का पटना दरभंगा केंद्र है। पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।
2: उर्दू प्रोग्राम अंजुमन के तमाम अज़ीज़ सामईन की खिदमत में हमारा आदाब। सामीन, एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में अपने आज के नशरियात के साथ हाजिर हुए हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी तफसीलात से आपको आगाह करवा दें। शेरनामा के तहत गज़ल से हम आगाज महफिल करेंगे। इसमें आज आप समात फरमाएंगे मिर्ज़ा गालिब का कलाम, और इसके बाद हमारी जो अगली पेशकश होगी वो होगी महफिल सुखन स्टूडियो मुशायरा। इसमें जो शोरा हजरात हाजिर होंगे वो उनके इस्माए गिरामी शहाबुद्दीन, शब्बीर अहमद, मोहम्मद नसीम अख्तर और निज़ामत मोहम्मद नसीम अख्तर की ही होगी। इसके बाद सामीन बज़्म मौसीकी हम आरास्ता करेंगे। इसमें आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे गज़लों से। तो ये हमारे आज की नशरियात की तफसील थी। आइए अब कोई भी ताखीर किए बगैर लीजिए, हम इस गज़ल के साथ हमारी आज की इस महफिल का आगाज़ किए दे रहे हैं। आवाज़ जगजीत सिंह की है।

मिर्ज़ा गालिब का कलाम आप समाप्त फरमा रहे थे सामीन जगजीत सिंह की आवाज़ में। यकीनन जो वाक़यात और हादसात होते हैं उन पे इंसान की दस्तरस नहीं होती है, सिर्फ़ और सिर्फ इंसान इस बात को कबूल करने के लिए ही तैयार हो सकता है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उन्हें वो अपने इस आँखों से देखे और सिर्फ उसके असरात को महसूस करे और फिर उसे अपनी ज़िंदगी में इस तरह उतारे कि इंसान अपनी ज़िंदगी को कामयाबी की जानिब लेकर चले। यकीनन कामयाबी के ज़रूरत जो है वो ज़िंदगी गुजारने वाले उन तमाम लोगों को है, क्योंकि ज़िंदगी मुख्तसर है और इसमें अपने आप को अपने काम के ज़रिए नुमाया करने की जो एक कोशिश है वो हर पै हर दम इंसान के साथ लगी होती है। ऐसे ही ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए हमारे हुकूमत की जानिब से वक्तन फवक्तन बहुत तरह की स्कीम्स भी चलाई जाती हैं जिनसे इस्तफादा हासिल करके अपने ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाया जा सकता है। आज हम इस मोड़ पे पहुंच गए हैं कि दुनिया जो है बिल्कुल ग्लोबलाइजेशन के इस मकाम पे है जहाँ सारी चीज़ें बिल्कुल हमारे दस्तरस में आ गई हैं और उन तमाम के लिए अपने आप को मुलविस करते हुए हमें उसमें अपने अपने काविशों को करना ज़रूरी होता है। इसके लिए हमें जहन भी खुला रखना होगा और अपने अमल को भी करते रहना होगा। नई मंजिल स्कीम जो हुकूमत हिंद के वजारत अक़लियती उमूर की जानिब से चलाई जाती है उसका जो मकसद है वो अक़लियती नौजवानों को स्कूल छोड़ दिया है जिनके पढ़ाई में बहुत तरह की परेशानी आ गई है लेकिन उन्हें हुनर के ज़रिए से इस तरह से बेहतर बनाया जाए कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से एक मेयार के साथ गुजार सकें। इसके तहत नौजवानों को 8वीं या 10वीं जमात के सर्टिफिकेट दिलवाने के साथ साथ रोज़गार के मुख्तलिफ हुनर भी सिखाए जाते हैं। उम्र की हद इस स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों की 17 से 35 साल के दरमियान में है और ख़वातीन का हिस्सा इस स्कीम में कम अज़ कम 30% नशिस्त है। यकीनन नई मंजिल स्कीम्स जिसके ज़रिए से पढ़ाई छोड़ चुके वो नौजवान अपने हुनर के ज़रिए से अपने आप को निखार सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की काबिश कर सकते हैं। इससे इस्तफादा हासिल करते हुए इस जानिब गामजन हो तो बेहतर है। आइए सामीन इस छोटी सी गुफ्तगू के बाद हम आपको इस अगली पेशकश की जानिब मुतवज्जे कराना चाहते हैं जिसका ज़िक्र हमने किया था। ये महफिल सुखन स्टूडियो मुशायरा आपकी समातों के हवाले कर रहे हैं। इसके शोर का एक बार फिर से बताएं कि मोहम्मद नसीम अख्तर, शहाबुद्दीन और शब्बीर अहमद है जबकि फराज

0: क्या बात है,
1: बहुत अच्छा।
2: अजीब शख्स हूँ पत्थर
1: की जात रखता
0: हूँ। वाह वाह वाह वाह,
1: क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
0: वाह वाह,
1: क्या बात है,
0: बहुत खूब बहुत खूब।
2: अजीब,
1: क्या बात है,
2: और शेर सुनिए।
1: एनायत
2: यू।

0: क्या बात है,
1: अच्छा है, अच्छा है यार, वाह वाह
2: हवा के रुख, बहुत नवाजिश।
0: बहुत
2: और ये शेर भी समाप्त कर लिया
0: जाए।
3: इनायत इनायत
1: इनायत
3: इनायत
2: तेरे

0: वाह
1: अगर
0: वाह
1: वाह
0: तेरे फराक ने
1: समझौता कर लिया है, मगर
0: समझौता कर लिया
2: वाह वाह वाह
0: तेरे।

0: वाह
1: वाह
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह
1: वाह वाह वाह वाह
0: वाह
1: वाह वाह वाह
0: वाह
2: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह
1: वाह
0: वो जिसको देख के सन्नाटे कांप जाते
2: हैं।
0: मैं अपनी आँखों में एक ऐसी रात
1: रखता। वाह बहुत खूब भाई,
2: आँखों में एक ऐसी रात रखता।

0: बंदी के जिस्म को छूलूं तो आप हो जाए।
1: वाह
2: मैं
1: बहुत अच्छे।
2: सहरा हूं कि समुंदर की जात
0: जात रखता।
1: क्या बात है, क्या बात है।
3: वाह
1: मैं सहरा हूं कि समुंदर की जात रखता।

0: 吧，
1: 也欠
0: 吧，
1: 也欠
0: 吧
1: 的，欠吧的，欠吧。
0: अजीब शख्स और मक्ता समाप्त कर लिया है।
1: नायक, नायक।
0: जिसे

0: गया शब्बीर,
1: गुजर गया शब्बीर, वाह
2: गुजर गया शब्बीर।
3: अच्छा यार, वाह वाह।
2: जिसे भुलाए ज़माना, गुजर

0: अच्छा है यार।
1: वीरानी सी लगे हैं सभी रह गुजर।
2: वाह वाह वाह वाह,
0: अच्छा है,
2: वाह वाह वाह, वीरानी सी लगे,
1: वीरानी सी लगे
3: सभी रह गुजर मुझे,
2: गुजर मुझे, वाह वाह वाह।

0: वाह वाह वाह वाह वाह।
1: मुद्दसी हो गई नहीं अपनी खबर मुझे,
2: क्या बात,
0: बहुत
3: क्या बात,
0: बहुत
3: अच्छा।
1: क्या फिर तलाश करती है
3: कोई नजर मुझे,
1: नजर
0: बहुत खूब,
3: क्या बात है।
1: मक्ता समाप्त कर
0: लीजिए।
1: शब्बी

0: लफ्जों का आज कहते हैं सब जादूगर।
1: वाह वाह
2: वाह
1: वाह
2: वाह
1: वाह
2: भाई, क्या बात है, बहुत
0: लफ्जों
1: का आज कहते हैं
0: आज कहे
1: सब जादूगर मुझे, आए हाय वाह वाह वाह वाह
0: सब जादूगर मुझे,
2: वाह वाह
0: क्या
1: बहुत खूब
0: तलाश
1: बहुत
0: करती है कोई नजर मुझे।
1: बहुत खूब बहुत खूब शब्बीर अहमद साहब,
3: बहुत नवाजी,
1: बहुत
3: शुक्रिया।
1: अभी हम लोग बहुत ही उम्दा कलाम सुन रहे थे शब्बीर अहमद साहब से, तरन्नुम में पेश कर रहे थे बहुत ही खूबसूरत गजल। और अब मैं दावत सुखन दे रहा हूँ जनाब शहाबुद्दीन साहब को। राह चलते वो रश्के कमर मिल गया, राह चलते वो रश्के कमर मिल गया, मैं अकेला था एक हमसफर मिल गया। आइए सुनते हैं जनाब शहाबुद्दीन साहब को।
2: गजल का मतलब हाजिर कर रहा हूँ आप सबके समातों के हवाले, तवज्जो चाहूंगा।
1: इरशाद।
2: चलने वाले ही बताएंगे सफर की कीमत, चलने वाले ही बताएंगे सफर की कीमत, धूप में जल के ही समझेंगे शजर की कीमत, धूप में जल के ही समझेंगे शजर की कीमत।
1: बहुत खूब।
2: और शेर हाजिर कर रहा हूँ, तवज्जो चाहूंगा। जिसने ताउम्र मुसर्रत से ताल्लुक रख
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
2: जिसने

0: आहा दर्दे जिगर की
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: कीमत,
1: बहुत
0: उसको
1: खूब।
0: मालूम कहाँ दर्दे
1: डर की कीमत, बहुत खूब बहुत
0: जिगर
1: खूब।
2: की कीमत। क्या कहने जनाब,
0: और ये शेर देखेंगे बतौर खास है
1: इनायत हो।
0: कि कत्ल हो कर भी मैं कातिल को दुआएं
1: वाह
0: दूंगा,
1: वाह वाह, कत्ल
0: कत्ल
1: होकर भी।
0: हो कर भी मैं कातिल को दुआएं दूंगा, उसकी हसरत ने बढ़ा दी मेरे सर
2: बहुत खूब,
1: की
2: बहुत अच्छी,
1: वाह वाह वाह वाह
0: कीमत,
1: वाह
0: उसकी
2: वाह वाह वाह
0: हसरत
2: वाह
0: ने बढ़ा दी मेरे सर की
2: वाह वाह वाह
1: वाह,
2: वाह
1: बहुत खूब बहुत खूब,
0: कीमत।
1: वाह वाह
0: और
1: वाह
0: आखिरी
1: वाह
0: शेर
1: वाह
0: देखेंगे
1: वाह। इनायत
0: कि जब कोई लिखेगा अफकारे हसी के
1: क्या वाह
0: किस्से,
1: वाह
0: जब
1: वाह,
0: कोई
2: लिखेगा अफकार
0: लिखेगा
2: हसी के किस्से।
0: अफकारे हसी के किस्से, तब समझ पाएंगे सब इल्म हुनर
1: वाह वाह, तब समझ पाएंगे
2: कीमत।
1: सब
2: क्या
1: इल्म
2: कहने,
1: हुनर
0: तब
1: की कीमत।
0: समझ
1: वाह वाह
0: पाएंगे
1: वाह वाह वाह
0: सब
1: वाह, बहुत खूब
0: इल्म हुनर की
1: बहुत खूब बहुत खूब,
0: कीमत।
2: वाह वाह वाह वाह।
0: और मक्ता हाजिर कर रहा हूं,
1: इशात इनायत हो।
0: शब

0: यार शहर की कीमत, वरना क्या होती मेरे यार
1: वाह वाह वाह वाह
0: शहर की
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह
0: कीमत।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।

0: वरना क्या होती मेरे यार शहर की कीमत, वरना क्या होती मेरे यार शहर की कीमत।
1: बहुत हो
0: गजल का मतलब हाजिर कर रहा हूँ
1: इरशाद।
0: हर एक फिरके के सर चढ़कर ये जादू बोलता है।
1: हाँ हाँ

अभी उर्दू बोलता है, हमारे मुल्क में जरा भी उर्दू बोलता है, हर एक फिर

0: अहे।
1: और आखिरी शेर देखेंगे
0: इरशाद
1: कि हर एक चेहरा है अफसुरदा, हर एक जानिबू है खामोशी।
2: वाह वाह वाह वाह,
1: हर एक चेहरा है अफसुरदा, हर एक जानिबू

0: हुआ है क्या हमारे शहर में बोलता है। मक्ता चलो एहसास चलते हैं जहाँ पे हो सुकून हासिल।
1: वाह वाह वाह क्या बात।

का जिस जा हर एक सू बोलता है, परिंदा अमन का जिस जा हर एक सू बोलता है, हर एक फिरके के सर चढ़कर।

0: में जरा भी उर्दू
1: बहुत खूब,
0: बोलता
1: बहुत खूब,
0: है।
1: बहुत खूब। अभी बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे शहाबुद्दीन साहब कि हर एक फ़िक़े के सर चढ़ के ये जादू बोलता है।

0: बहुत ही उम्दा कलाम पेश कर रहे थे और अब मैं अपना कुछ कलाम पेश करने जा रहा हूँ। अर्ज क्या है कि कुछ तो मेरा भी ध्यान रख लेना, इस वसीयत का मान रख लेना। कुछ तो मेरा भी ध्यान रख लेना, इस वसीयत का मान रख लेना। हमने वादा किया मोहब्बत का, हमने वादा किया मोहब्बत का, तुम हमारी जुबान रख लेना। हमने वादा किया मोहब्बत का, तुम हमारी जुबान रख लेना। और शेर देखिए कि सर तुम्हारा अगर मुकर्रर, हमने वादा किया मोहब्बत का, तुम हमारी जुबान रख लेना। और शेर है कि आसमां है सभी का दुनिया में, आसमां है सभी का दुनिया में, तुम परों में उड़ान रख लेना। आसमां है सभी का दुनिया में, तुम परों में उड़ान रख लेना। और आखिरी शेर देखिए कि जब भी मेहमान घर पर आए तो, जब भी मेहमान घर में आए तो साफ सुथरा मकान रख लेना।
1: क्या बात,
0: जब भी मेहमान घर में आए तो साफ सुथरा मकान रख लेना। कुछ तो मेरा भी ध्यान रख लेना, इस वसीयत का मान रख लेना। और एक और गजल पेश खिदमत है कि उस पेड़ की जो छांव इधर आए तो अच्छा, उस पेड़ की जो छांव इधर आए तो अच्छा, सूरज की अगर धूप बिखर जाए तो अच्छा, सूरज की अगर धूप बिखर जाए तो अच्छा। ये उम्र हमेशा ही गरीबी में कटी है, ये उम्र हमेशा ही गरीबी में कटी है, बाकी जो मेरे हक में गुजर जाए तो अच्छा। ये उम्र हमेशा ही गरीबी में कटी है, बाकी जो मेरे हक में गुजर जाए तो अच्छा। हर चंद कि इंसान खताओं का है पुतला,
1: क्या बात,
0: कुछ नेकियां इंसान सी कर जाए तो अच्छा, कुछ नेकियां इंसान सी कर जाए तो अच्छा। हर चंद की इंसान खताओं का है पुतला, कुछ नेकियां इंसान सी कर जाए तो अच्छा। और आखिरी शेर है कि दौलत के भरोसे पे नापेंगे समंदर को, दौलत के भरोसे पे नापेंगे समंदर को, ये सर से नशा उनके उतर जाए तो अच्छा, ये सर से नशा उनके उतर जाए तो अच्छा। अब मख्ता पेश खिदमत है कि अख्तर का हुआ खून उन्हें कौन बताए, अख्तर का हुआ खून उन्हें कौन बताए, इल्जाम मगर गैर के सर जाए तो अच्छा, इल्जाम मगर गैर के सर जाए तो अच्छा। उस पेड़ की जो छांव इधर आए तो अच्छा, सूरज की अगर धूप बिखर जाए तो अच्छा। एक और छोटी सी गजल पेश खिदमत है कि फूल की खुशबुओं को चुरा ले गया, फूल की खुशबुओं को चुरा ले गया, कौन था जो मेरी ये कबा ले गया, फूल की खुशबुओं को चुरा ले गया, कौन था जो मेरी ये कबा ले गया, वो गया तोड़कर दिल मेरा तो मगर, वो गया तोड़कर दिल मेरा तो मगर, जाते जाते वो अपनी वफा ले गया, जाते जाते वो अपनी वफा ले गया। आसमां पर निशाना लगाया है कौन, आसमां पर निशाना लगाया है कौन, जो हसी बादलों की घटा ले गया, जो हसी बादलों की घटा ले गया। और आखिरी शेर पे खिदमत है कि दोस्त ऐसा भी निकला अदालत में भी, दोस्त ऐसा भी निकला अदालत में भी, मेरे हिस्से की हर एक सजा ले गया, दोस्त ऐसा भी निकला अदालत में भी, मेरे हिस्से की हर एक सजा ले गया। फूल की खुशबुओं को चुरा ले गया, कौन था जो मेरी कबा ले गया। आज के इस मुशायरे में मेरे साथ थे जनाब शब्बीर अहमद साहब और जनाब शाहबुद्दीन साहब, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मोहम्मद असीम अख्तर आपसे इजाजत चाहता हूं।
2: समीन महफिल सुखन के तहत ये स्टूडियो मुशायरा भी आप समाप्त फरमा रहे थे, जिसमें शामिल शोरा थे शहाबुद्दीन, नसीम अख्तर और शब्बीर अहमद। फराइज निजामत मोहम्मद नसीम अख्तर के जिम्मे थी। और आइए अब हमारी अगली पेशकश बज़्म मौसीकी, इसमें अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में ये गज़ल हम आपकी समातों के हवाले किए दे रहे हैं। लीजिए मिलाइजा हो।

अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में मिर्ज़ा गालिब के कलाम को अभी आपने समाप्त किया सामीन, और अब हम अगली गज़ल जो आपको सुनवाने जा रहे हैं वो है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में। लीजिए आपकी समाप्त।

0: इस चमन से
1: समीन ज़ौक का कलाम आप समाप्त कर रहे थे भूपेंद्र त्रिवास में, और इसी के साथ हमारा सफर यहीं तमाम हुआ। कल फिर हमारी मुलाकात होगी, इसी वादे के साथ हमें इजाजत दीजिए।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

किशोर कुमार को आप सुन रहे थे फिल्म परिचय में। गुलजार के लिखे इस गाने को संगीत दिया था आरडी बर्मन ने।

मेरा नाम जोकर। इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है विद्यापति गीतों का हमारा कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम में आज आपने सुना राम कुमार मल्लिक, गौतम मिश्र, काशीनाथ झाकिरन और सूर्य नारायण पोद्दार को। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, हमारे अगले उद्घोषणा की थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। लीजिए कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। कलाकार हैं पंडित जसराज

पंडित जसराज के गाए इस कबीर भजन के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। लीजिए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार और जय जोहार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से लिखा है। लिखते हैं,
2: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
3: आप आगे लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिलिका पर आपका विषय उत्कृष्ट था। प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है, चरण दर चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या है या सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका सामान्यतः उपयोग कहाँ होता है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है। विषय और प्रस्तुति दोनों ही शानदार थे।
2: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था, इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद।
3: आगे आप लिखते हैं, सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है, यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एन आर प्रसाद जी और अखिला जी।
3: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास शिव कुमारी राम दुलारी जी का।
2: जी इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं,
3: उमंग कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद, प्रेरणाप्रद और ज्ञानवर्धक होता है। हम तो नियमित श्रोता हैं, आपके द्वारा दी गई जानकारी लाजवाब होती है। हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
2: भारत की नदियों, ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार और वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाए तो बहुत इनायत होगी। आपकी पूरी उमंग कार्यक्रम टीम परिवार को उत्कृष्ट लगन और मेहनत के लिए हम सल्यूट करते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
2: धन्यवाद आप सबका भाग लेने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
3: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों।
2: श्रोताओं इसका जवाब जान लेते हैं। मातृ वृक्ष उन पेड़ों को कहते हैं जो जंगल में बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें धरती पर दूर दूर तक फैली होती हैं और वे अपनी जड़ों द्वारा अन्य छोटे पेड़ पौधों को पोषण पहुंचाते हैं।
3: जी, और हमारा दूसरा प्रश्न था पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता है। कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियां झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर निर्भर करती है। कृत्रिम प्रकाश

0: इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है। साथ ही साथ कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
1: जी, हमारा अगला प्रश्न था, क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
0: जी, इसका जवाब भी जान लेते हैं। बहुत से पेड़ हो सकते हैं ऐसे, लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद, और नॉन क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़।
1: जी अश्वता, हमारा अंतिम प्रश्न था, हमने आपसे पूछा था, जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो उदाहरण दीजिए।
0: जब हम किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है और हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा होता है।
1: जी तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कंगारू के कितने पैर होते हैं?
1: 8800440559 पर, जो हमारा IBRS नंबर है, और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
0: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बाढ़ आने के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है।
2: हमारे खेतों से पानी भर गया, सारी फसल बर्बाद,
3: सारी फसल बह गई।
4: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों, बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता, वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई, और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
5: लो भाई, पहुंच गए सरितपुर। कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
3: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत।
5: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। कितना साफ पानी है।
4: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई।

0: आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
1: अरे काट काट काट, अरे मेरा भी क्या देख रहा काट।
2: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
0: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
3: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
0: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
1: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
4: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।
0: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते
4: उफ इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
5: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
6: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
0: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
7: हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा।
8: लगता है नदी क्रोधित हो गई है।
5: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल बर्बाद,
8: सारी फसल बह गई।
7: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा,
8: सारा
7: सामान
8: जल्दी
7: से ऊपर ले जाना होगा।
8: चलो जल्दी ऊपर,
7: हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो जल्दी, चलो
8: चलो चलो,
7: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप वाप ना आ जाए।
8: ध्यान से संभल कर।
0: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव

0: की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
1: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी। बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
2: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मुनीश शर्मा, कीमती आनंद, पूनम श्रीवास्तव और शशांक शर्मा। शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। श्रोताओं, आपको अवश्य ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है एक गांव की कहानी।

ये बात बहुत पुरानी है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गांव बसा था। गांव का नाम था रैणी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरझर बहते झरने और नदी नाले थे। घाटियों में बहती हुई हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला देती थी। बहुत ही सुंदर था यह गांव। इस गांव के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना और पशु पालना। उनकी सारी जरूरतें जंगल से ही पूरी होती थी। दिन भर जंगलों और खेतों में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोक गीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती। जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवारजनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे। उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं, मैं पेड़ हूं, मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए। मैं ही बसंत और वर्षा लाता, हवा का अमृत मैं ही पिलाता, खुशहाली को मैं ही लाता। मैं ही जीवन हूं धरती का, मुझे नष्ट मत करो। मैं नष्ट हो जाऊंगा तो झरने सूख जाएंगे, धूल उड़ेगी और फिर बनेंगे रेगिस्तान।

रैणी गांव के लोगों का जीवन बड़े ही संतोष से बीत रहा था। इसी गांव में गौरा देवी नाम की एक युवती रहती थी। वो बड़ी बहादुर और मेहनती थी। गांव के और लोगों की तरह वो भी दिन भर जंगल में ही रहती। जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फल फूल कंदमूल और शहद इकट्ठा करती।

0: गौरा, अरे ओ गौरा, अरे कहाँ निकल गई है तू? अकेली जंगल में दूर मत जा।
1: अरे चाची, मैं यही तो हूँ। अरे चाची,
0: हाँ,
1: यहाँ आकर तो देखो।
0: हाँ हाँ,
1: कितने सारे छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के।
0: हाँ,
1: सबको यहीं पे बुला लो चाची।
0: हाँ हाँ,
1: 7-8 छत्ते तो होंगे ही।
0: अरे ओ रेवती, अरे सुनो तो, श्यामा।
2: हाँ चाची।
0: जिंदौरी।
2: हाँ चाची।
0: और हाय हाय, ये नाम तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। हाँ प्रसन्नी, अरे सब इधर आओ, जरा सुनो तो, ये गौरा क्या कह रही है।
2: आ रही हूँ चाची।
3: हाँ चाची।
4: क्या है चाची?
0: अरे
4: क्या हुआ?
0: कोई घबराने वाली बात नहीं है री। वो गौरा कह रही है कि सामने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं।
4: छत्ते? क्या मतलब?
0: हाँ हाँ, छत्ते, वो भी 2-3 नहीं, बड़े बड़े 7-8 छत्ते लगे हैं। हाँ,
4: 7-8 छत्ते, कमाल है।
2: अरे फिर तो मजा आ गया।
4: यानी अगर सारा शहद निकाल ले तो 2 गगरी भर तो हो ही जाएगा। अरे हम कितने दिनों से खोज रहे थे शहद, अब तक कहीं नहीं मिला, और आज मिला है तो
2: छप्पर फाड़ गए।
4: तो आओ पहले शहद ही निकाल लेते हैं।
5: हाँ, क्यों नहीं, शहद निकालने के बाद दांतों भी तोड़ लेंगे।
2: अरे आज गुलर भी तो तोड़ने हैं।
4: हाँ, चल चल चल चल।

0: तो ऐसा था वहां का दैनिक जीवन। जंगल में चीड़, देवदार, बांस, भैमल, असीन, तूण, तिमल और धौड़ के पेड़ थे। पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियां जंगलों में। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गौरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गईं। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।
1: नहीं गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
2: आवाज? हाँ, आवाज तो आ रही है। अरे लगता है कोई पेड़ काट रहा है। मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वो देख गौरा। अरे हाँ, वो साल के बड़े पेड़ के पास।
1: हाँ वही,
2: न जाने कौन लोग हैं।
1: पता नहीं कौन लोग हैं।
2: अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं वो हमारी आवाज ही ना सुन ले। चलो और नजदीक चल के देखते हैं।
1: चलो चलो। खाकी पैंट, सिर पर टोपी और हाथों में बंदूक भी है।
3: राम,
1: ये गांव के लोग तो नहीं लगते।
2: अरे मुझे तो ये शहर के लोग लगते हैं, जो पेड़ काटने आए।
1: अरे अरे देखो तो, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा है।
2: हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग यहाँ चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं। ऐसा है कि हम इन्हें जरूर रोकेंगे।
1: हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
4: मगर कैसे? भला इतने सारे हथियारबंद लोगों को कैसे रोका जा सकता है? और वो हमें जान से भी तो मार सकते हैं।
2: अरे भले ही हमें जान की बाजी लगानी पड़े, इन्हें हर कीमत पर रोकना ही है। मगर इस समय इनके सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, गांव चलकर और लोगों को भी बुला लाते हैं।
1: ये ठीक रहेगा। मैं भी चलना चाहिए।
2: सुनो सुनो, मगर जिस रास्ते से हम आए हैं वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। सामने वाले पहाड़ को पार करके चलते हैं।
1: अच्छा।
2: वो रास्ता छोटा रहेगा।
1: हाँ, हाँ, हाँ, चलो चलो ठीक है,
5: जल्दी से पहुंच जाएंगे।
0: तो बस फिर क्या था, गौरा देवी अपनी सभी सहेलियों के साथ फौरन अपने गांव की ओर चल पड़ी। कटीली झाड़ियों में उनके कपड़े फट गए,

0: खरोंचे लगी। प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया। पथरीली जमीन से पांव लहूलुहान हो गए, मगर बिना रुके वो दौड़ती रही, दौड़ती रही। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने पेड़ों को बचाना। थकी हारी जब वो गांव में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। पुरुष काम करने खेतों में गए हुए थे, इसलिए एक भी पुरुष उस समय गांव में नहीं मिला।
1: हाय राम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें गौरा?
2: अरे गांव में मर्द नहीं है तो क्या हुआ, औरतें और बच्चे तो है ना, हमें उन्हीं को लेकर चलना होगा।
1: हाँ, ठीक है, ठीक है।
3: मगर ये औरतें और बच्चे।
2: अरे अगर मगर मत कर, क्या पेड़ हमारे भाई नहीं है? हम सब बहनें मिलकर अपने पेड़ भाइयों को बचाएंगी।
1: हाँ, हाँ,
2: बचाएंगी।
1: हाँ,
2: नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा।
1: ठीक है।
2: अरे कोई है? अरे बाहर निकलो, चाची।
4: हाँ, क्या बात है?
2: बुआ जल्दी बाहर आओ, शहर के लोग हमारा जंगल काट रहे हैं।
1: क्या जंगल?
2: जल्दी आओ,
1: अरे सफाई से नहीं।
0: और फिर गौरा देवी चल पड़ी जंगल को बचाने। उसके साथ 21 स्त्रियां और 7 बच्चे थे। सभी के सभी निहत्थे थे। उन्हें एक तरकीब सूझी। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जगह जगह पत्थरों के ढेर लगाकर उन्होंने रास्तों को लगभग बंद कर दिया, ताकि शहर के लोग यदि उन कटे पेड़ों को ले जाना भी चाहें तो ये संभव ना हो सके। अब सारी स्त्रियां आगे बढ़ी और पहुंची उस जगह पर जहां पेड़ काटे जा रहे थे।
2: सुनो, वृक्ष हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं,
3: बिल्कुल
2: इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं, अन्न लेते हैं, दवा लेते हैं, आज जब उन्हें काटा जा रहा है तो आओ अपने प्राणों की आहुति देकर इनकी रक्षा करें।
1: लेकिन हम क्या करें, इनके पास तो हथियार है।
2: अरे डरो मत, भाग कर हर बहन एक एक पेड़ से चिपक जाए ताकि ये पेड़ ना काट सके। भागो, चलो
0: इधर जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे। जब पेड़ काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती तो फिर क्या था, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए।
5: चिब्बू भाग ले यहां से,
6: बाद में
0: सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की।
7: वाह भैया, गौरा ने तो बहुत कमाल का काम कर दिया।
8: ऐसी चिपकी पेड़ से किसने छोड़ा ही नहीं पेड़ को। अरे क्या बात
9: है, मिट्टी जीतती रहे।
2: हम सबका कर्तव्य है।
0: दोस्तों, इसी रैणी गांव से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, जो आज सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है।
10: एक गांव की कहानी अभी आपने सुना। ये कार्यक्रम

0: विक्रम और अब इसी के साथ हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को
0: कुसुमलता
1: जगबंधु
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। आइए सुनते हैं कुछ फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है फिल्म अमानुष से। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में अमानुष फिल्म का ये गीत। अगला गीत हमने लिया है फिल्म कोरा कागज़ से। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में अमानुष फिल्म का ये गीत। अगला गीत हमने लिया है फिल्म कोरा कागज से। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में कोरा कागज़ फिल्म का ये गीत। अगला गीत हमने इन्हीं की आवाज़ में लिया है, फिल्म है मुकद्दर का सिकंदर।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीतों का कार्यक्रम। श्रोताओं, आप अपने रेडियो सेट के अलावे हमें न्यूज़ ऑन AIR ऐप के भी माध्यम से सुन रहे हैं। श्रोताओं, आप अपने एंड्रॉयड सेट मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के न्यूज़ ऑन AIR टाइप करें और इस ऐप को डाउनलोड कर इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आप भारत के किसी भी आकाशवाणी केंद्रों को जीवंत रूप से सुन सकते हैं। इसके साथ ही दूरदर्शन केंद्रों को भी आप इस पर देख सकते हैं। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अगला गाना हमने लिया है फिल्म मेरा नाम जोकर से। गायक कलाकार है मुकेश। हसरत जयपुरी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

0: अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में ये गीत। हसरत जयपुरी के लिखे गीत को संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन ने। फिल्म था मेरा नाम जोकर। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्स पर। साथ ही आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप के भी माध्यम से। लीजिए प्रस्तुत है महिलाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम नारी संसार।
1: नारी संसार सुनने वाली सभी बहनों को विजेता का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम नारी संसार में स्वागत है। बहनों, हमेशा की तरह हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आपको वार्ता भी सुनवाएंगे, हर दिन कुछ खास में जानेंगे रसोई से जुड़ी टिप्स और आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हुए आपको ले चलेंगे गीतों के सफर पे और सुनवाएंगे कुछ गीत।

ये अब कार्यक्रम में देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। तो बहनों, जल का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। हम अपनी रोज़मर्रा के कामों में सुबह से लेकर रात तक जल का लाभ उठाते हैं, चाहे वो ब्रश करना हो, स्नान करना हो, भोजन बनाना हो, मतलब दिन भर के जितने भी ज़रूरी काम हैं वो जल के बिना संभव नहीं होते। पर बहनों, जल की कीमत तभी समझ में आती है जब हमें पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिलता, क्योंकि अब तो हमें जल भी बिजली के द्वारा ही मिलता है। तो यदि घर में बिजली है तब तो जल आसानी से प्राप्त हो जाती है, पर यदि घर में बिजली ना हो या किसी कारणवश खराब हो गई हो, उस वक्त हमें पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है और उस वक्त हमें पानी का महत्व समझ में आता है। तो ऐसी स्थिति में जल का महत्व हमें साफ साफ दिखाई देने लगता है। इसलिए हमें इसके महत्व को हमेशा ध्यान में रखते हुए इसे संभाल कर खर्च करना चाहिए और अपने बच्चों को भी इसकी शिक्षा देनी चाहिए कि जल को हमें किस प्रकार संचय करना है ताकि वो हमारे आड़े वक्त काम आ सके। बहनों, हमें जल के महत्व को समझते हुए उसे बर्बाद होने से बचाने के लिए खुद भी कोशिश करनी चाहिए और घर के बाकी सदस्यों को भी इसकी सीख देनी चाहिए। हमारे द्वारा की गई छोटी छोटी गलती हमें बड़े बड़े बुरे परिणाम भोगने को बाधित करती है, इसलिए जल संचय को लेकर हमेशा सतर्क रहें। यदि आपके बच्चे ब्रश करते वक्त नल पहले से खुला छोड़ दें तो उसे समझाएं कि पानी की बर्बादी वो ना करें, ब्रश करने के पश्चात ही कुल्ला करने के लिए नल को खोलें। नहाने के पानी के साथ अक्सर बच्चों की आदत होती है खेलने की, तो उन्हें वहाँ भी टोकें और पानी को बर्बाद होने से बचाएं। हर दिन किसी बड़े बर्तन में, बाल्टी में या फिर किसी टब में पानी को भरकर उसे अच्छी तरह ढक कर रखें ताकि जब कभी पानी की दिक्कत हो तो वही संचय किया जल हमारे ज़रूरतों की पूर्ति करे। बहनों, कहते हैं जल ही जीवन है, तो जब जल ही जीवन है तो फिर हम इसे व्यर्थ में बर्बाद क्यों करें? हमें इसकी खपत तो करनी चाहिए पर उचित ढंग से, निरर्थक इसे बर्बाद ना करें, क्योंकि यदि जल बर्बाद हुआ तो समझे हमारे दिन भर की हर ज़रूरी ज़रूरत बर्बाद हुई। तो जल के महत्व को समझें, उसे बर्बाद होने से रोकें और उसके संचय को महत्व दें। आइए बहनों, अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत।

बहनों, आज के इस आधुनिक युग में हम पूर्णतः मोबाइल इंटरनेट पर निर्भर होते हैं। आज हमारी ज़रूरत की हर छोटी से छोटी चीज़ हो, हमारा पढ़ना लिखना हो, हमें जॉब की तैयारी करनी हो, हर कुछ के लिए हम निर्भर होते हैं मोबाइल पर और इंटरनेट पर। यहाँ तक कि अब तो स्कूल से होमवर्क भी मोबाइल पर ही आते हैं। तो कहने का मतलब है, हम हर प्रकार से इंटरनेट से बंधे होते हैं। पर बहनों, इनकी जितनी सुविधा है, जितना इसका फ़ायदा है, उतना ही नुकसान भी है। हम ये नहीं कहते कि मोबाइल ना देखें, इंटरनेट का उपयोग ना करें, अवश्य करें, पर थोड़ा एहतियात बरतते हुए। जी हाँ, आज के डिजिटल युग में हम जबकि पूर्णतः इस पर निर्भर हैं, तो इसका इस्तेमाल तो हमें करना ही है, पर थोड़ा सावधान रह के। इंटरनेट के खतरों से, जैसे धोखाधड़ी हो गया, हैकिंग है, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें। अपने सभी खातों के लिए जटिल और अलग अलग पासवर्ड बनाएं। अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखें। जी हाँ, अपने फ़ोन और कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप्स को नियमित रूप से अपडेट करती रहें। ये अपडेट सुरक्षा खामियों को दूर करते हैं। मॉल या कॉफ़ी शॉप जैसे खुले वाईफाई का उपयोग करने से बचें। बैंकिंग या खरीदारी जैसे संवेदनशील काम को ना करें, मतलब सार्वजनिक वाईफाई से बचें। किसी भी अनजान ईमेल, मैसेज या सोशल मीडिया पर आए लुभावने लिंक पर क्लिक ना करें। हमेशा लिंक और भेजने वाले का ईमेल एड्रेस ध्यान से जांचें। अपनी संवेदनशील जानकारी जैसे बैंक खाता संख्या, पासवर्ड या आधार कार्ड नंबर किसी भी अनजान वेबसाइट या व्यक्ति के साथ बिल्कुल साझा ना करें। अपने डिवाइस में एक अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखें और उसे हमेशा अपडेट करती रहें। बहनों, ये सारी सावधानियाँ हम बड़े तो समझ लेते हैं और उसे फॉलो भी करने की कोशिश करते हैं, पर हमारे बच्चे इन इंटरनेट के माध्यम को, इसके फ़ायदे और नुकसान से अनभिज्ञ गेम खेलने में लगे रहते हैं। तो अपने बच्चों को कोई भी चीज़ खुद डाउनलोड करने से रोकें, क्योंकि नुकसान की संभावना वहाँ भी है। बहनों, अपने बच्चों को ऑनलाइन किसी भी अनजान व्यक्ति से बात करने ना दें और ना ही खुद करें। इतना ही नहीं, हम, हमारा परिवार, हमारे बच्चे इस इंटरनेट की दुनिया में इस तरह कैद हो चुके हैं कि हमारे आसपास, हमारे समाज में क्या अच्छा क्या बुरा हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं चलता। इस तरह

हम धीरे धीरे समाज से भी कटते जा रहे हैं। हमारे सगे संबंधी जो कोसों दूर बैठे होते हैं, उनसे हम वीडियो कॉल के जरिए उनका चेहरा देख के बातें तो कर लेते हैं, पर अपने ही घर में पड़ायों की तरह रहते हैं। कहने का मतलब है, हर वक्त फोन पे लगे रहते हैं। एक तरफ जहां हम अच्छी अच्छी बातें जानते हैं, वहीं कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमारे लक्ष्य हमें भटकाती है, हमें बुरे रास्ते पर ले जाती है, हमें बुरे लोगों के करीब ले जाती है। तो कहने का मतलब है कि मोबाइल के बिना, इंटरनेट के उपयोग के बिना हमारा काम तो बिल्कुल नहीं चल सकता। तो हम इसका उपयोग तो करेंगे ही, पर सावधानी बरतते हुए, साइबर बुलिंग जैसी अपराध से बचते हुए। बहनों, जीवन में बरती गई छोटी छोटी सावधानियाँ हमें बड़ी बड़ी दुर्घटना से बचाती है। तो इसके लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें, तभी इस डिजिटल युग में हम निश्चिंत होकर खुशी से तनावपूर्ण जीवन जी सकते हैं। बहनों, एक छोटी मुलाकात के अंतर्गत आइए हम अपनी रेडियो सहेली आरती से जानें, मोबाइल उपयोग करते समय कुछ बातों का ख्याल किस तरह रखना चाहिए। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।

श्रोताओं, आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो सखी आरती। वर्तमान युग में मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। आज हर व्यक्ति के पास फ़ोन है, चाहे वो किसी भी उम्र के क्यों ना हो, सबके पास स्मार्टफोन देखने को मिलता है। जी हाँ, इसके बिना तो दिन गुजारना शायद मुश्किल हो गया है। बहनों, मैं आपको बता दूं कि मोबाइल फ़ोन के बहुत सारे फायदे हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं। आज के समय में सबके पास मोबाइल फ़ोन होता है और मोबाइल में कई ऐसे ऐप होते हैं जिन्हें कनेक्ट करने पर किसी से भी आप बात कर सकते हैं, या फिर आप किसी व्यक्ति से चैटिंग भी कर सकते हैं, वो भी आसानी से। इसके लिए आपको पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसके लिए नेट पैक होना ज़रूरी है। बहनों, एक ख़ास बात मैं आपको बता देती हूँ कि मोबाइल फ़ोन के कारण मानव शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है, जैसे आँखों पर तनाव या कम दिखाई देना या सिर दर्द या फिर नींद की कमी हो सकती है। तो बहनों, ध्यान रखें, अपने आँखों का ख्याल रखें। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आँखों में तनाव, सूखापन और सर दर्द हो सकता है। मोबाइल फ़ोन की लत से समय और पैसा दोनों की बर्बादी हो सकती है। तो बहनों, ध्यान रखें, महंगाई के इस युग में मोबाइल फ़ोन के कारण फिजूल खर्च बढ़ गया है। इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल नुकसानदायक हो सकता है। इसे सीमित और उपयोगी कार्यों के लिए ही उपयोग करना चाहिए। बहनों, क्या आप जानते हैं कि बात करते समय मोबाइल फ़ोन को कान से थोड़ा दूर रखें या स्पीकर फ्री करके आप बात कर सकते हैं, या फिर ईयरफोन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही चार्जिंग करते समय सतर्क रहें। जी हाँ, फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर गेम खेलने या कॉल करने से बचें, क्योंकि इससे फ़ोन ज़्यादा गर्म हो सकता है और रात में फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर ना सोए। साथ ही याद रखें, हमेशा ओरिजिनल या अच्छी क्वालिटी के चार्जर का ही उपयोग करें। श्रोता बहनों, वाहन चलाते समय फ़ोन का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। बहनों, एक ज़रूरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि साइबर अपराध से बचें। OTP या बैंक विवरण कभी भी किसी के साथ साझा ना करें और अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। साथ ही अज्ञात नंबरों से आए फोटो, वीडियो या ऑडियो डाउनलोड ना करें।

0: अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
1: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनाने का, 5,00,000 रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

बहनों, अभी आप हमारी रेडियो सहेली आरती से जान रही थी मोबाइल पर बात करते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बहनों, ये सही भी है, मोबाइल पर बात करते समय बहुत तरह से सावधानी बरतनी होती है, खासकर छोटे बच्चों को लेकर, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं होता मोबाइल के इस्तेमाल के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, उन्हें किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हें तो बस मोबाइल पर गेम खेलना होता है। तो अपने बच्चों को समझाएं कि ज़्यादा वक्त मोबाइल पर ना बिताएं, क्योंकि इससे बहुत तरह की परेशानियां हो सकती है। उनका मानसिक विकास अवरुद्ध हो सकता है और उनकी आंखों पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। तो इन सारी बातों का बहनों ख्याल रखें और अपने बच्चों को मोबाइल से दूरी बनाने को कहें। बहनों, आइए अब कार्यक्रम में एक और गीत सुनते हैं।

आइए अब चलते हैं अपने अगले अंक की ओर, जिसका नाम है हर दिन कुछ खास। आज इस अंक के अंतर्गत हम जानेंगे रसोई से जुड़ी कुछ टिप्स। बहनों, कहते हैं स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है, और यदि बात रसोई की हो तो जिस रसोई में साफ सफाई का अधिक ख्याल रखा जाता है वहाँ माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। बहनों, रसोई घर एक ऐसा स्थान है जहाँ परिवार के लिए भोजन तैयार किया जाता है और साथ ही खाने की चीज़ों को भी स्टोर किया जाता है। तो आइए जानें इसके लिए कुछ खास उपाय। बहनों, सबसे पहले तो रसोई में जूते चप्पल ना ले जाएं। उसके बाद जब भी भोजन बनाएं तो अपने बालों को बांध कर रखें, वरना बाल टूटकर खाने की चीज़ों में गिर सकते हैं।

तो इस तरह की छोटी छोटी सावधानियां बहनों आप बरतें, आपका रसोई हमेशा साफ और स्वच्छ रहेगा। अब आइए कार्यक्रम में चलते चलते सुनते हैं एक और गीत।

0: बहनों, इसी गीत के साथ दीजिए नाड़ी संसार कार्यक्रम से अपनी रेडियो सहेली विजेता को अनुमति। तब तक के लिए नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाड़ी संसार। महिलाओं को संबोधित हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पश्चिम बंगाल में 2 नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी

0: आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने ऐसा झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सभी मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए मात्र एक महीने में 4 नई खेप के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इनमें नवीनतम जहाज INS महेंद्रगिरी, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है, इसे इस महीने की 11 तारीख को शामिल किया गया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टर्स और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजेस पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड में भी अगले 2 दिन तक सामान्य बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए श्रोताओं, जानकारी प्राप्त करते हैं आज के शेष बचे कार्यक्रमों के बारे में, यानी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद यानी 1:10 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। दोपहर 2 बजे

प्रादेशिक समाचार का समय होगा, इसे हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे। 2:10 पर आप कुछ रोजगार सूचनाएं प्राप्त करेंगे। वहीं दोपहर समाचार का समय होगा 2:15 पर, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अपराह्न 3 बजे आप सुनेंगे कुछ लोकगीत।

अपराह्न 3 बजे आप सुनेंगे कुछ लोकगीत। हमारी दूसरी सभा के अंतर्गत संध्या 5 बजे युवा श्रोताओं का संबोधित कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण किया जाएगा। शाम 6:10 पर विद्यापति गीत का कार्यक्रम होगा और मैथिली संवाद का समय होगा शाम 6:25 पर। किसान भाई शाम 6:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम गांव घर और इसी के अंतर्गत संध्या 7 बजे किसान भाई सुनेंगे खेती गृहस्थी।

श्रोताओं, संध्या 7:30 पर आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। इसे हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे। इसी के अंतर्गत जिले की हलचल आप सुनेंगे संध्या 7:47 पर। मैथिली में संबोधित हमारा कार्यक्रम सिंगरहार का प्रसारण किया जाएगा संध्या 8:15 पर।

समाचार संध्या आप सुनेंगे रात 8:45 पर। रात 9:30 पर आप सुनेंगे पब्लिक स्पीक, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। साथ ही डीएलसी 5 और डीएलसी 8 पर भी इसे सुना जा सकता है। रात 10 आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनते हैं देशभक्ति गीत, कलाकार हैं मोहम्मद रफी।

अभी आप ये देशभक्ति गीत सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, अपने रेडियो सेट के अलावे आप हमें सुन रहे हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप के भी माध्यम से। लीजिए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। पहला गीत हमने लिया है फिल्म सौतन की बेटी से। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार।

0: चुप रहते हैं।
1: अभी आप किशोर कुमार की आवाज़ में यह गीत सुन रहे थे। अगला गीत हमने लिया है फिल्म आँखें से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में आंखें फिल्म से लिया गया ये गीत। अगला गाना हमने लिया है फिल्म चोर मचाए शोर से। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार, साथ ही गीतकार एवं संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

किशोर कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे चोर मचाए शोर फिल्म से ये गीत। गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। अगला गीत हमने लिया है फिल्म सिरीन फरहाद से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे सीरीन फरहाद फिल्म का ये गीत। अगला गीत हमने लिया है फिल्म बाटला हाउस से। गायक कलाकार हैं ध्वनि भानुशाली और अंकित तिवारी।

अभी आप सुन रहे थे अंकित तिवारी और ध्वनि भानुशाली के की आवाज़ में बाटला हाउस फिल्म का ये गीत। अगला गीत हमने लिया है फिल्म बॉर्डर से। गायक कलाकार हैं सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़। जावेद अख्तर के लिखे गीत को संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

अभी आप सुन रहे थे बॉर्डर फिल्म का ये गीत रूप कुमार राठौर और सोनू निगम की आवाज़ में। अगला गीत हमने लिया है फिल्म बहू बेगम से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में बहू बेगम फिल्म से ये गीत। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रेडियो सेट के अलावे आप हमें न्यूज़ ऑन AIR ऐप के भी माध्यम से सुन रहे हैं। अब कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, इसे हम अपने पटना केंद्र से रिले कर रहे हैं।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा और जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके अलावा जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। उम्मीदवार 16 जुलाई तक नाम वापस ले सकते हैं। उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। प्रदेश में अब पर्यटक हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवाओं का आनंद ले सकेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना

उद्देश्य पर्यटकों के लिए आवागमन को सुगम बनाना और लोगों को बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों का सुविधाजनक अनुभव उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में साप्ताहिक आधार पर शुरू की जा रही एयर पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा के रूप में विस्तारित किया जाएगा। योजना के प्रथम चरण में पटना, वाल्मीकिनगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रत्येक टिकट पर अधिकतम 15,422 रूपये तक की सब्सिडी देगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार तथा रविवार को संचालित की जाएगी। प्रदेश में किसानों को अब हर महीने बिजली बिल मिलेगा। पहले किसानों को 3 महीने पर एक साथ बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता था। बिजली कंपनियों के अनुरोध पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने मासिक बिलिंग की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नई व्यवस्था से राज्य के लगभग 8 लाख किसानों को लाभ मिलेगा और उन्हें एक मुश्त 3 महीने का बिल चुकाने की परेशानी से राहत मिलेगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज अररिया, बांका, भागलपुर, मधेपुरा, पूर्णिया और सुपौल जिले में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। वहीं कटिहार और किशनगंज जिले में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी है। इधर विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक सामान्य से कम बारिश हुई है। 17 जिले ऐसे हैं जहां बारिश की कमी 50% या उससे अधिक है। 18 जिलों में 30 से 50% तक कम बारिश हुई है। सबसे कम बारिश गया जिले में दर्ज की गयी है। वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र में रविवार को हुए दोहरे हत्याकांड मामले का मुख्य आरोपी जगदीश राय पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी। उसे इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि एक दिन पहले भूमि विवाद में सेना के जवान और उनके पिता की हत्या के मामले में आरोपी की तलाश की जा रही है। शेखपुरा जिले के कोरमा थाना क्षेत्र स्थित मुरारपुर गांव के पास तांती नदी के किनारे संचालित शराब भट्टी को पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने नष्ट कर दिया है। मौके से 2000 लीटर शराब बरामद की गई। पुलिस कारोबारियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अररिया जिले के कुर्सा कांटा थाना क्षेत्र से पुलिस ने मादक पदार्थ स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरभंगा मंडल कारा के सहायक अधीक्षक नंदू कुमार चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इनके खिलाफ पत्नी की हत्या का मामला दर्ज है। इस मामले में न्यायालय ने उनके विरुद्ध वारंट भी जारी किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

सूबे के पहले मरहले में पटना, वाल्मीकि नगर, मामुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। रियासती हुकूमत हर एक टिकट पर ज्यादा से ज्यादा 15,422 रुपए तक की सब्सिडी देगी। हेलीकॉप्टर सयाहती सर्विस 18 जुलाई से शुरू होगी और हर शनिचर और इतवार को ऑपरेट की जाएगी। रियासत में किसानों को अब हर महीने बिजली बिल मिलेगा। पहले किसानों को 3 महीने पर एक साथ बिजली बिल की अदायगी करनी पड़ती थी। बिजली कंपनियों की दरखास्त पर बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने माहाना बिलिंग की मंजूरी दे दी है।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनते हैं कुछ रोजगार सूचनाएं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग भर्ती के क्रम में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने 3687 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया है। पद का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर। आवेदन 3 जुलाई 2026 से शुरू हो चुका है। इसकी अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 है। शैक्षणिक योग्यता पीजी डिग्री, एनईटी, एसईटी या पीएचडी है। उम्र सीमा 21 से 43 वर्ष है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो इंटरव्यू का है। इसमें आवेदन करने का जो की जो तिथि है, अंतिम तिथि एक बार पुनः बता दें, 15 जुलाई 2026। रेलवे में भर्ती 1853 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है 8 जुलाई 2026 से, और इसकी अंतिम तिथि है 7 अगस्त 2026। आईटीआई और मैट्रिक पास उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम उम्र सीमा 24 साल है। मेरिट बेसिस पर एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साथ ही मेडिकल एग्जाम के बाद ही इसमें सिलेक्ट हो पाएंगे अभ्यर्थी। JKSSB 2026, इसमें कुल पद 130 हैं। आवेदन शुरू

की तिथि 22 जून 2026 और आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 है। न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारित नहीं है, क्षमा करेंगे, न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल है और अधिकतम उम्र सीमा 40 साल है। साथ ही लेखा परीक्षक एवं सहायक 2026 की बात करें तो इसमें कुल 1829 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन शुरू होने की तिथि 14 जुलाई 2026 है और आवेदन की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2026 है। न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल है और अधिकतम उम्र सीमा 40 साल है। ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर लॉगिन कर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन परीक्षा 2026 के लिए कुल 6557 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन शुरू होने की तिथि 30 जून 2026 थी और आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 है। न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है, वहीं अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है। साथ ही टेक्नीशियन ग्रेड 3 और 33 वर्ष है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे कुछ रोजगार संबंधी सूचनाओं के बारे में। श्रोताओं, आप अपने रेडियो सेट के अलावे हमें न्यूज़ ऑन AIR ऐप के भी माध्यम से सुनते हैं।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे दोपहर समाचार, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।

0: याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को एसआई का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज आईएनएस महेंद्र गिरी है जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आईएनएस महेंद्र गिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
2: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का 3रा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमरीका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
3: अपने 2 वर्ष के अंदर जो छलांग लगाई, ये केवल यहाँ का अभियान हमारे कुछ नहीं हुआ। अब मध्य प्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने एफडीआई के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
1: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिएगा कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकिनगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमरीका ने कहा है कि ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।

0: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, इस
2: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्स पर। लीजिए सुनते हैं कुछ फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है फिल्म हीर रांझा से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर। कैफी आजमी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है मदन मोहन ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी हम ये गीत सुन रहे थे फिल्म हीर रांझा से। अगला गीत हमने लिया है फिल्म आशा से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर।

आशा फिल्म से अभी हम ये गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। अगला गीत हमने लिया है फिल्म गीत गाता चल से। गायक कलाकार हैं आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फंटुश फिल्म का ये गीत। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। लीजिए सुनते हैं कुछ लोक गीत। कलाकार हैं अरविंद कुमार झा।

नीलम झा के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोकगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराहन के 3:20 हो रहे हैं। आज की पहली सभा अब यहीं समाप्त हो रही है। शाम 5 बजे हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें।

0: मान लीजिए बहुत ही ज्यादा व्याकुलता अपने अंदर घिर आई है, थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा सा अपनी सांसों को देखिए, गहरी सांस लीजिए, तो सच में कुछ वक्त के बाद हमें लगता है कि हम मन भी शांत हो गया है और शायद हम कुछ अच्छे से सही और सकारात्मक भी सोच सकते हैं। एक संदेश ये कहता है ममता जी कि एक चंचल और अधीर मन कभी भी तार्किक और सही निर्णय नहीं ले सकता। जीवन या कार्यस्थल, यहाँ पर तरक्की के लिए मन की स्थिरता को बढ़ाना और जल्दबाजी की आदत को छोड़ना ही एकमात्र मार्ग है। और एक और संदेश ये कहता है कि अधीर मन के निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल जीरो रहती है। कुछ धैर्यवान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति धैर्य से थोड़ा शांत होकर सही निर्णय ले सकते हैं। फिर कुछ लोग जो सही में हमदर्द होते हैं, उनसे अपने मन की अधीरता को आप साझा कर सकते हैं और वहां से भी शायद आपको सही निर्णय मिल सकता है।
1: अब ये तो अधीर मन से कैसे निर्णय लेते हैं ये बताया, लेकिन कभी किसी श्रोता ने अपना अनुभव नहीं साझा किया है कि कब ऐसी परिस्थिति आई जब आपको निर्णय लेना पड़ा, निर्णय आपका सही था या गलत था। एक गाना सुन लेते हैं, शायद तब तक हमारे श्रोता लिख भेजे और हम उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचा सके। फिलहाल ये गाना

0: ममता जी, फिर भी अगर ऐसा है कि मन तो अधीर ही रहता है और एंजाइटी बनी रहती है, तो बहुत जरूरी है कि अपने आप पर हम काम करें। जैसे कि हम शारीरिक गतिविधियां कर सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि हमें लगे कि तनाव कम हो, कि कहीं पे सैर के लिए निकल जाना या कहीं कोई ऐसा ग्रुप क्लास कर लेना जहां पे कि आपको अच्छा लगे, मिलके लोगों के साथ व्यायाम करना या कोई मनोवैज्ञानिक सहायता ले लें। अगर आप बार बार ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बातें हमें बहुत परेशान कर जाती हैं, हम एक थोड़ी सी अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जरा सा हलचल हुआ या कुछ उठा पटक हुई तो हम एकदम परेशान हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या किया जाए, हम क्या करें।
1: अब देखिए ना, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, इनकी टिप्पणी अभी आई है, मुझे ऐसा लग रहा है मन की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, जिसे जितना अधिक प्राप्त होता है ये उतने ही अधिक की कामना करने लग जाता है। मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं तो सीमित है, लेकिन मानसिक रूप से हर क्षण जन्म ले रही इच्छाओं के कारण मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं रह पाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि तन की भूख सहज है और जैसे कि तीन पाव की सेर, मन की भूख अनंत है, निगले मेरु समेरु। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन इच्छा करे तो हम कहीं भी जा सकते हैं, अधीर मन से तो हम बीच रास्ते में ही अटक या लटक सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा कि अधीर मन से हम बीच रास्ते में अटक जाते हैं और यही प्रतिकूलता को का सामना करने के लिए हमें अपने आप को एक समर्थ बनाना पड़ता है। कोई शौक हम अपना सकते हैं, पसंदीदा गीत सुनिए, कोई ऐसी क्लास कीजिए, कहीं पे जाइए जहां से आपका मन हमें कुछ प्रसन्नता पाए, अच्छा लगे उसे। तो जब आप घर वापस लौटें तो आप जब खुद एक अंदर से सकारात्मक वाइब्रेशन लिए हुए होंगे तो घर में भी वही चीजों को आगे फैलाएंगे। तो मन को शांत रखने के लिए अपनी आदतों को बदलना जरूरी है, कुछ व्यायाम करना जरूरी है, आत्मविश्वासी थोड़ा बनना जरूरी है और आगे भविष्य के लिए एक स्पष्टता के साथ फिर हम निर्णय भी ले सकते हैं।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि अधीर मन शांत दिमाग से निर्णय लेने का किस्सा मैं बताना चाहूंगा कि बात 2023 की है। छोटे बेटे ने MBBS का एग्जाम नीट में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए और काउंसलिंग सेकंड राउंड में मेडिकल कॉलेज अजमेर में सीट फुल हो गई थी और अन्य गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था। घर के अन्य सदस्य भी राजी थे, बेटे के जो टीचर्स थे वो भी राजी थे, सिर्फ मैंने शांति से निर्णय लिया और थर्ड काउंसलिंग राउंड तक इंतजार किया और बेटे को अपने शहर में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अजमेर में एडमिशन मिल गया। मतलब इनका कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा इंतजार करो, इंतजार के बाद भी कई बार आपके निर्णय जो सही निर्णय होता है वो सही हो जाता है।
0: बिल्कुल। और एक और हमारे साथी ने एक घटना साझा की है, वो ये कहते हैं कि एक बार ऑफिस में मेरी अपने सीनियर के साथ किसी बात को लेकर बहस होने वाली थी। उन्होंने मुझे तुरंत बात करने के लिए बुलाया, लेकिन उस समय मुझे लगा कि मेरा मन शांत नहीं है, इसलिए मैंने उस समय चर्चा करने के बजाय थोड़ा समय लिया। शाम को जब हमने बात की तब तक मेरा मन बिल्कुल शांत हो चुका था। हमने आराम से बातचीत की और बात भी अच्छे से सुलझ गई। तो ये कहते हैं कि अगर मैं उस समय गुस्से या आवेश में बात कर लेती तो शायद बात और बिगड़ जाती।
1: तो मतलब क्षणिक और आवेश में लिया गया निर्णय कई बार आपको पछतावा का कारण भी बन जाता है। अब ये बारिश का मौसम तो है ही है, हालांकि मुंबई में भी बारिश रुकी हुई है, लेकिन देश के बहुत सारे हिस्सों में बारिश हो रही है और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर बारिश हो ही नहीं रहे, लोग इंतजार कर रहे हैं बड़ी तत्परता से। लेकिन बारिश आती है तो कुछ सुहावना मौसम कहते हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं तो बुराइयां भी लेकर आती हैं, कुछ परेशानियां भी लेकर आती हैं।
0: जैसे कि
1: बारिश का मौसम सुहाना लगे, फर्नीचर है और लकड़ी के फर्नीचर है खासतौर से, उसमें कई बार दीमक लग जाता है, आपने शुरुआत में कहा था, और कई बार दरवाजे कड़े हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, जो चर्र की आवाज करते हैं, चर्र चू, और अगर आप गहरी नींद रात को सो रहे हो और कोई उठे और दरवाजा खूब जोर से आवाज करे तो आपकी नींद भी बाधित होती है। तो इसलिए इनकी देखरेख करना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए लकड़ी की अलमारी ठीक से बंद ना हो रही हो, दराज अटकने लगे, चिपकने लगे और हमारे सोफे में से अलग सी गंध आने लगे तो समझ जाना चाहिए कि बाहर की नमी का असर हमारे फर्नीचर पर होने लगा है और किसी को बुलाकर किसी मिस्त्री को बुलाकर आपको उसे ठीक करवाना चाहिए।
0: ठीक भी कराना चाहिए। और कई बार ममता जी हम परेशान हो जाते हैं कि ये फर्नीचर क्यों इस तरह फूलने लग जाते हैं, तो छोटी छोटी सी बातें कुछ ऐसे कारण है, जैसे कि हवा में नमी बढ़ जाती है, लकड़ी उसे जल्दी सूख लेती है और इसलिए फर्नीचर फूलने लग जाते हैं या मुड़ जाते हैं। नमी में दरार, नमी की वजह से दरार और जॉइंट्स भी ढीले हो जाते हैं फर्नीचर के, और लंबे समय तक नमी रहने से लकड़ी में फंगस और दीमक लगने का रिस्क बढ़ जाता है। और कई बार हमने ये भी देखा है ममता जी कि पॉलिश भी उतरने लग जाती है, लकड़ी की चमक थोड़ी फीकी सी पड़ जाती है, और अगर कमरे में वेंटिलेशन मतलब हवादार कमरा नहीं है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि नुकसान ज़्यादा होने लग जाता है अपने जो भी फर्नीचर हैं उस कमरे के।
1: और हमारी एक सखी है जिन्होंने कुछ नुस्खे भी बताए हैं कि इनकी हिफाजत के लिए फर्नीचर को हमेशा नमी और बारिश की बौछारों से दूर रखें, उन पर पॉलिश या वैक्स की कोट कराएं और नियमित रूप से सूखे कपड़े से पोंछती रहें। इन दिनों में फर्नीचर को कभी भी गीले कपड़े से ना पोंछें। सफाई के लिए हमेशा सूखे और मुलायम कपड़े का उपयोग करें ताकि नमी अंदर ना जाए, और अलमारी और दराजों में सीलन और फंगस से बचने के लिए एक जेल का नाम लिखा है उस जेल के पैकेट का उपयोग करें, या नेफ्थलिन की गोलियां या कपूर की गोलियां वहां पर रख सकती हैं। जबकि होता क्या है कि आपकी जो सहायिका है काम करने वाली आती है, एक कपड़ा गीला करती है और पूरे घर में वो पोंछ देती है, सारे अलमारी जितने टेबल हैं कुर्सियां हैं, तो वो नमी तो आएगी उसमें।
0: बिल्कुल सही कहा, और इन सब चीजों का भी ध्यान तो रखना ही है। साथ में जब बारिश बहुत ज्यादा होने लगेगी तो मॉनसून के समय दीवारें खासतौर पे बाहरी दीवारों में नमी बहुत जल्दी सोख लेती है, तो अगर आपकी अलमारी या बिस्तर दीवार से सटा हुआ है तो वो नमी सोख लेगा, तो उसे बस 2-3 इंच थोड़ा सा इन दिनों में जब बरसाती मौसम रहेगा तो उसे थोड़ा सा आगे खींच लीजिए, और इस छोटे से गैप के पीछे हवा का जब प्रवाह बन जाएगा तो लकड़ी में पानी जाने से रुक जाता है, और तेज बारिश के बाद एक बार फिर इसकी जांच आपको बीच बीच में करते रहना बहुत जरूरी है।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि लकड़ी एक प्राकृतिक सामग्री है जो मौसम के बदलावों, पानी और धूल के प्रति बेहद संवेदनशील होती है। इसकी चमक और मजबूती को बरकरार रखने के लिए आपको कुछ बुनियादी नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ लकड़ी के फर्नीचर की देखभाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण सावधानियां और उपाय दिए गए हैं, और बहुत सारे उपाय इन्होंने लिखे हैं। गहरी सफाई के लिए कपड़े को गुनगुने पानी और माइल्ड सोप के घोल में भिगोकर अच्छी तरह से निचोड़ लें। साफ करने के तुरंत बाद सतह को सूखे कपड़े से पोंछना न भूलें। और इन्होंने लिखा है कि केमिकल से बचें और ब्लीच या अमोनिया युक्त रसायनों का सीधे लकड़ी पर उपयोग करने से उसकी फिनिशिंग पूरी तरह से खराब हो सकती है। धूप और तापमान से सुरक्षा, सीधी धूप से दूरी रखें, और भी कुछ सावधानियां इन्होंने बताई हैं जिससे आप अपने फर्नीचर को सुरक्षित रख सकते हैं।
0: बिल्कुल, और अब हम क्या कर सकते हैं?
1: गाना सुनवा सकते हैं। तो ये रहा गाना।

0: प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म का ये गाना सखियां और सखा सुन रहे थे, और हम बात गाने से पहले लकड़ी के फर्नीचर की कर रहे थे कि किस तरह से हिफाजत करें, लकड़ी के फर्नीचर जल्दी से खराब हो जाते हैं बारिश के मौसम में,
1: और तो जब बहुत शौकीन होते हैं कोई फर्नीचर इकट्ठा करने के, और बड़े कीमती और नक्काशीदार फर्नीचर अगर किसी ने रखा हुआ है घर में और ऐसे में कहीं पे कहीं कोई सीलन से दिख जाती है या कोई फफूंद दिख जाती है, तो वाकई में लगता है कि चैन हमारे मन को नहीं मिल रहा है ना।
0: बिल्कुल सही कह रही है। और जो फंगस दिखाई देता है खास तौर से सोफा है, कुर्सियां हैं, डाइनिंग टेबल है, तो उसमें उसको जरूरी हो जाता है धूप दिखाना। लेकिन आप बताइए कि मुंबई जैसे शहर में जब बारिश होती है तो लगातार बारिश होती है ना, कई कई दिन तक, यहाँ तक कि 10-10 दिन तक धूप नहीं आती, धूप कहाँ से लाएंगे आप?
1: बिल्कुल लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ सूखे कपड़े से ही अपने फर्नीचर को साफ कीजिए। अगर आपके घर में जो हाउस हेल्प जो आती हैं, मदद करती हैं जो दीदी, उन्हें भी बिल्कुल आप सख्त उस वक्त तो हिदायत दे देनी चाहिए कि गीले कपड़े से बिल्कुल पोंछना नहीं है, सूखे और मुलायम कपड़े से अपने फर्नीचर को पोंछा जाए, क्योंकि धूप का पता नहीं है कब आएगी, खास तौर पे मुंबई जैसे शहर की अगर आप बात करते हैं तो। और
0: फर्नीचर के लिए सही कवर भी जरूरी होता है कि जैसे कॉटन या कोई ऐसा फैब्रिक जिसमें कि हवा आसानी से आ जा सके, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और समय समय पर कवर हटाकर हवा भी लगाते रहना चाहिए। और अलमारी या ड्रॉर को समय समय पर कुछ देर के लिए खुला छोड़ देना चाहिए, इससे नमी अंदर नहीं जमा होगी। कपड़ों और सामान को पूरी तरह सुखा करी अंदर रखना चाहिए। एक तरीका और है कि आप जब अलमारी और दराज खोलें तो तेज फैन चला दें, तो वो जो हवा होती है कृत्रिम हवा ही सही हवा लगेगी, तो हवा लगे। जो नमी है वो बिल्कुल कम हो जाती है।
1: और बहुत ही ज्यादा अगर आपको लगता है कि घर में नमी सोख गई है तो हम डीह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में कपूर की टिकिया आप अलमारी में रख लीजिए, या नीम की सूखी पत्तियां भी कहीं कहीं लोग कहते हैं कि उसको रखने से भी जो अंदर अलमारी के अंदर खासतौर पे कोई सीलन आ गई है या नमी है वहां पे इकट्ठी हो गई है तो वो सब बाहर निकल जाती है या सोख लेता है वो। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान रख कर सकते हैं। और देखिए ना, फर्नीचर कोई बार बार हमारे घरों में बनते नहीं है ममता जी, तो जो भी है जितने भी हमारे पास ये जरूरी सामान

0: और कीमती चीजें, इनका हम ऐसी छोटी छोटी बातें अपना करके इनका हम ध्यान रख सकते हैं।
1: और दीपा जी, जब फर्नीचर की बात कर रही हैं, जो कुर्सियां होती हैं, टेबल होती हैं, डाइनिंग टेबल भी होता है ना घर पर, डाइनिंग टेबल पर बैठकर क्या करते हैं हम?
0: खाना खाते हैं।
1: तो आज किस खाने की बातें करने वाले?
0: आज हम चलेंगे पंजाब की तरफ, जहाँ पे कि भरवा पराठे के लिए ये प्रदेश प्रसिद्ध है। यहाँ पे अलग अलग तरह के, बहुत तरह के भरवा पराठे बनते हैं। हमारे सखियों ने लिख भी भेजा है कि ये किस तरह बनाया जाए, तो हम रेसिपी बताएं या एक गीत सुने पहले?
1: नहीं, पहले रेसिपी बताएंगे, क्योंकि एक हमारी सखी ने लिख भेजा है कि पेड़ा लस्सी पंजाब का एक प्रसिद्ध और समृद्ध प्रादेशिक पारंपरिक पेय है, जो मुख्य रूप से अमृतसर शहर में बेहद लोकप्रिय है। ये सामान्य लस्सी का एक बेहद शाही और पारंपरिक पंजाबी पेड़े मावा खोए जैसी बनी मिठाई को एक साथ मथ कर तैयार किया जाता है। क्या बात है भाई, ये तो अलग तरह की रेसिपी पता चली है।
0: जी, ये अलग तरह की रेसिपी है, लेकिन हमने अपने श्रोताओं से मांगी थी, सखियों से मांगी थी भरवा पराठों की रेसिपी। तो भरवा पराठे में, जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे, बहुत तरह के पराठे होते हैं, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, पनीर का पराठा, मूली का पराठा। तो दो पराठों के बारे में पहले बता देते हैं हम। आलू का पराठा, जैसे सभी जानते हैं, लोकप्रिय है, सभी का पसंदीदा नाश्ता होता है। उबले हुए, मैश किए हुए आलू में प्याज, हरी धनिया, अजवाइन, मिर्च, या आपके घर में जो पसंद आता है वो सब डाल के, मसाले डाल के ये मिश्रण तैयार करना है। और गेहूं के आटे, तो जैसे घरों में लगता है वैसा ही लगेगा। इस मसाले को आटे के अंदर भर के लोई बना के, हम जैसे साधारण पराठे बनते हैं उस तरह से इसे बनाना है। और इसी तरह से गोभी का पराठा भी बना सकते हैं आप। कद्दूकस की हुई ताजी गोभी ले लीजिए, उसमें मसाले, अदरक, लहसुन, ये सबको डालकर एक हल्का सा इसके भून लीजिए, ताकि वो कच्चापन उसमें ना लगे और पराठा भी गीला ना हो, अंदर का जितना भी उसका मॉइस्चर है वो सूख लेता है बघार करने से। और इस तरह से एक और पराठा भी बना सकते हैं, पनीर का पराठा। तो कद्दूकस किए हुए पनीर, फिर लाल मिर्च, गरम मसाला, कसूरी मेथी, या इसके अलावा आप कोई भी मसाले इसमें डाल सकते हैं। प्रोटीन से भरपूर होता है ये वाला पराठा, जो कि पंजाब में बहुत प्रसिद्ध है।
1: और मटर का पराठा भी बहुत प्रसिद्ध है
0: जी।
1: जो मटर, हरी मटर को अच्छी तरह से पहले तो छिलका निकाल के उसको धोकर और बॉईल कर लें, उबाल लें, और उबालने के बाद उसके दो तरीके होते हैं, या तो उसको मैश कर लें या फिर मिक्सी में उसको क्रश कर ले, क्रश करके आटे में मिला लें। दूसरा तरीका ये होता है कि उसको मैश करके थोड़ा सा कढ़ाई में भून लें, ताकि उसकी जो पानी होता है निकल जाए, और उसमें जो भी लहसुन, अदरक, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची डालकर आटे में, आटे की लोई बना के उसमें भर लें, वो भरवा पराठा जैसा कि हमने कहा ही है, तो तवे पर सेक ले। पराठा बनाने का तरीका तकरीबन एक ही होता है, पर स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है। तो हमारी जो सखियां और सखा सुन रहे हैं, हमें लगता है कि बनाएंगे, आजमाएंगे और बताएंगे हमें, और फिर किसी दिन किसी और प्रदेश की व्यंजन की हम बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं गाने की, सुनवा रहे हैं ये गाना।

0: मासूम फिल्म का गाना था, आरती मुखर्जी की आवाज, गुलजार के बोल थे, राहुल देवर्मन का संगीत था। और अब घड़ी की ओर देख रहे हैं दीपा जी, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाए या गाना सुनवाए। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: सेहत नामा।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वो डॉक्टर हैं डॉक्टर उमेश ओझा जो यूरोलॉजिस्ट हैं बॉम्बे हॉस्पिटल और हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में। और डॉक्टर साहब को हमने आमंत्रित किया है आज प्रोस्टेट विषय पर बात करने के लिए और यूरिन से जुड़ी हुई और जो अन्य बीमारियां होती हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर उमेश ओझा विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। ये मेरी खुद किस्मती है कि मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ और इतने लोगों तक मेरी आवाज पहुँच रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब, और विविध भारती के स्टूडियो में आप आए हैं तो हमें ये पता चला है कि आप गानों के बड़े शौकीन हैं, संगीत से भी प्यार करते हैं, तो एक सवाल हमारा ये है कि विविध भारती के स्टूडियो में आपको आकर एहसास कैसा हो रहा है?
2: पुरानी यादें ताजा हो रही है
1: जी।
2: उस जमाने में विविध भारती ही एक ऐसी चैनल थी जिसके द्वारा हम अच्छे अच्छे गाने सुनते थे। इवन इन मेडिकल प्रोफेशन जब हम थक जाते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं, यही रेडियो की आवाज, यही आप लोगों की आवाज और यही अच्छे गाने हमें कुछ एक रिलैक्सेशन देते हैं और अगली चैलेंजेस के लिए वापस तैयार कर देते हैं। सो विविध भारती एक ऐसी संस्था है, इतने सालों से हम विविध भारती के बिना कभी नहीं सकते हैं और आज भी ये देख के बहुत खुशी होती है कि इतने कॉम्पिटिटिव जमाने में विविध भारती ने भी इतना ही प्रोग्रेस किया है कि अभी भी वो इतनी ही पॉपुलर संस्था है और कभी भी चांस मिला वापस विविध भारती में गाने सुनने की हमेशा इच्छा रहती है।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब, हमें बड़ा गौरव का एहसास होता है जब आप सबकी इस तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। तो आज हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज सेहतनामा कार्यक्रम में जो हमने विषय रखा है वो है प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी हुई अन्य बीमारियां और बीमारियों के निवारण। तो बताइए हमारे श्रोताओं को कि पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना आजकल बहुत आम हो रहा है, तो प्रोस्टेट का बढ़ना क्या है और

0: शरीर में इसका मुख्य काम क्या होता है?
1: राइट, हर पुरुष में प्रोस्टेट की ग्रंथि रहती है
0: जी।
1: उनका कार्य है कि वो जूस सिक्रेट करता है जो हमारे वीर्य या सीमन का पार्ट रहता है, और ये जूस जो स्पर्म्स रहते हैं उनको न्यूट्रिशन देता है
0: जी।
1: आफ्टर एज ऑफ 40 धीरे धीरे शरीर में हार्मोन के बदलाव से प्रोस्टेट की ग्रंथि में चेंजेस शुरू होते हैं और धीरे धीरे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है
0: जी।
1: और प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से, क्योंकि प्रोस्टेट की पोजीशन हमारे यूरिन के ब्लैडर के नीचे जो यूरिनरी पैसेज है उसके सराउंडिंग प्रोस्टेट वहां बनी रहती है
0: जी।
1: और जब भी ये ग्रंथि बढ़ती है तो ये यूरिनरी ट्यूब पे दबाव आने से यूरिन करने की दिक्कतें बढ़ने लगती है। सो इस प्रकार से धीरे धीरे प्रोस्टेट के जो प्रॉब्लम्स है एज एज एडवांसेस, जैसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है प्रॉब्लम बढ़ते हैं। सो बेसिकली ये सब प्रॉब्लम एज रिलेटेड है, और जैसे एज बढ़ती है लोगों की प्रोस्टेट बढ़ने लगती है और उनके प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि हर एनलार्ज प्रोस्टेट डजंट मीन के वो प्रॉब्लम देने वाली है या उसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। सो प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है
0: जी। तो आपने जिक्र किया कैंसर का, तो अमूमन जैसे ही प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है लोग यही मानते हैं कि अब उनको कैंसर होना पक्का है, आगे चल के कैंसर हो जाएगा, तो ये कहां तक मिथ है, कहां तक इसके बारे में थोड़ा क्लियर करिए कि प्रोस्टेट किस तरह की बीमारी है और कैंसर क्या है।
1: राइट, सो हर प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से कैंसर होता है, ये गलत बात है और ये मिथ है। आजकल लोग इतनी इंफॉर्मेशन के कारण जब ये सब चीजें पढ़ते हैं सुनते हैं बहुत घबर जाते हैं। दूसरी बात हुए कि रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत अच्छी बात है
0: जी,
1: लेकिन वहां कहां भी रिपोर्ट्स में पढ़ लिए कि प्रोस्टेट बढ़ गई है लोग एकदम चिंतित हो जाते हैं
0: जी, जी।
1: और फिर डॉक्टर गूगल के पास जाके काफी इंफॉर्मेशन जमा करते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन होना महत्व का है
0: हाँ।
1: लेकिन उसके कारण अननेसेसरी टेंशन लाना जरूरी नहीं है
0: बिल्कुल।
1: सो हर प्रोस्टेट बढ़ने से उनमें कैंसर होगा ये बात सही नहीं है
0: जी।
1: लेकिन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट जो बिनाइन है नॉर्मली उसके साथ में कैंसर भी हो सकता है। सो ओनली थिंग इज रेगुलर चेकअप बाय एन एक्सपर्ट, जिसके कारण अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई तो समय सर हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं और समय सर उसे हम ट्रीट कर सकते हैं
0: जी।
1: लेकिन प्रोस्टेट बड़ी या एनलार्ज प्रोस्टेट हुई उसका मतलब अभी कैंसर हो जाएगा ये गलत बात है, और अननेसेसरी उसके बारे में टेंशन रखना वो ठीक नहीं है
0: बिल्कुल। तो प्रोस्टेट बढ़ा है और क्या है इसके लक्षण, कैसे पता चले एक मरीज को, और दूसरा इसकी जांच की पद्धति क्या है, किस तरह के टेस्ट होते हैं?
1: राइट, पहली बात मैंने बताया ऐसे हेल्थ चेकअप में काफी समय रिपोर्ट में आएगी प्रोस्टेट बढ़ी हुई है, लेकिन उसका मतलब नहीं कि वो बढ़ी हुई प्रोस्टेट के लिए या एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है
0: जी।
1: प्रोस्टेट के लिए हम तीन चीजें देखते हैं
0: जी।
1: एक कैंसर नहीं वो हम चेक करते हैं, दूसरी बात उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस या किडनी डैमेज नहीं हो रहा है वो हम देखते हैं, और तीसरी बात कि उनके सिम्टम्स के कारण पेशेंट को कितनी दिक्कतें होती है उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है
0: जी जी।
1: सो जब रिपोर्ट दिखाता है कि एनलार्ज प्रोस्टेट है, पेशेंट में कोई सिम्टम्स नहीं हो सकते हैं, वो चेकअप किया इसलिए एनलार्ज प्रोस्टेट करके वो दिखा रहा है
0: जी,
1: ऐसे पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तपास करनी जरूरी है
0: जी जी।
1: सिम्टम्स जिनको प्रॉब्लम देते हैं उनको दो प्रकार के सिम्टम्स रहते हैं
0: जी।
1: एक जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स और वॉइडिंग सिम्टम्स, जहां यूरिन करने में दिक्कत, यूरिन की धार वीक होना, यूरिन के लिए जोर करना, यूरिन के लिए बार बार जाना, और दूसरी जो है इसे हम स्टोरेज सिम्टम्स कहते हैं, उसके कारण जब यूरिनरी ब्लैडर पे असर होता है तो कभी कभी पूरी यूरिन निकलती नहीं है, इन्फेक्शन हो सकता है, उसके कारण पेशेंट को बार बार यूरिन के लिए जाना, कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाना, ये सब सिम्टम्स बाहर आने लगते हैं
0: जी जी।

0: लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि ये सब सिम्टम्स खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ही ऐसी बात नहीं है, बाकी रोगों के कारण भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं
1: जी।
0: जैसे डायबिटीज, जहां डायबिटीज के कारण काफी लोगों को फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे पार्किंसंस डिजीज जिसके कारण, या पथरी ब्लैडर में रही, सो ये सब सिम्टम्स के काफी कारण हो सकते हैं। ये सिम्टम्स हुए उसका मतलब ये नहीं कि ये खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ही हुआ है।
1: जी जी जी।
0: इसीलिए हम अब ये सिम्टम्स को LUTS या लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स कहते हैं
1: जी।
0: और फिर जांच करना जरूरी है जानने के लिए कि ये प्रोस्टेट के कारण है या और कुछ कारण के हिसाब से ये सिम्टम्स से पेशेंट परेशान है।
1: जी जी। तो टेस्ट किस तरह के होते हैं, मतलब ब्लड के जरिए होता है या फिर सोनोग्राफी, या क्या तरीका है?
0: राइट। सो पहले तो हिस्ट्री के हिसाब से हम देखते हैं कि ये सिम्टम्स कितने बॉदरसम है पेशेंट्स को।
1: जी जी।
0: उसका स्कोर रहता है जिससे हमें आइडिया आता है कि सिवियरिटी सिम्टम के हिसाब से कितनी है।
1: जी।

0: हिसाब से या सिम्टम्स से पेशेंट परेशान है।
1: जी। तो टेस्ट किस तरह के होते हैं, मतलब ब्लड के जरिए होता है या फिर सोनोग्राफी, या क्या तरीका है?
0: राइट। सो पहले तो हिस्ट्री के हिसाब से हम देखते हैं कि ये सिम्टम्स कितने बॉदरसम है पेशेंट्स को,
1: जी।
0: उसका स्कोर रहता है जिससे हमें आइडिया आता है कि सीवियरिटी सिम्टम के हिसाब से कितनी है।
1: जी
0: बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन महत्व का रहता है कि प्रोस्टेट हम चेक करते हैं कि कितनी बड़ी हुई है, उसमें कुछ चेंजेस कैंसर के फील होते हैं कि नहीं, यूरिन की ट्यूब व्यवस्थित है कि नहीं,
1: जी
0: ब्लैडर कुछ भरा हुआ नहीं है। सो नेक्स्ट पार्ट इज अ फिजिकल एग्जामिनेशन। देन वी डू लेबोरेटरी टेस्ट, जैसे इनका हीमोग्लोबिन कैसा है, ब्लड शुगर कैसी है, सीरम क्रिएटिनिन, जिसे पता चलता है कि इसके कारण दोनों किडनी पे प्रेशर आके क्रिएटिनिन बढ़ के किडनी तो डैमेज नहीं हो रही है।
1: नो
0: यूरिन टेस्ट करते हैं जानने के लिए कि उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, कभी कभी ब्लड तो नहीं जा रहा है, ये यूरिन टेस्ट से हम पता करते हैं। एक महत्व की टेस्ट है जिसे हम PSA या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कहते हैं, या ब्लड टेस्ट है।
1: जी
0: ये एक टेस्ट है जानने के लिए कि कैंसर की शक्यता है या नहीं है। जिनको ये नंबर या PSA का रिपोर्ट ज्यादा रहता है उनको प्रॉपर इवेल्युएशन की जरूरत रहती है।
1: जी
0: ये भी गलत मानना है कि एक बार PSA का नंबर ज्यादा आया मतलब कैंसर ही है।
1: जी
0: PSA बढ़ने के भी अलग अलग कारण हैं, कभी प्रोस्टेट बड़ी होने से, वहां इन्फेक्शन होने से, सूजन होने से, बट अगर PSA का नंबर ज्यादा है तो वो हिसाब से चेकअप करना जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: इसके बाद में हम सोनोग्राफी करते हैं।
1: जी
0: सोनोग्राफी करने का यही कारण है जानने के लिए कि इसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस लाइक स्टोन्स या फिर उसके कारण किडनी पे प्रेशर तो नहीं है, ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं। ये भी पता चलता है कि पूरी यूरिन निकलती है या नहीं, या अंदर यूरिन रह जाती है। ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं और साइज ऑफ द प्रोस्टेट पता चलती
1: जी,
0: है।
1: जी
0: ये भी जानना जरूरी है कि साइज के हिसाब से डर जाना जरूरी नहीं है।
1: ओके
0: बड़ी प्रोस्टेट मतलब प्रॉब्लम होना ही चाहिए या ट्रीटमेंट लेनी ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। सो साइज इज इम्पोर्टेंट, लेकिन साइज के हिसाब से हम पूरी ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं करते हैं।
1: जी
0: क्योंकि लोग जब देखते हैं रिपोर्ट में सोनोग्राफी में कि 100 ग्राम की प्रोस्टेट है, डर जाते हैं कि इतनी बड़ी प्रोस्टेट कल ऑपरेशन कर दीजिए। सो ये अगेन गलत बात है। खाली साइज के हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल
0: सो ये स्टैंडर्ड हम टेस्ट करके देखते हैं कि पेशेंट को कितनी तकलीफ है, प्रोस्टेट के कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं, या कैंसर की शक्यता है कि नहीं। इस इवैल्यूएशन के बाद में वो वी कैन टेक अ डिसीजन कि आगे हमें क्या करना है।
1: जी बहुत सही बातें आपने बताई हैं, बहुत सही जानकारी। और इसमें बहुत सारी गलतफहमियां लोगों को होती हैं कि प्रोस्टेट बढ़ा तो खुद ही टेंशन में आकर खुद ही तय कर लेते हैं। तो बेहतर है कि यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और उन्हें तय करने दें कि क्या करना है। अब हम यहां पर तय कर रहे हैं कि आपकी पसंद का कोई गाना आना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाया।
0: जरूर इस प्रोफेशन में भी हम मानते हैं कि हमेशा हमें ऊपर वाले के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है।
1: क्या बात है।
0: और लोगों के गुड विशेस की हमें हमेशा जरूरत पड़ती है। सो ऊपर वाले को याद करके बहुत पुराना बहुत अच्छा गाना है, ए मालिक तेरे बंदे हम,
1: दो आंखें बारह हाथ,
0: दो आंखें बारह हाथ।
1: क्या बात है, सुनते हैं। बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है।

0: और डॉक्टर साहब आपने कहा कि ऊपर वाले का वरद हस्त जरूरी होता है। सचमुच हम तो यही कहते हैं कि डॉक्टर की दवा और दुआ दोनों कारगर होती है मरीज के लिए।
1: आपकी बात बहुत सच है। मैं बताऊं
0: जी,
1: लोग डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं लेकिन ये सच नहीं है। हम तो ऊपर वाले जो हमको काम दिया है वो कैसे अच्छी तरह से करें वो हमारी इच्छा रहती है। सो बहुत बड़ा गैप है भगवान और हमारे में। अच्छी बात है क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स को दी गई हुई है।
0: जी, जी।
1: लेकिन हम भगवान नहीं है, हमें हमेशा भगवान की आशीर्वाद की और मदद की जरूरत पड़ती है।
0: जी सही बात है, लेकिन एक मरीज यही मान के चलता है क्योंकि डॉक्टर के बदौलत वो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और गाने से पहले डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, आपने जिक्र किया था कि मरीज प्रोस्टेट बढ़ा हुआ देखते हैं और घबरा जाते हैं कि अब उन्हें सर्जरी की जरूरत है। तो श्रोताओं को बताइए कि कौन सी ऐसी स्थिति आती है जब सर्जरी की जरूरत है और किस तरह से इसका इलाज किया जाता है, दवाइयों से और सर्जरी से दोनों बताइए।
1: राइट, सो प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आया है। एक जमाना था कि पेशेंट के पास और हमारे पास खाली तीन ऑप्शन थे, या तो कुछ नहीं करना, या तो नली डाल के रखना
0: जी,
1: या तो ऑपरेशन करना। जैसे मैंने बताया कि हर एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण अलग अलग रहते हैं, और अगर इवेल्युएशन व्यवस्थित नहीं किया और ऑपरेशन भी किया तो उसका फायदा नहीं होता है। सो पहले तो जिनको कोई तकलीफ नहीं उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ जी, रेगुलर चेकअप करना बहुत जरूरी है। द सेकेंड पार्ट इज मेडिकेशंस। आजकल काफी दवाएं आई है जिसके कारण यूरिन करने में सुविधा होती है, अंदर ज्यादा यूरिन रहती नहीं है। प्रोस्टेट का जो भाग है वो थोड़ा दवा से खुल जाने से पेशेंट को काफी आसानी और आराम मिलता है, जिसे हम अल्फा ब्लॉकर्स कहते हैं और फाई रिडक्टेस इनहिबिटर, ये कुछ दवाएं के ग्रुप्स है जिसके कारण प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आ गया है।
0: जी।
1: अगर दवाई देने के बावजूद भी लोगों की तकलीफ कम नहीं हुई तब उस समय हमें निर्णय लेना पड़ता है कि इस मरीज को ऑपरेशन की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है।
0: जी।
1: कभी कभी उसके लिए भी स्पेशल टेस्ट है जिसे हम यूरोडायनामिक्स कहते हैं।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि यूरिन करने के लिए दो चीजें महत्व की, यूरिनरी ब्लैडर में काफी प्रेशर होना चाहिए यूरिन बाहर फेंकने के लिए, और जो रास्ते में प्रोस्टेट है वो रुकावट नहीं करनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम ब्लैडर का है और हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट सही नहीं मिलेगा।
0: जी जी।
1: सो कुछ केसेस में हमें स्पेशल यूरोडायनामिक टेस्ट करनी पड़ती है और फिर हम निर्णय लेते हैं ऑपरेशन के लिए।
0: जी।
1: पहले के जमाने में खाली ओपन ऑपरेशन ही हमारे पास एक

0: ऑप्शन था। आजकल दूरबीन से, जिसे हम TUPR और टर्फ कहते हैं, जहां अंदर से ही लेजर से या अलग अलग एनर्जी सोर्सेस से रास्ता बड़ा करके प्रोस्टेट के कुछ चिप्स निकाल देते हैं ताकि रास्ता बढ़ जाता है और फिर पेशेंट को यूरिन करने में काफी आसानी हो जाती है। आजकल कुछ नए नए टेक्निक्स भी आए हैं, जैसे रिज्यूम है या फिर यूरोलिफ्ट है, ये सब नई तरीके हैं जिससे मिनिमल प्रोसीजर करके अगर रास्ता बड़ा कर सके और पेशेंट को राहत दे सके, ये कोशिश रहती है
1: जी।
0: लेकिन अभी तक ये सब नई टेक्निकें हैं, एक्सपेंसिव है, और लॉन्ग टर्म इतना आउटकम कैसे रहेगा वो अभी तक हमें वो उसका एश्योरेंस नहीं है। सो ये नई नई चीजें आई हैं, हम पेशेंट के सामने सब ऑप्शंस रखते हैं
1: जी, जी।
0: और ये जिसे हम कहते हैं कि शेयर्ड डिसीजन है, क्योंकि हर ऑपरेशन के कुछ आड़ असर भी रहते हैं
1: जी, जी।
0: हर ऑपरेशन के लिए पैसे भी खर्च पड़ते हैं, और ये सब करने के बाद अगर पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो अच्छा ऑपरेशन करने के बाद में भी जो हम सक्सेस चाहते हैं वो नहीं मिलता है
1: जी।
0: सो इसीलिए पेशेंट के साथ बात करके उनको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में सब जगह पे नई नई टेक्निक काफी इसका प्रचार हो रहा है
1: जी, जी।
0: और पेशेंट वो सोच के आ जाते हैं कि ये बस यही सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है और वो करा के आते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें सक्सेस नहीं मिलता है, क्योंकि केस सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: इसलिए अनुभवी डॉक्टर के पास जाएं वो ज्यादा अच्छा होता है। तो आजकल ये जो तकनीक का आपने जिक्र किया, तो जो भी तकनीक है अमूमन कितना वक्त लगता है ऑपरेशन के लिए, क्योंकि ऑपरेशन के नाम से मरीज घबराता है कि अरे हमें दो तीन दिन के लिए एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में।
0: सो कुछ टेक्निक है जो एक दिन अस्पताल में रहना पड़ता है और फिर थोड़े दिन कभी कभी नली लगा के रखनी पड़ती है, कैथेटर और बैग, एंड देन पेशेंट इज क्वाइट ऑल राइट। जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन है जिसे हम TORP कहते हैं या होलेप जो लेजर से करते हैं, उसके लिए 3 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है और नली 3 या 4 दिन रखनी पड़ती है। कभी कभी अगर पेशाब की थैली वीक रही, काफी बड़ी प्रोस्टेट रही, तो फिर नली हमें ज्यादा समय तक रखनी पड़ती है
1: जी, जी।
0: लेकिन पहले जैसे जो कट करके हमें इतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता था वो अब नहीं रहा है, पेशेंट थोड़े ही समय में अपने काम पे वापस जा सकता है
1: जी। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब बात थोड़ी सी घबराने की भी हो जाती है, क्योंकि सर्जरी के नाम से कोई भी मरीज थोड़ा ना थोड़ा घबरा ही जाता है, भले ही 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए एडमिट होना पड़े। तो थोड़ी घबराहट कम करने के लिए एक गाना सुन लेते हैं। कौन सा गाना सुनवाए?
0: राजेश खन्ना जी का गाना सफर, जीवन से भरी तेरी आंखें।
1: वाह क्या बात है, किशोर कुमार की
0: किशोर
1: आवाज,
0: कुमार की आवाज, क्या गाना है
1: जी। सुनते हैं यही गाना फिल्म सफर।

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले बात चल रही थी ऑपरेशन की, सर्जरी की बात चल रही थी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अमूमन लोगों का आजकल वेट बढ़ना और अनियमित दिनचर्या हो रही है और वजन बढ़ना, तो लोग इन सबको भी किसी न किसी बीमारी से जोड़ लेते हैं, और प्रोस्टेट बढ़ने में भी इसको लोग गूगल से, आपने जिक्र भी किया, गूगल से जानकारी लेते हैं कि आपको अगर मोटापा हुआ, तो ये कहां तक तर्कसंगत है कि जीवन शैली का या मोटापा का, वजन बढ़ने का प्रोस्टेट पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: सो जिसे हम मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, जिसमें ये सब चीजें आती है, डायबिटीज, वेट गेन, ये सब चीजों का, क्योंकि इंटरनल बॉडी मिल्यू में चेंजेस होने से अल्टीमेटली ये हार्मोनल चेंजेस के कारण प्रोस्टेट बढ़ता है, सो ये सब का कुछ कुछ जरूर प्रभाव होता है, लेकिन ये सब चीजें अभी थियरी है। सच में आप पूछेंगे कि एग्जैक्ट कारण क्या है, वो किसी को पता नहीं है।
0: जी, जी।
1: लेकिन ये सब चीजें डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफस्टाइल चेंजेस से, आप कितना पानी पीते हैं, कितनी बार आप ब्लैडर खाली करते हैं, आपकी शुगर आप मेंटेन करते हैं कि नहीं, आपको पार्किंसन जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं, सो ये सारी चीजें अल्टीमेटली असर करती है, और उसकी कुछ असर जरूर प्रोस्टेट में होती है।
0: जी।
1: लेकिन 100% बताना कि इसी के कारण प्रोस्टेट के प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो अभी तक इतना साइंटिफिक डेटा हमारे पास नहीं है।
0: जी, लेकिन मोटापा और वजन बढ़ना तो वैसे भी नुकसान है। तो डॉक्टर साहब, कैंसर की बात कर रहे थे जब, तो मेरे जहन में एक बात आई कि प्रोस्टेट जब बढ़ा हो तो किस तरह की असावधानी से वो कैंसर का रूप लेता है, या कैंसर प्रोस्टेट कैंसर एकदम अलग है और प्रोस्टेट बढ़ना बिल्कुल अलग है, क्या असावधानी या लापरवाही से वो कैंसर का रूप ले सकता है?
1: सो प्रोस्टेट का बढ़ना नेचुरल है, और उसमें कैंसर के चेंजेस होने के कुछ कारण हमें मालूम है, कुछ कारण हमें मालूम नहीं है। स्मोकिंग इज डेफिनेटली वन फैक्टर, कुछ चीजें जेनेटिक्स हैं, जिनको फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है उनको सावधानी रखना बहुत जरूरी है, और रेगुलर चेकअप रखना जरूरी है। सो ये चीजें डेफिनेटली, ऐसा कोई प्रिवेंटिव मेजर हमारे पास नहीं है कि ये करने से कैंसर नहीं होगा। सो इसलिए सबसे बड़ी सावधानी रेगुलर चेकअप है, जिससे समय में पता चलता है कि प्रोस्टेट में कुछ कैंसर चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
0: जी जी। यूरिन से जुड़ी और कौन सी समस्या है जो प्रोस्टेट की ओर संकेत करती है?
1: सो जैसे बिनाइन प्रोस्टेट के कारण जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे डिफिकल्ट इन पासिंग यूरिन, कभी कभी बार बार यूरिन के लिए जाना, यूरिन में ब्लड आना, ये एक ऐसा सिम्टम है कि उसकी हमेशा हमें सावधानी रखनी चाहिए और टेस्ट करनी चाहिए।
0: जी, जी।
1: क्योंकि अलग अलग कारणों से ब्लड आ सकता है, लेकिन एक फिक्र रहती है कैंसर की। सो ये अगर कुछ सिम्टम्स रहे तो डेफिनेटली आगे इन्वेस्टिगेशंस करना जरूरी रहता है। लेकिन ज्यादा करके लोग यूरिन के प्रॉब्लम से ही आते हैं, जो बिनाइन प्रोस्टेट और कैंसर प्रोस्टेट के लिए कॉमन सिम्टम्स है।

0: जी
1: जांच करने से ही पता चलता है कि ये बिनाइन प्रोस्टेट है या उसमें कुछ कैंसर के चेंजेस हो के कैंसर प्रोस्टेट हो रहा है।
0: तो मतलब किसी को प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं कि आगे चल के कैंसर हो जाएगा।
1: एब्सोल्युटली नहीं, और साइज देख के भी घबराना नहीं है कि बहुत प्रोस्टेट बड़ी हो गई अब मुझे कैंसर होगा, ये गलत बात है
0: जी।
1: सो हर पुरुष को मैंने बताया ऐसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है लेकिन कैंसर बहुत कम परसेंटेज में वो कैंसर में चेंज होती है
0: जी। और डॉक्टर साहब प्रोस्टेट से जुड़ी हुई और कौन सी बीमारियां होती हैं उसके
1: कारण? प्रोस्टेट कभी कभी यंग एज में वहां इन्फेक्शन होने से प्रोस्टेटाइटिस जिसे हम कहते हैं
0: जी हाँ।
1: कभी कभी वहां पस जमा होते हैं जिसे हम प्रोस्टेटिक एब्सेस कहते हैं। सो ये चीजें भी प्रोस्टेट से जुड़ी हुई रहती है, और अगर इस प्रकार के सिम्टम्स या इन्फेक्शन होने लगे कभी कभी टीबी की बीमारी भी प्रोस्टेट में हो सकती है
0: जी जी।
1: सो इन्फेक्शन एक बात है, फिर दूसरी बात ही बिनाइन प्रोस्टेट बढ़ने से प्रॉब्लम हो सकते हैं या कैंसर प्रोस्टेट के कारण तकलीफ हो सकती है
0: जी। तो इसमें क्या पुरुषों की सामान्य जीवन शैली या मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है किसी को प्रोस्टेट की समस्या है तो?
1: जरूर, क्योंकि अल्टीमेटली इससे काफी लाइफस्टाइल चेंज होती है
0: जी।
1: अब एक जमाना था कि आफ्टर 60 इयर्स लोग मानते थे कि अभी वानप्रस्थ आश्रम है, मुझे दिन में 10 बार या रात को 5 बार यूरिन जाने की अगर जरूरत हुई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज लोग 60, 70, 80 काफी एक्टिव है, और जब यूरिनरी समस्या बार बार जाना, कंट्रोल नहीं कर सकना काफी टेंशन देती है
0: जी।
1: आप बंबई की बात देखिए, अगर किसी को बोरीवली से चर्चगेट तक सफर करना है गाड़ी में और उनकी समस्या है कि बार बार यूरिन जाना पड़ता है या कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, यह एक मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है कि कहां मुझे सुविधा मिलेगी, कहां मैं यूरिन के लिए जा सकूंगा। और फिर जब ये सब ख्याल नहीं करते हैं, यूरिन अंदर ज्यादा भरी हुई रहती है तो फिर यूरिन की ब्लैडर भी वीक होने लगती है, फिर उससे कभी कभी इन्फेक्शन की भी समस्या आने शुरू हो जाती है। सो यस, स्ट्रेस के कारण भी कुछ लोगों को बार बार यूरिन जाने की इच्छा होने लगती है। सो साइकोलॉजिकली ऑल्सो जब लोगों को यूरिन की प्रॉब्लम रहती है तो दोनों चीज होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ते हैं और यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ने से भी साइकोलॉजिकली स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है,
0: दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर टेंशन रिलीज करने के लिए एक गाना आना चाहिए, कौन सा गाना?
1: एक किशोर कुमार जी का गाना है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो,
0: ब्लैक पेंसिल
1: काफी
0: का गाना।
1: जी हाँ जी, रोमांटिक गाना है
0: जी,
1: लेकिन किशोर दा ने बहुत अच्छी तरह से गाना गाया है
0: जी जी। डॉक्टर साहब आपने भी रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले जिक्र किया था, प्रोग्राम्स म्यूजिकल प्रोग्राम में बड़े सक्रिय रहते हैं, देखने जाते हैं स्टेज के प्रोग्राम, और आपने बताया कि पहले गाया भी करते थे
1: तो जी
0: तो यहाँ गा के सुनाएंगे?
1: नहीं, अब क्या है कुछ वॉइस की तकलीफ हुई है इसलिए गाना डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन एक जमाना था गाते थे
0: जी।
1: और यस, म्यूजिक इज सच अ सूदिंग थिंग कि कोई भी स्ट्रेस को कम कर देती है
0: जी जी।
1: और कोई भी स्ट्रेसफुल जॉब हमारा, जब हम कभी कभी ऑपरेशंस में, कभी कभी किडनी ट्रांसप्लांट में, हम 24 घंटे 36 घंटे एक कंटिन्यूसली काम करते हैं, उस समय म्यूजिक का सहारा बहुत जरूरी हो जाता है
0: जी।
1: और आप जानते हैं कि लोग म्यूजिक थेरेपी भी देते हैं
0: जी।
1: सो म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलीविंग द स्ट्रेस
0: जी जी।
1: सो मुझे लगता है कि बहुत से हमारे डॉक्टर्स हैं जो गाते भी हैं, म्यूजिक में दिलचस्प भी है, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी चीज है जो स्ट्रेस कम करने के लिए महत्व की हो जाती है
0: जी। तो इन बीमारियों पर भी म्यूजिक थेरेपी काम करती है क्या?
1: क्यों नहीं, अगर स्ट्रेस कम हो जाता है तो आप यूरिन के बारे में सोचेंगे नहीं,
0: बंद हो जाएगा जी बिल्कुल। तो सुनते हैं ये गाना ब्लैकमेल फिल्म का।

0: रिलीज की और यूरिन पास करने की बात आप कर रहे थे बार बार, लेकिन आजकल ये बहुत कॉमन बात हो गई है रात में खास तौर से। कुछ लोगों को देखा है कि 3-4 बार उठ के यूरिन पास करने के लिए जाते हैं और जब जांच कराते हैं तो नॉर्मल रिपोर्ट आती है। तो ये क्या वजह हो सकती है और क्या कुछ सावधानी रखें कि इस स्थिति से मुक्ति मिले उन्हें?
1: राइट, सो पहले तो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करके जानना जरूरी रहता है कि डायबिटीज जैसी बीमारी नहीं है या कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है और ज्यादा यूरिन ब्लैडर में रहती नहीं है, ये पहले हम देखते हैं
0: जी।
1: दूसरी बात लाइफस्टाइल, जैसे आप लेट डिनर लेंगे, रात तक पानी पीते रहेंगे, सो फिर वो ज्यादा यूरिन जमा होके वो बार बार जाने की इच्छा बनी रहती है क्योंकि एक समय में पूरी यूरिन खाली नहीं होती है। तीसरी बात है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण भी, जो हार्मोनल किडनी चेंजेस होने के कारण किडनी ज्यादा यूरिन रात को बनाती है और फिर वापस बार बार जाना पड़ता है। कुछ लोगों को जिसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं, जिसके कारण भी बार बार रात को यूरिन जाना जरूरी हो जाता है। सो काफी ऐसे जिसे हम नॉक्चूरिया कहते हैं और ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि स्लीप डिस्टर्ब होने से लोगों की लाइफस्टाइल और नेक्स्ट डे काम करने में काफी दिक्कतें आने लगती है। सो ये एक बड़ा विषय है जो ऑलवेज प्रोस्टेट के ही कारण है वैसा नहीं है, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन काफी बाकी भी ऐसे कॉजेस है जिसके कारण ये नाइट फ्रीक्वेंसी बढ़ने से लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। कुछ लोगों की एसेट स्लीप डिस्टर्बेंस की पैटर्न रहती है और फिर थोड़ा सेंसेशन हुए वो बार बार बाथरूम में जाते हैं, सो ये पता करना डिफिकल्ट हो जाता है कि स्लीप डिस्टर्बेंस के कारण बार बार जाते हैं या बार बार यूरिन जाने से स्लीप डिस्टर्ब होती है।
0: जी, जी।
1: तो ये सब चीजें एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि हर समय खाली दवाइयों से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे या ऑपरेशन के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे ये नहीं होता है। और ये भी जानना जरूरी है क्योंकि कुछ लोग डेस्परेट होकर आ जाते हैं, कहते हैं कि मेरा प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर दीजिए ताकि रात की मेरी तकलीफ चली जानी चाहिए, लेकिन ये गलत बात है
0: जी, जी।
1: क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी ये प्रॉब्लम रह सकते हैं, इसलिए इस पेशेंट्स में ये समझना बहुत जरूरी है कि किस कारण से उनकी ये रात की फ्रीक्वेंसी उन्हें ट्रबल दे रही है।
0: तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो आपने नींद का बताया और दूसरा पानी ज्यादा पीना, लेकिन कई बार लोग अमूमन बार बार बाथरूम जाते हैं, इसमें महिलाओं की संख्या क्या ज्यादा होती है या फिर?
1: सो यस, महिलाओं के प्रॉब्लम थोड़े अलग रहते हैं
0: जी।
1: जब उनकी मेनली जिसे हम फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी प्रॉब्लम कहते हैं उसके कारण कुछ अलग रहते हैं। पहली बात कि काफी महिलाओं में बचपन से आदत हो जाती है कि समय समय से यूरिन नहीं करते हैं क्योंकि सुविधा नहीं मिलती है, और जब ज्यादा यूरिन जमा होने लगता है धीरे धीरे पेशाब की थैली और यूरिनरी ब्लैडर वीक बनने लगती है, फिर उन्हें पेट का प्रेशर लगा के वो यूरिन खाली करनी पड़ती है
0: जी।
1: जब एक समय में खाली नहीं होती है तो फिर बार बार जाके उनको यूरिन खाली करनी पड़ती है, ये एक प्रॉब्लम हुआ। दूसरा जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर या इरिटेबल ब्लैडर कहते हैं, जो कभी कभी कुछ लोगों को कॉफी टी इसके कारण ब्लैडर इरिटेशन होने से बार बार जाना पड़ता है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात है स्ट्रेस लेवल
0: जी।
1: कुछ लोगों को जब भी स्ट्रेस बढ़ता है वो इमीजिएट उनको लगता है मुझे जाके यूरिन करनी चाहिए
0: जी।
1: सो और फोर्थ इन्फेक्शन विच इज वेरी कॉमन इन लेडीज, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के कारण भी ये तकलीफ हो सकती है। बाकी काफी अलग अलग कारण हैं लेकिन ये कॉमन कारण है
0: जी।
1: और जिसके कारण ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी इतनी तकलीफ बन जाती है और लेडीज में ये काफी इंसिडेंस काफी ज्यादा है। इस पेशेंट्स को पहले तो जैसे मैंने बताया कॉमन इन्वेस्टिगेशंस करके हम रूल आउट करते हैं कि अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं है। फिर लाइफस्टाइल चेंजेस कि काफी लोग मानते कि बहुत पानी पीना चाहिए, सच बात है पानी पीना जरूरी है, लेकिन अगर आपको इतनी फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी का प्रॉब्लम है तो वो हमें थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है
0: जी।
1: तीसरी बात जिनको डेफिनेटली कैफीन या कॉफी और टी से होता है उसका प्रमाण कम करना जरूरी हो जाता है
0: जी।
1: और आजकल काफी दवाइयां आई हैं जिससे ब्लैडर को रिलैक्स करने से ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ने से वो ज्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सकती है।

0: और फोर्थ, कुछ लोगों को जो स्ट्रेस इतना तकलीफ देता है, आई थिंक योगा एक्सरसाइजेस ऑल दिस थिंग्स हेल्प देम इन रिलैक्सिंग द ब्लैडर मसल्स, ताकि वो ज्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सके. सो लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत बड़ा महत्व है ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी ट्रीट करने में. और दूसरा, यूरिनरी इन्फेक्शन अवॉइड करना जरूरी हो जाता है.
1: जी, तो डॉक्टर साहब, आप इन्फेक्शन की बात आपने कई बार कही, तो इन्फेक्शन को अवॉइड कैसे किया जाए, क्या वजह हो सकती है? महिलाओं में, पुरुषों में अलग तरह के इन्फेक्शन होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए.
0: सो एक तो एडिक्वेट पानी पीना भी जरूरी है.
1: जी.
0: बहुत कम पानी पीना ठीक नहीं है.
1: जी.
0: दूसरी बात, समय समय से यूरिन कर लेना है. तीसरी बात, हम देखते हैं कि कभी कभी अंतर कोई सिस्टम में कारण है, जैसे ब्लैडर स्टोन से, किडनी स्टोन से, जिसके कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है. द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम टुडे इज डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज के कारण जब शुगर यूरिन में से जाती है, उनको भी इन्फेक्शन की शक्यता बहुत बढ़ जाती है. सो ये चीजें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. देयर आर यंग लेडीज जो आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी ऑल्सो उनको इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी रहती है. सो आई थिंक गायनेकोलॉजिस्ट को मिलके या यूरोलॉजिस्ट को मिलके किस लाइफ स्टाइल चेंजेस पहले चेंज करके अगर इन्फेक्शन के इंसिडेंस कम हो जाए वो पहले कोशिश करनी है.
1: जी.
0: फिर तपास करके ऐसे कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो गए तो उनको ट्रीट करना जरूरी है. और थर्ड, फिर जरूरत पड़ी तो दवाइयों से ये सिम्टम्स हम कंट्रोल कर सकते हैं. वेरी रेयरली हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस या कभी कभी कैंसर जैसी बीमारियों भी कभी ये सिम्टम्स के साथ पेश होती है. इसीलिए प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर लेना जरूरी है, क्योंकि उनसे कारण भी ब्लैडर में इरिटेशन होने से बार बार यूरिन जाने की उनको टेंडेंसी रहती है.
1: जी जी.
0: कुछ कंडीशन जैसे हम पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम कहते हैं, जो बेसिकली नर्व्स और मसल्स के स्पैजम्स के कारण नर्व्स पे प्रेशर आने से, उसकी असर से भी लेडीज को बार बार जाने की टेंडेंसी होती है, पेन होता है. तो ये काफी चीजों से ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी के प्रॉब्लम हो सकते हैं. बट ज्यादा करके कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं रहते हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से और कुछ प्राइमरी मेडिकेशन से काफी लोगों को राहत मिल जाती है. अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट. और काफी लेडीज तकलीफ सह लेती है कि कहां किसी को हम इसके बारे में बताएं.
1: जी,
0: ये गलत बात है. आजकल इतने ऑप्शंस मिल रहे हैं कि इससे ये जो प्रॉब्लम है उससे कंट्रोल करना अभी आसान हुआ है.
1: बिल्कुल. अपने श्रोताओं को बता दें, विविध भारती से यह कार्यक्रम सेहतनामा, और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उमेश ओझा से, जो कि एक मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट है और बड़े ही जानकार डॉक्टर है. डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं हम.
0: जरूर.
1: कौन सा गाना सुनवाया?
0: मुझे लगता है अरिजीत सिंह का नैना, जो दंगल मूवी में है.
1: जी.
0: बहुत अच्छा गाना है.
1: जी.
0: और वहाँ इमोशंस भी बहुत अच्छे, फादर डॉटर के रिलेशनशिप के बारे में बताया है. वो गाना अच्छा रहेगा.
1: जी, सुनते हैं यही गाना अरिजीत सिंह की आवाज में. झूठ

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज। साथ ही न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजे हैं, हमारी आज की दूसरी सभा आरंभ होती है। आइए सभा के आरंभ में सुने युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी। युववाणी के समस्त युवा श्रोताओं को नमस्कार। दोस्तों, आज बहुत सारी बातें हम करेंगे, ऐसी बातें करेंगे उन बातों का जो लक्ष्य है वो यही है कि अगर हम मानसिक रूप से संबल हों तो हमारे लिए कोई भी चुनौती मुश्किल नहीं है। अब मानसिक संबलता की बात आज शुरुआत ही हम कर रहे हैं उसी से। इसकी एक वजह है, वजह यह है कि आए दिन आप सूचना माध्यमों से ज्ञात करते होंगे या आपको ये जानकारी मिलती होगी कि हम युवाओं में से बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो किसी न किसी मानसिक तनाव को झेल रहे होते हैं। अब हमने ये मानसिक तनाव की बात कर दी एकदम से कार्यक्रम की शुरुआत में ही, तो ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे तनाव हमारे सामने परिलक्षित होता है, ऐसा नहीं है। ये धीरे धीरे हमारे जहन में, हमारे दिमाग में जगह बनाने वाली बात है। आज श्रोताओं, हम आपसे यही बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जिस वजह से हम अपने को तनाव में पाते हैं। ये तनाव अगर हम इसे समय रहते नहीं सुलझा ले दोस्तों, तो फिर वो बात हो जाती है कि हम अवसाद के शिकार हो जाते हैं, जिसे डिप्रेशन कहते हैं अंग्रेजी में। और एक बार डिप्रेशन हो जाए तो उससे बाहर निकलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, और वो तब जब हमें अपने माहौल को चेंज करना होता है, हमें उस तरह से कभी कभी चिकित्सा की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी मनोचिकित्सक की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी वैज्ञानिक की भी ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन ये जो समय होता है, हमारी पढ़ाई लिखाई का समय होता है, ये कंपटीशन की तैयारी करने का समय होता है, और इस गाढ़े समय में अगर इन सब चीज़ों से हम दो चार हो जाते हैं तो हमारा बहुत सारा वक्त जो है ना वो बर्बाद हो जाता है। आज आपको पता होगा कि राजकीय शोक चल रहा है। भारत सरकार ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज का दिन राष्ट्रीय शोक के तौर पर घोषित किया है। तो आज कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे लोकगीत। तो

आएंगे, लेकिन वो कुछ भक्ति गीत होंगे। और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा को भी बढ़ाएंगे, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपके लिए अरविंद कुमार झा और ओम प्रकाश सिंह का गाया ये गीत ला रहे हैं, सुनिएगा।

सबहक सुधे अहाँ ले छी हे मैया। ये लोकगीत आप सुन रहे थे दोस्तों पूनम कुमारी के स्वर में, और उसके पहले जो आपने भजन सुना अरविंद कुमार झा और ओम प्रकाश सिंह का गाया हुआ है। दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे ना कि मानसिक रूप से अगर हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए चिंता की बात हो जाती है। और उससे मुक्ति के लिए हमें जो अकुलाहट छटपटाहट होती है उससे सिर्फ हम ही बाधित नहीं होते, हमारा पूरा परिवार भी होता है, और जो हमारे दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं। अब देखिए कि ये सारी बातें हम क्यों कह रहे हैं। हम सब ने ध्यान दिया होगा ना कि ये जब परीक्षाओं का मौसम आता है तो जैसे पतझड़ का मौसम होता है ना, उसी तरह से अवसाद, जैसे ही रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद कहीं खुशी कहीं गम का माहौल होता है। और आप जानते हैं कि आज प्रतिस्पर्धा जो है वो गलाकाट है, एकदम नेक टू नेक फाइट जिसे कहते हैं, उस तरह की बात होती है। और ऐसे में हर किसी के सामने लक्ष्य जो होता है वो होता है उच्चतम शिखर तक पहुंचने का, उच्चतम अंक हासिल करने का। और जब वहां तक हम नहीं पहुंच पाते हैं मेहनत करने के बावजूद, तब हमारे पास जो बचा खुचा सामान होता है उसमें दुख है, उसमें पीड़ा है, उसमें संतरास है, उसमें पछतावा है, उसमें अकुलाहट है, बेचैनी है, उसमें पीछे हो जाने का दंश है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अनेक तरह के तनावों से घेर लेती है। और जब तक हम संभल पाए, जब तक हम इन बातों को समझ पाए, तब तक गहरे अवसाद में हम चले जाते हैं। और उसके बाद पूरी दुनिया में लगता है जैसे हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए, अब कहीं से कोई झरोखा खुले, कहीं से कोई दरवाज़ा खुले, ऐसी अकुलाहट हो जाती है, ऐसी बेचैनी हो जाती है, हम अपने में सिमट जाते हैं। और वो जो है ना दूसरों के से अलग होकर अपने को सोचते हैं, ये सोचते हैं कि हर निगाह हमारी जो कमजोरी है उसकी ओर है, हर कोई हमारे फेल्योर को देख रहा है, हर कोई ये देख रहा है कि हमारे परिवार ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और मैंने कौन सी रिजल्ट दे दी, इस तरह की बातें होती है। और यही वजह है कि जब 10वीं 11वीं 12वीं की परीक्षा होती है या कोई कंपटीशन पीटी या कोई कंपटीशन फेस करने की बात होती है, उस समय युवाओं में, खासकर जो परीक्षा दिए हुए परीक्षार्थी हैं, उनमें जो फेल्योर होते हैं उनको लेकर के जो तनाव होता है वो उसे झेल नहीं पाते हैं, और इस तरह अवसाद में चले जाते हैं, इस तरह एक तरह से तनाव की स्थिति में आ जाते हैं जब उन्हें लगता है कि और कोई रास्ता नहीं बचा है, और वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो ये बड़ा ही दुखद, बहुत ही चिंताजनक बात है। और देखिए मानसिक रूप से हम जब स्वस्थ नहीं होते, सबल नहीं होते हैं, तब ये स्थिति होती है। कितना दुख होता है, कितनी पीड़ा होती है कि लोग आकांक्षा रखते हैं कि भाई पढ़

करके हम आगे बढ़ेंगे, और वही पढ़ाई जो हमारे लिए आगे बढ़ने की गारंटी है, जो हमारे लिए जीवन में कुछ कर पाने की गारंटी है, वही हमारे पतन का कारण बन जाता है, हमारी मौत का कारण भी बन जाता है। तो हम तो ये कहेंगे कि अगर हम मानसिक रूप से सबल हों, मानसिक रूप से स्वस्थ हों, तो हम अपने आप को एसेस कर सकते हैं, मतलब अपने आप को परख सकते हैं कि हम में कौन सी कमी हो गई, कहाँ कमी हो गई, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है, हर कोई सफल नहीं हो सकता है, लेकिन असफल होते हुए भी हम कोई ना कोई अपने लिए सफलता का रास्ता ढूंढ सकते हैं। ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है दोस्तों, इतनी बड़ी होती है कि हमारे लिए बहुत सारे, हो सकता है एक रास्ता बंद हो जाए लेकिन दूसरा रास्ता खुल सकता है। इसीलिए मानसिक रूप से अपने को ताकतवर बनाइए, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये बात ये है कि हमें उन सब बातों से दो चार होना पड़ेगा, उन सब बातों को देखना पड़ेगा, उन सब बातों को सोचना पड़ेगा जिस वजह से हम तनाव में घिर जाते हैं। इस समय आपके लिए एक हम गीत लेकर आ रहे हैं, फिर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विभा झा का स्वर है, सुनते हैं ये लोक भजन।

विनती करै छी महाकाली हे, ममता कुमारी केशवर में ये लोकगीत हम सुन रहे थे, देवी गीत। हमारे युवा श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे थे युवाओं में मानसिक जो पीड़ाएं हैं, मानसिक तनाव है, मानसिक अवसाद है, यानी कुल मिलाकर युवाओं में जो मानसिक समस्याएं हैं उन पर हमारी चर्चा हो रही थी। देखिए, एक बार हमने कहा था ना कि अभी ही कि कारणों को अगर हम जान लें तो फिर इससे बाहर निकलने के भी रास्ते हैं। अमूमन अपने देश में अगर मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो उस पर बहुत ही ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन WHO का कहना है कि अगर हम स्वस्थ किसी को बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसमें शारीरिक स्वास्थ्य ही शामिल है, बल्कि उसमें बिल्कुल पूरी तरह से मानसिक स्वास्थ्य को भी हम शामिल करते हैं। यानी मानसिक रूप से अगर हम सबल हैं, मानसिक रूप से अगर हम संतुलित हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हमारे पास संपूर्ण आरोग्य है, हम स्वस्थ अपने आप को मान सकते हैं। अगर शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हैं तो हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना ही होगा, और ये तब होगा जब हम अपने मानसिक स्थिति को लेकर जो समस्याएं हैं उनके कारणों को समझेंगे। आमतौर पर देखा जाता है कि युवाओं में मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत ही ज़्यादा होता है। ये दबाव क्या है भाई? ये दबाव है कि कई बार हम अपनी इच्छा से अपनी रुचि के मुताबिक पढ़ाई नहीं करते। अभिभावक माता पिता का दबाव होता है और कई बार उनकी वजह से भी हम उन विषयों का चयन नहीं करते हैं जिन्हें हमें करना चाहिए, और ऐसी स्थिति में बनते बनते बात बिगड़ जाती है। अब इंजीनियरिंग की तरफ अगर रुझान नहीं है और हमारे माता पिता या अभिभावक ने ये सोच रखा है कि वो आपको इंजीनियर बना के रहेंगे, तो फिर यहाँ पर एक स्थिति आ जाती है जहाँ अनमने ढंग से आप पढ़ाई करते हैं और फिर ये स्थिति हो जाती है कि हम उस पैमाने पर सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं जहाँ हमें होना चाहिए। तो एक तरह से वहाँ पर हमारे लिए मानसिक रूप से तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। अब सवाल ये है कि भाई ये स्थिति जो है, अगर हम इसे शुरुआत में ही समझ जाएं, इस स्थिति को अगर हम इस स्थिति से बाहर निकलने के रास्ते खोज लें तब तो ठीक है, लेकिन जब हम मानसिक अवसाद के शिकार हो जाते हैं तो उसके बाद सामाजिक पूर्वाग्रह और पारिवारिक उपेक्षा का भी दंश हमें झेलना पड़ता है। हमें दिमागी तौर पर कमज़ोर बता दिया जाता है, कई बार तो मेंटल है कहकर दोस्त चिढ़ाते भी हैं, कई बार कई लोग नौटंकीबाज बोलते हैं, कई बार स्थिति यहाँ तक चली जाती है कि एक अच्छा खासा इंसान जो बिल्कुल एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा होता है वो डिप्रेशन में आकर ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है जिसके बारे में उसने कभी कोई कल्पना नहीं की होगी। और इसका एक बड़ा दुष्प्रभाव ये होता है कि हम अपनी समस्या के बारे में किसी को बता भी नहीं पाते, इतनी मिजरेबल कंडीशन हो जाती है, इतनी दुखद स्थिति हमारी हो जाती है कि हम अपने दुख को ही व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ये समस्या लड़कों के मुकाबले लड़कियों में ज़्यादा गंभीर होती है चुपचाप रहने की, हालांकि लड़कों में भी होती है लेकिन लड़कियों में थोड़ा ज़्यादा होती है। कई बार जो शैक्षिक माहौल होता है जहां हम एडमिशन लेते हैं, जहां हम पढ़ाई करते हैं, वहां की जो आबो हवा

वहाँ का जो वातावरण है वो हमें सूट नहीं करता है, हमें लगता है कि हम अपने आप को यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी स्थिति होती है मानसिक तनाव को लेकर। और कई बार जब हमारे ऊपर पढ़ाई का ज़्यादा दबाव होता है या अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं उसको लेकर के ज़्यादा तनाव होता है, तो वो भी एक स्थिति हो जाती है हमारे लिए डिप्रेशन में जाने के लिए, मानसिक अवसाद ग्रस्त हो जाने के लिए। अब सवाल ये है कि हम इससे जूझे कैसे, इससे बाहर कैसे आए। देखिए भाई, ज़िंदगी आपकी है, पढ़ाई आपकी है, स्टडी आपकी है, चुनौती आपकी है, तो इसका निर्णय करेगा कौन, है ना? हम करेंगे ना, दूसरा क्या करेगा। तो एक बार लक्ष्य का निर्धारण करें और मानसिक रूप से अपने को इतना सबल बनाएं कि फिर उसे हासिल करना ये आपका कार्य है, हम करके रहेंगे, ये बात है। दूसरी बात, अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई हमारे पास परेशानी है, तो हम अपनी परेशानी को अपने माता पिता, अपने अभिभावक से नहीं छिपाएं। ऐसा करके हम एक तरह से अपने लिए रास्ते खोल देते हैं। तीसरी बात क्या है कि हम हेल्पलाइन का सहारा लें, हम ऐसी जगहों का सहारा लें, अपने से बड़े बुजुर्ग का सहारा लें जो इन सब स्थितियों में हमें सहायता कर सके, ये भी बात है। और तीसरी सबसे अहम बात क्या है कि अपनी लाइफ स्टाइल को हम ठीक करें, समय पर जगना, समय पर एक्सरसाइजेज करना, समय पर जॉगिंग करना, समय पर पढ़ाई करना, और एक व्यवस्थित तरीके से जीवन जीने की जो बात होती है ना, वो इन सब बातों को अगर हम ख्याल में रखें और अमली जमा पहनाएं, तो मानसिक अवसाद से हम बच सकते हैं और हम मानसिक रूप से सबल भी हो सकते हैं। हमें लगता है दोस्तों कि इतनी बातें, जितनी बातें हमने की है, ये आपके फ़ायदे की बातें होंगी और इससे आपको लाभ मिला होगा, और लाभ नहीं भी मिला होगा तो सोचिएगा ज़रूर। लेकिन इस समय चलते चलते एक भक्ति गीत हम सुनवाते हैं, लोकगीत मीरा कुमारी के स्वर में।

और अब इस गीत के साथ ही युववाणी के आज के अंक से हम विदा लेते हैं। युवा श्रोताओं नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आइए सुने फिल्म संगीत। तुमसे अच्छा कौन है, इस फिल्म में आइए सुनते हैं अलका याग्निक को। समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत है।

इसे लिखा था विशाल ददलानी ने, विशाल शेखर का संगीत था और इसे गाया था राहत फतेह अली खान और साथियों ने। और अब लीजिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत हम आपको सुनवाते हैं, अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा हुआ, प्रीतम का संगीत बद्ध किया हुआ और अरिजीत सिंह का गाया हुआ, फिल्म है छिछोरे।

0: अरिजीत सिंह के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे जिन फिल्मों से गीत, वो फिल्में थी तुमसे अच्छा कौन है, अनजाना अनजानी और छिछोरे। जिन आवाज़ों को आपने सुना वो थी अलका याग्निक, राहत फतेह अली और अरिजीत सिंह की। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के लिए कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: आरके साथ मैं मुकेश कुमार। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और इसके लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने असम के विदेशी न्यायाधिकरणों से विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ये बात कही। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष जांच दल से जांच संबंधी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को इस मामले में 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्रियों को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 6 लेन का यह देश का दूसरा सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है। इसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। यह स्वचालित और रोबोटिक मशीनों की सहायता से निर्मित देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर केवल 35 से 45 मिनट रह जाएगा। दोनों शहरों के बीच कार से यात्रा करने पर ₹275 टोल टैक्स लगेगा। एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों की अनुमति नहीं है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेजी से विकास होगा।
2: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही हैं। और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। एनसीसी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियम कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की एक उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान के टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधि

0: यूं व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन की लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर ही सिमट गई। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 341 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दरभंगा है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से आज इस सभा में और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद शाम 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत। शाम 6:30 का समय होगा गाम घर कार्यक्रम का। आज अंक होगा अनुभव के चश्मा सा, परिवार की शान और मान है बुजुर्ग, ये चर्चा होगी। साथ ही आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। 7 का समय खेती गृहस्थी का होगा, संकर अंडी की उन्नत खेती के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ समसामयिक कृषि कार्यों के बारे में भी किसानों को सुझाव दिए जाएंगे। कुछ फिल्मी गाने हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:52 पर। संध्या 8:15 का समय होगा मैथिली में हमारे कार्यक्रम सिंगरहार का। पब्लिक स्पीक, ये कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे आज रात 9:30 पर। और कुछ फिल्मी गाने हम आपको सुनवाएंगे रात 10:00। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। और अभी एक नज़र कल यानी मंगलवार को प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर। कल की पहली सभा में 5:55 पर कृषि चर्चा में किसान भाइयों को मछली के संक्रामक रोग और इसके निदान के बारे में जानकारी की बातें बताई जाएंगी। वाचन स्वर होगा शंकर कुमार चौधरी का। 6:05 पर स्वास्थ्य चर्चा में ब्रेन ट्यूमर लक्षण और इलाज के बारे में विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर एजाज आलम। सुनिएगा नमस्कार मिथिला कल प्रातः 7:05 पर। अंजुमन, ये उर्दू कार्यक्रम हम अपने पटना केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे कल 9:10 पर। कल पहली सभा में 10 का समय फिल्म संगीत का होगा। सुनिएगा बज्जिका में हमारा कार्यक्रम अंगना कल पहली सभा में 10:30 पर। कल दिन में 11 का समय उप शास्त्रीय संगीत का होगा, कलाकार होंगी शोभा गुरटू। NCERT ये प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा कल दिन में 11:30 पर। मध्याह्न 12 का समय फिल्म संगीत का होगा। कल दोपहर 12:30 पर रविवार 12 जुलाई 2026 को प्रसारित कार्यक्रम हेलो जिंदगी का संपादित अंश प्रसारित किया जाएगा। विशेषज्ञ होंगे प्रोफेसर मुनेश्वर यादव, संचालन संजय कुमार का होगा और प्रस्तुति होगी असद दाऊद की।

आएंगे रोजगार सूचनाओं के लिए वक्त होगा कल दिन में 2:10, बजे का लोकगीतों का समय कल दिन में 3 बजे का होगा। युवा श्रोता अपना कार्यक्रम सुनेंगे युवाणी कल शाम 5 बजे, शाम 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत, शाम 6:30 पर गाम घर के अंतर्गत नव ऊर्जा अंक आप सुनेंगे, चर्चा होगी अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम, 7 बजे का

मिनट पर गांव घर के अंतर्गत नव ऊर्जा अंक आप सुनेंगे। चर्चा होगी अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम। 7 बजे का समय, संध्या काल खेती गृहस्थी का होगा। खरीफ सूर्यमुखी की खेती के बारे में जानकारी दी जाएगी। सिंगरहार सुनिएगा ये मैथिली में कार्यक्रम कल शाम 8:15 पर। कल रात 9:30 पर सर्वभाषा विविधा के अंतर्गत एक भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी। विषय होगा डिजिटल युग में अभिनय की कला, अवसर और चुनौतियां, साथ ही भविष्य। एक बार फिर से विषय सुन लें, डिजिटल युग में अभिनय की कला, अवसर, चुनौतियां और भविष्य। भेंट वार्ताकार होंगे अंजनी कुमार और प्रस्तुति होगी असद दाऊद की।

कल रात 9:45 पर इंग्लिश टॉक का समय होगा। रात 10 बजे एक फनकार और 10:30 पर कुछ फिल्मी गाने आप सुन पाएंगे। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज इस सभा में, साथ ही कल यानी मंगलवार को प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी दरभंगा है।

ये आकाशवाणी दरभंगा है। आइए सुने विद्यापति गीत। महाकवि विद्यापति की ये रचना सुनिए राम कुमार मल्लिक के स्वर में।

विद्यापति गीत, ये स्वर था राम कुमार मल्लिक का। और अब लीजिए ये कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, ये स्वर है काशीनाथ झा किरण का।

0: अभी आप सुन रहे थे विद्यापति गीत। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:25 होने वाले हैं। मैथिली संवाद के लिए कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा FM रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी कामिनी ठाकुर। बांकीपुर विधानसभा उपचुनावक लेल आइ नामांकनक समय सीमा समाप्त भऽ गेल। नामांकनक आइ अंतिम दिन भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा आ जन सुराज पार्टीक प्रशांत किशोर अपन नामांकन पत्र दाखिल कयलनि। एकर अलावे जनशक्ति जनता दलक उम्मीदवार वीणा मानवी सेहो अपन पर्चा भरलनि। एहि सँ पहिने उम्मीदवार लोकनि रोड शो सेहो कयलनि। हमर संवाददाता जनौलनि जे भाजपा उम्मीदवारक नामांकन मे पार्टीक वरिष्ठ नेता आ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जदयूक वरिष्ठ नेता आ उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी आ पटना साहिबक सांसद रविशंकर प्रसाद उपस्थित छलाह। उपचुनावक लेल उम्मीदवार 16 जुलाई धरि नाम आपस लऽ सकैत छथि। मतदान 30 जुलाई के होयत, जखनकि मतगणना 3 अगस्त के कयल जायत। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीनक त्याग पत्र के कारणे एहि सीट पर उपचुनाव भऽ रहल अछि। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनशक्ति जनता दलक उम्मीदवार वीणा मानवी के पुलिस गिरफ्तार कऽ लेलक, जखनकि बाद में हुनका पटना के एक अदालत जमानत दऽ देलक। हमर संवाददाता जनौलनि जे जहिना वीणा मानवी नामांकन दाखिल कऽ समाहरणालय परिसर सँ बाहर अयली, हुनका गिरफ्तार

0: वर्षा भऽ रहल अछि। मौसम विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार पछिला 24 घंटा के दरमियान मधुबनी, मधेपुरा, अररिया, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान आ सारण जिला मे किछु स्थान पर अतिवृष्टि भेल अछि। पश्चिम चंपारणक मैनाटार मे सबसँ बेसी 169 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड कयल गेल। विभाग काल्हि दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया आ सुपौल जिला मे किछु ठाम पर अतिवृष्टि, जखनकि अररिया, बांका, भागलपुर, किशनगंज, मधुबनी आ सहरसा जिला मे भारी वर्षा हेबाक चेतावनी जारी कयलक अछि। नेपालक जलग्रहण क्षेत्र मे भऽ रहल भारी वर्षा के कारण कोसी आ गंडक नदी के जलस्तर मे लगातार वृद्धि भऽ रहल अछि। हमर सुपौल संवाददाता जनौलनि जे आइ दोपहर 2 बजे धरि कोसी बराज सँ 1,72,435 क्यूसेक पानि छोड़ल गेल। भीमनगर कोसी बराज पर पानिक बढ़ित दबाव के देखैत 20 फाटक के खोलि देल गेल अछि। बाढ़ नियंत्रण वीरपुरक मुख्य अभियंता संजीव शैलेश जनौलनि जे कोसी नदी पूर्वी आ पश्चिमी तटबंध सहित सब बांध पूर्ण रूपेण सुरक्षित अछि। एम्हर हमर बेतिया संवाददाता जनौलनि जे गंडक नदीक जलस्तर मे सेहो लगातार वृद्धि भऽ रहल अछि। वाल्मीकि नगर गंडक बराज सँ एखन धरि 1,00,000 क्यूसेक सँ बेसी पानि छोड़ल जा चुकल अछि। ऐतिहासिक मिथिलाक सौराठ सभा काल्हि समाप्त भऽ गेल। एहि बेर कुल 335 वैवाहिक सहमति सिद्धांत भेल। 1 सप्ताह धरि चलल एहि सभा के सफल आ सुखद समापन पर सौराठ सभा समिति के अध्यक्ष कृष्णकांत झा गुड्डू कहलनि जे एहि वर्षक सभा मे पंजीयन प्रथा के प्रति नव जागरूकता बढ़ल अछि, जे आबय वाला दिनक लेल सकारात्मक संदेश अछि। समितिक अध्यक्ष कहलनि जे आबय वाला वर्ष मे सौराठ सभा पुनः अपन ऐतिहासिक रूप मे स्थापित होयत। दरभंगा मंडल कारा के सहायक अधीक्षक नंदू कुमार चौधरी के तत्काल प्रभाव सँ निलंबित कऽ देल गेल अछि। हुनक विरुद्ध पत्नीक हत्या के मामला दर्ज अछि। एहि मामला मे न्यायालय हुनक विरुद्ध वारंट जारी सेहो कयलक अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। संध्या के 6:30 हो चुके हैं। अब आरंभ होता है हमारा ग्रामीण प्रसारण। आइए सुने गांव घर।
2: गांव घर कार्यक्रम सुननिहार सुधीर श्रोता लोकन के विजय कुमार सिन्हा के नमस्कार। श्रोतागण, आई गांव घर के दौरान पर उगना भाई बैसल छथि, तो गौर लगे छी उगना भाई।
3: खूब प्रसन्न रहू विजय भाई। आई सोम दिन अछि आ आजुक दिन हमरा लोकन स्नेही बुजुर्ग श्रोता लोकनिक लेल लऽ कऽ अबै छियनि हुनक साप्ताहिक कार्यक्रम अनुभव के चश्मा सँ। एहि कार्यक्रम अंतर्गत आई हमरा लोकन एकटा प्रायोजित कार्यक्रम सुनब बुनियाद, एकर संग संग एकटा भजन सुनब, मुदा एहि सबसँ पहिने किछु दू टप्पी कहलहुँ।
2: उना भाई, देखियो जे बुजुर्ग लोकनि जे छथि ओ परिवारक वास्तविक मे शान, मार्गदर्शक आ हमर जड़ि के समान होइत छथि। हुनका बिना परिवारक अस्तित्व अधूरा जेना लगैत अछि। परिवार मे बुजुर्गक अहमियत आ हुनक योगदान के बहुत प्रकार सँ बुझल जा सकैत अछि। उना भाई, जेनाकि संस्कार आ परम्पराक संवाहक, बुजुर्ग लोकनिक हमरा सबके हमर मूल्य, संस्कृति आ पारिवारिक परंपरा सँ जोड़ि कऽ ओ रखै छथि। हुनक कहानी आ सीख मे जीवनक निचोड़ होइत अछि।
3: ठीके कहलहुँ। आ ओ लोकनि बेर पर जेना पाबनि तिहार होइत अछि, विवाह दान होइत अछि, एहि सबके जे रीत नीत परम्परा ताहु प्रसंग मे मार्ग निर्देशन दैत छथि, तऽ हमरा लोकनि बुझै छी जे कोना होइत अछि। तऽ हमरा लोकनि के हिनका लोकनि पर ध्यान देबाक चाही।
2: हाँ, आ देखियो जे बुजुर्ग लोकनिक ओ परिवारक भावनात्मक नींव होइत छथि। हुनक उपस्थिति सँ घर मे सकारात्मक ऊर्जा सेहो बनल रहैत अछि। हमरा लोकनि बड़ बुजुर्ग लोकनि के सम्मान करियन कि न।
3: ठीके कहलहुँ, करबाके चाही। तऽ आब बेर रहत तऽ फेर गपशप करब, मुदा हमरा लोकनि ई जनैत छी जे सबसँ पहिने ई ध्यान राखी जे विशेष रूपसँ पाबनि तिहारक बेरमे हिनका लोकनि पर ध्यान देबाक चाही। हिनका

0: जी उचित मान सम्मान ओहि बेरमे होनि से देबाक चाही। कारण प्रायः लोक अपन काजमे व्यस्त भऽ जाइत छथि आ हुनका परसँ ध्यान हटि जाइत छनि। तऽ बेर रहत तऽ फेर गपशप करब, मुदा आब ई सुनैत छी भजन।
1: सुनिए हमरा लगन शिव भजन स्वर छनि ममता ठाकुरके, तऽ सुनल जाय हुनका स्वरमे।
0: सुनल जाय।

0: उगना भाई एखन हमरा लोकन ममता ठाकुर के स्वर में ई शिव भजन सुनि रहल छलौं। आब हमरा लोकन सुनै छी एकटा भेंटवार्ता बुजुर्ग एवं योग का महत्व, भेंटवार्ताकार डॉक्टर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव आ हुनका से भेंट कर रहल छथि शंकर कुमार चौधरी। तो सुनल जाए भेंटवार्ता।
1: तो सुनल जा।
2: हम मोहल्ला मदारपुर दरभंगा में आयल छी। एतौ एकटा योग अनुभवी वृद्ध चिकित्सक छथि, हिनक नाम भेलनि डॉक्टर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव। हिनका सँ हमरा लोकनि स्नेही वृद्ध श्रोता लोकनिक लेल बुजुर्गावस्था में कोन तरहक योग प्राणायाम एकर संग संग आसन एहि सब पर ध्यान देबाक चाही जाहिसँ कि स्वस्थ रहब। तऽ डॉक्टर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जी, अहाँ वृद्ध लोकनिके ई जनतब दियौन जे कोना स्वस्थ रहबाक लेल एहि सबके जीवनमे आवश्यकता अछि तऽ अपने जनतब देल जाओ।
3: विषय तो बहुत गूढ़ है, बहुत ज़्यादा बाजा के में जरूरत पड़ते, लेकिन तैयो हम शॉर्ट में अहाँ के ऐ विषय पर बतबै छी। जे लोग 60 ऊपर चल गला, जिनकर उम्र भ गेलन 60 से ऊपर, उनका सबसे पहले 6 बजे साँझ के बाद उनका आहार ग्रहण नहीं करके चाहिए। केवल गर्म पानी पी सके छथि, सुसुम पानी पी सके छथि, अन्न ग्रहण नहीं करता। दोसर ओकर बाद 6 बजे के बाद भोजन नहीं करथिन और ओकर बाद केवल रात में पानी पी कर सुतथिन। 4 बजे भोर के बाद बिछावन पर नहीं रहबाक चाहिए। का ई करता नित्य क्रिया से निवृत्त भ कर निश्चित रूप से बूढ़ा के लिए तारासन, योग में तारासन सबसे उपयुक्त छे। शरीर के संतुलन बनल रहतन, शरीर सीधा रहतन, पैर के मांसपेशियों से हो मजबूत रहतन। ओकर बाद जो दोसर छे वृक्षासन, वृक्षासन करू, अहाँ के माइंड के संतुलन बनल रहत, शरीर के संतुलन बनल रहत। ओकर बाद तेसर है वज्रासन, जे 5 मिनट से लकर 10 मिनट तक वज्रासन पर बैठू। वज्रासन केना कैल जाए छे नेट पर अखनी कतौ देख सकै छी अहाँ वज्रासन, ओहि पर विशेष हम नहीं चाहे छी। ओकर बाद भुजंगासन, सर्पासन भी सेहो कहल जाए छे, भुजंगासन कहल जाए छे। भुजंगासन करू, जैसे शरीर में स्ट्रेच आयत। पवन मुक्तासन, शशकासन, सवासन। सवासन भेलै माने सब जेहन आकार भ के सब जैसा सो जाना है, सब जे सब जैसन मतलब मुर्दा जैसन। सवासन के मतलब भेल जे मुर्दा जैसन अहाँ सुति जाओ आ एकदम शरीर के स्थिर कर लियो सवासन। प्राणायाम में जे छे से बुजुर्ग के अनुलोम विलोम करू, ब्राह्मणी प्राणायाम करू, दीर्घ श्वास लंबा ओंकार, लंबा श्वास लिया आ ओम ओम करैत ओकरा अंत करू, लंबा सांस लिया और लंबा ओकरा छोड़ू। या भेल जे अहाँ के मुख्य रूप से जे अहाँ जे छै से प्राणायाम अनुलोम विलोम करू, माइंड शांत हुए। अहाँ के यदि उच्च रक्तचाप अइ, शुगर अइ, सब कंट्रोल हो जाए। लेकिन 6 बजे शाम के बाद भोजन नहीं करना है और रात में पानी पी कर के सोना है। जो खाना है दिन में ही खाना है और चूल्हा पर चढ़ा हुआ अनाज 24 घंटा में एक ही बार खाना है। शाम में यदि खाना है, दिन में यदि आपने खा लिया तो शाम में 6 बजे खाना है, फल खाइए, खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, अंकुरित अनाज खाइए, चिनिया बादाम का अंकुरा खाइए, मूंग का अंकुरा खाइए, चना का अंकुरा खाइए, बहुत से बहुत 25 ग्राम, 20 से 25 ग्राम, उससे ज़्यादा।
2: यानी मात्रा पर आहार

0: सेहो ध्यान देबाक चाही।
1: एकदम एकदम, ई नहि जे आब अंकुरित अनाज कहलहुँ तऽ सीधे अहाँ आधा किलो लऽ लेबै खा लेबै, नहि 25-20 से 25 ग्राम आ खूब चबा कऽ। खेनाइके बारेमे कहल गेलैए अंग्रेजीमे, ईट यू सॉलिड एज लिक्विड आ ईट यू लिक्विड एज सॉलिड। कहके माने ई, जब अहाँ ठोस आहार खाइ छी तो ओकरा एतेक चबैयौ मुँहमे जे ओ पानि भऽ जाइ तब निगलू, आ जब अहाँ लिक्विड खाइ छी, लिक्विड ईट यू लिक्विड, जहाँ जब अहाँ दूध पियै छी, लस्सी पियै छी, पानि पियै छी तऽ ठोसके तरह ओकरा मुँहमे चलैयौ, तखने ओ पचत। एक लोटा दूध पी लेलहुँ तऽ ओ हासिल नहि हैत, सीधे एनससँ निकलि जायत, ओ हासिल नहि जब तक ओकरामे लार शामिल नहि हेतै। आओर किछु बाजऽ चाही?
0: इहो बड़ नीक अहाँ कहलियै जे हमरा लोकन आहार जे लै छी ओकर लेबाक ढंग की हेबाक चाही।
1: अगर ढंग नहि जनै छै,
0: प्रायः लोक एहन अछि देखबामे अबैत अछि जे वृद्धावस्थामे एहिपर ध्यान नहि दऽ पबैत छथिन, लेलहुँ खा लेलहुँ बुझलियै हम आहार लऽ लेब, तऽ इहो नहि हेबाक
1: चाही। नहि एकदम नहि।
2: उग्ना भाई, एखन हमरा लोकनि सुनि रहल छलहुँ बुजुर्ग एवं योगके महत्व भेंटवार्ता कार्यक्रम डॉक्टर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव आ हुनकासँ भेंट कऽ रहल छलाह शंकर कुमार चौधरी।
3: आ विजय भाई, आब हमरा लोकनि सुनैत छी प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, तऽ सुनल जाय।
2: सुनल जाय।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

कैसे हैं बिहार और झारखंड वालों, एक बार फिर से आपका दोस्त राजेश आ गया आप सबों के बीच में। सोमवार का दिन है और आज के दिन इसी मीटर पर आकाशवाणी के आप सुनते हैं बुनियाद। जी हाँ, बुनियाद एक ऐसा कार्यक्रम जो आप युवाओं के लिए एकदम हिट साबित हो रहा है। हम आपकी बुनियाद को मजबूत करना चाहते हैं और जिस पर जो पूरी इमारत लिखी जाए ना, वो एकदम मुकम्मल हो। अच्छा रोजगार, अच्छा पैसा, अच्छी जिंदगी, सब कुछ आपको मिल सके। और इस बुनियाद कार्यक्रम में हम बातें करते हैं रोजगार, जी हाँ रोजगार की। और रोजगार मिलती है ज्यादातर हाँ आसानी से प्रोफेशनल पढ़ाई करके, विशेषज्ञता हासिल करके, टेक्निकल पढ़ाई करके। और एक मेरा ये जो सेंटेंस है ना, ये जो लाइन है ना, बहुत पॉपुलर हो रहा है कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है। अगर जो आपने की टेक्निकल पढ़ाई तो आपके जीवन में सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जी हाँ, और ये बुनियाद कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं एक वैसे संस्थान, एक वैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से जो टेक्निकल पढ़ाई का हब है और ये अपने बिहार के जमुआर में है, रोहतास में है, सासाराम में है, और जिसका नाम है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय से आप टेक्निकल पढ़ाई कर सकते हैं। इसके वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं और वेबसाइट का पता है www.gnsu.ac.in। और जो अगर फोन करना चाहें तो सबसे पहले हम एक टोल फ्री नंबर है वो बता रहे हैं, नंबर नोट करें 1800 121 0051 1800 121 0051। और दूसरा जो नंबर है मोबाइल का वो नंबर है 9431899002। पिछले सप्ताह अवनीश रंजन थे हमारे साथ और हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स की चर्चा की थी, बीएड स्पेशल एजुकेशन। हमने कहा बीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड सब कोई करना चाहता है ना, करना चाहता है और शिक्षक बनना चाहता है या फिर आगे निकलना चाहता है, लेकिन बीएड स्पेशल एजुकेशन की बातें हमने की थी जो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में होता है। पूरे बिहार और झारखंड से रिस्पांस आए हैं। हाँ, उन्होंने डाल्टेनगंज से मोहन यादव ने लिखा है कि बीएड

0: स्पेशल एडुकेशन और बीएड में, हाँ, क्या क्या अंतर है, या दोनों के बारे में एक बार फिर से बताइए, क्योंकि मैं कार्यक्रम सुन रहा था और सुनते सुनते ये जो जवाब था वो निकल गया, हम फॉलो नहीं कर पाए। इसी तरीके से भागलपुर से, पूर्णिया से, हाँ, इवन सासाराम से भी, हाँ, फोन कॉल्स आए हैं इसी तरीके के सवाल के लिए। तो चलिए हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन आपके डिमांड पर हम एक बार फिर से अवनीश रंजन जो हमारे साथ बने हुए हैं कार्यक्रम में, हम उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि बीएड और बीएड स्पेशल एडुकेशन के बारे में हमें जानकारियां दें एक बार फिर से, जिससे हम आपकी मदद कर सकें।
1: अब जो स्टूडेंट्स बीएड कोर्स करना चाहते हैं, उनके मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि दो अलग अलग ये कोर्स क्या है, तो मैं बताना चाहूँगा कि एक समय ऐसा था जब दो अलग अलग बीएड कोर्स चलते थे, और जिसमें था कि एक वैसे बीएड जो सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों को पढ़ाने के टीचर के रूप में ट्रेंड होते थे, और दूसरा बीएड जिसमें कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, जिन्हें जो कोई मानसिक रूप से कमजोर है या देखने में उनको दिक्कत हो रही है या सुनने बोलने में दिक्कत है, उन बच्चों के जो विशेष शिक्षक होते थे उनकी ट्रेनिंग होती थी। ये आज से करीब 4 साल 5 साल 8 साल पहले ये कॉन्सेप्ट था। अभी सरकार ने ये निर्णय लिया कि चूंकि हमारे सारे, जब से सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान पूरे भारत में लागू हुआ, तो उसके बाद सरकार का ये निर्णय हुआ कि जो टीचर होंगे स्कूल के, जो भी टीचर होंगे, वो सारे इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के ट्रेंड होने चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम का मतलब ये हुआ कि वैसा विद्यालय जहाँ पे सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे जो स्कूल के फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में शामिल होने के लायक हैं। तो अब जो स्पेशल एजुकेशन वाले जो बीएड हैं, जो जिन्होंने किया है कोर्स को, वो सामान्य विद्यालयों में भी सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड होते हैं, और वो टीचर दोनों बच्चों को एक समान रूप से पढ़ा सकते हैं।
0: बहुत खूब, आपने सारी चीजें एक बार फिर से अच्छे से बता दी, और हमें उम्मीद है कि पूरा बिहार और झारखंड जो सुन रहा है और बीएड करना चाहता है, एक बार जरूर बीएड स्पेशल एडुकेशन की तरफ देखेगा। अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं बीएड स्पेशल एडुकेशन में। आप जो कॉमन आदमी है उसके लिए, कॉमन बच्चे हैं उसके लिए तो काम कर सकते हैं, चैलेंज बच्चों या डिजेबल बच्चों के लिए भी आप काम कर सकते हैं। सर्विस की भावना ज्यादा है, सारा कुछ इसके अंदर है। जी हाँ, ये गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में ये कोर्स होता है। हम नंबर बता दे रहे हैं, आप चाहें तो बात कर सकते हैं। नंबर जो टोल फ्री नंबर है हमारा 1800121051, 1800121051, और दूसरा जो नंबर है 9431899002, ये नंबर है। आगे बढ़ें बीएड स्पेशल एडुकेशन के बारे में, आगे बढ़ें उससे पहले आपको याद दिला दें युवा साथियों कि हमने तीन नए कोर्सेज की चर्चा की थी जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया था, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, दूसरा कोर्स था परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, और तीसरा कोर्स था बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। इसकी चर्चा हमने इस बुनियाद कार्यक्रम में की थी, आपके रिस्पॉन्सेस आए हैं, लेकिन सच बताऊं तो जितना आना चाहिए उस हिसाब से नहीं आए, शायद आप ये कोर्स को समझ नहीं पाए, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन ये हॉट केक है, एक बार फिर से बता देते हैं, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ये इसकी प्लेसमेंट होती है। इसी तरीके से परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है और बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज है, सीट बहुत कम है। इसी नंबर 1800121001 या 9431899002 इस नंबर पर आप बात करके जानकारियां ले सकते हैं। बहरहाल अवनीश जी, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के बारे में जरा लोगों को बताइए, वहां ये कोर्स होता है, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें जितनी जानकारी हम दे सकते हैं गागर में सागर भर दीजिए।
1: मैं बताना चाहूंगा कि गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी रोहतास जिले, बिहार के रोहतास जिले के जमुआ में स्थित है, और ये करीब 100 एकड़ में फैला हमारा यूनिवर्सिटी है, जिसमें कि बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज संचालित होते हैं, जिसमें हमारा ये फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस भी है। फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस के ही अंतर्गत ये 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन के 2 स्पेशलाइजेशन के साथ, 2 विशेषज्ञता के साथ बीएड की पढ़ाई होती है। एक इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी, जिसे हम बौद्धिक अक्षमता कहते हैं, और दूसरा हियरिंग इंपेयरमेंट, मतलब जिनको सुनने या बोलने में

0: समस्या है बच्चों की, उनके शिक्षक की ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है। हमारे यहाँ भारतीय पुनर्वास परिषद जो भारत सरकार की वैधानिक संस्था है वहाँ से मान्यता प्राप्त है हम लोगों का यहाँ। और इसके अलावा हमारे जो फैकल्टी हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स को, टीचर ट्रेनीज को पढ़ाते हैं, वो वेल क्वालिफाइड हैं, उनके पास अच्छी डिग्री है और इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। साथ साथ हमारे हमारे ही कैंपस में नारायण वर्ल्ड स्कूल है, जो चूंकि टीचिंग प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है टीचर्स को अपने ट्रेनिंग के दौरान, तो उनको प्रैक्टिस के लिए भी हमारे कैंपस में स्कूल है, जो इंक्लूसिव स्कूल है, जिसमें कि सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ते हैं। हमारे कैंपस में नारायण केयर बाल पुनर्वास केंद्र भी स्थापित है, जहाँ पे इस तरह के बच्चे थेरेपी के लिए आते हैं और स्पेशल एजुकेशन के लिए आते हैं। जब ऐसे सेटअप में, स्पेशल सेटअप में, जहां इन बच्चों को अलग से स्कूल के अलावे भी अगर उनको सपोर्ट की जरूरत है तो उस तरह की सेंटर्स हैं। तो जो स्टूडेंट यहां एडमिशन लेंगे बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले कोर्स में, उनको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भी व्यवस्था हमारे यहां है, थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन के लिए लैब उन हमारे पास अवेलेबल है, हमारे यहाँ बच्चे अवेलेबल हैं जिनके ऊपर बच्चे उनको ट्रेनिंग के दौरान उनको ऑब्जर्वेशन करने के लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन असेसमेंट करने के लिए भी व्यवस्था हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैंपस में ही हॉस्टल अवेलेबल है, लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल है। हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी के माने भोजन उपलब्ध कराने वाली मेस है, जिसमें कि जो भी बच्चे रहते हैं हॉस्टल में उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट, ग्रीन इन्वायरमेंट मिलता है, एक सेफ्टी और सिक्योरिटी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा वैसे लोगों से जिन्होंने प्लस टू किया है इस बार साइंस या आर्ट्स में, वो एक बार हमारी यूनिवर्सिटी को विजिट करें, हमारे वेबसाइट पर भी जाएँ और फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस को के साइट को देखें और हमारे प्रोग्राम्स को समझें, हमारे पूरे फैसिलिटी को एक बार देखें। और मैं अपील करूंगा कि वो एडमिशन अगर लेते हैं तो मैं अपनी तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूशन के, अच्छी यूनिवर्सिटी को में एडमिशन लेंगे और उनकी अच्छी पढ़ाई के साथ एक अच्छे मार्क्स के साथ डिग्री लेकर निकलेंगे। जब वो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पार्ट उनका बहुत स्ट्रांग होगा और जहां चाहे वो जॉब कर सकते हैं या प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं।
1: मजा आ गई लवनीश जी, वाह, बहुत पूरी तरीके से आपने खोल के बता दिया। लेकिन आपने बाद में रोजगार की बात कही, यहाँ एक सहज जिज्ञासा है, पढ़ाई करने के बाद एक अच्छा रोजगार सारे यूथ चाहते हैं, गार्जियन भी चाहते हैं, अगर हमारा बेटा भी हो तो हम चाहेंगे पढ़ने के बाद रोजगार लगे, यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या व्यवस्था है?
0: जी, हमारे यहाँ अलग से एक प्लेसमेंट सेल है जिसमें कि हमारे वैसे लोग जो हमारे यहाँ से पढ़ के निकलते हैं उनके लिए हम लोग प्लेसमेंट के लिए ड्राइव चलाते हैं। बहुत सारी एजेंसीज हैं खासकर जो इस फील्ड में काम कर रही है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की एजेंसीज है जो हमारे यहाँ आती है और इन लोगों के का इंटरव्यू लेके और उनके को सेलेक्ट करके और अपने यहाँ ले जाती है और अच्छे पैकेज पे उनको जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है।
1: अच्छा, एक बात बताइए, आपके यहाँ कैंपस में नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी है, तो क्या आप अपने बच्चों को या आपके यहाँ से जो पढ़ के निकले आप अपने यहाँ भी प्लेसमेंट देते हैं उनको?
0: जी, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जो हमारे बच्चे हमारे कैंपस में काम करना चाहते हैं तो हम उनको चांस देते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब हमने अपने बच्चों को एक हाई एजुकेशन दिया है, एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन दिया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी, तो मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे हम लोगों के यहाँ पहले ऑब्जर्व हों। अगर वो अपने एरिया में काम करना चाहते हैं तो हम लोग उनको वो भी मदद करते हैं कि आप जिस राज्य में या जिस शहर में काम करना चाहते हैं तो हमारे लिंक्स हैं, हम लोग उनको वहाँ भी रेफर करते हैं और वहाँ जाके वो जॉब करते हैं।
1: अवनीश जी, रोजगार से संबंधित एक और हम जानकारी चाहते हैं कि स्कूलों में सब बच्चे एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ भी अपॉर्चुनिटी बीएड स्पेशल एडुकेशन वालों की बढ़ी है क्या?
0: सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान के आने के बाद जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वो सबको सरकार की मैंडेटरी है कि वो इंक्लूसिव सेटअप में उस स्कूल को रखना है, मतलब कि ऐसा स्कूल जहाँ पे सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे, तो उस विद्यालयों में इन शिक्षकों की भारी मांग है। प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, चाहे वो सीबीएसई के स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो या और दूसरे प्राइवेट विद्यालय हो जैसे आईसीएसई और सीबीएसई के स्कूल हैं, वो सारे जगह पे मैंडेटरी है कि इन तरह के टीचर्स को उनकी बहाली कंपलसरी है, रखनी है उनको और उनका वहाँ स्कोप है जहाँ वो एज ए टीचर काम कर सकते हैं।
1: वाह, बहुत खूब, थैंक यू अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल आए तो आपसे जरूर पूछेंगे, आपको बुलाएंगे इस कार्यक्रम में। तो साथियों, पूरा बिहार और झारखंड आपने सुना पहले कोर्स के बारे में, बीएड और बीएड स्पेशल एडुकेशन के बारे में, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के बारे में, और लंबी बातचीत हुई।

0: जॉब को लेकर, हर तरफ जॉब ही जॉब है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बात कर सकते हैं इस नंबर पर 1800 121 0051, 1800 121 0051, और दूसरा नंबर 9431899002, ये नंबर है। और इंटरेस्टेड होना भी चाहिए बीएड स्पेशल एडुकेशन के लिए। और इसके अलावे आज ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आ गई है युवा साथियों, बस गौर करने की जरूरत है, आपका इंटरेस्ट किस तरफ है ये जानने की जरूरत है। अपने बिहार में टेक्निकल पढ़ाई वाला यूनिवर्सिटी है जहां 13-14 अपॉर्चुनिटी है। जैसे अगर आपने बायोलॉजी के साथ किया है तो मेडिकल है, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। इसके अलावा फार्मेसी है, पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, नर्सिंग के कोर्सेज हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर है, आप जा सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल पढ़ाई में आप लॉ, 5-year law कर सकते हैं। इसके अलावे भी लाइब्रेरी साइंस, बीटेक, आईटी, न जाने कितने कोर्स हैं, बस जरूरत है ध्यान देने की। और नंबर वही 1800 121 0051 और 9431899002। थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम बुनियाद पूरे बिहार और झारखंड के बच्चों के लिए राजेश को लेकर आने का मौका दिया। चलते हैं, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
2: उगना भाई, एखन हमरा लोकन सुन रहल छलहुँ प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। आब हमरा लोकन के खेती गृहस्थी कार्यक्रम में हमसब प्रवेश कऽ गेल छी। गाम घर कार्यक्रम सम्पन्न भेल, आब हमरा लोकन खेती गृहस्थी कार्यक्रम में।
3: खेती गृहस्थी में हमरा लोकन स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकन के स्वागत करै छियनि। एहि कार्यक्रम में हिनका लोकनिक लेल आइ लऽ कऽ आयल छियनि किछु गीत नाद, जाहिमे हमरा लोकनि सेहो सुनब, एकर संगे गपशप करब मौसम संबंधी। जे स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकनि के परिस्थिति ओकर जनतब देबनि। एकर संगे समसामयिक जे कृषि कार्य ओहो गप करब। एहि सबसँ पहिने किछु दू टॉपिक कऽ लैत छी। विजय भाइ, हमरा लोकनि जनैत छी जे तिलहनी फसिलमे अंडी बड़ नीक फसिल मानल गेल अछि, कारण व्यावसायिक दृष्टिकोणसँ एकर बाजारमे सतत मांग बनल रहैत अछि। एकर कतेको प्रकारके उत्पाद बाजारमे उपलब्ध अछि, जेना अंडी के तेल, अंडी के खल्ली बनैत अछि जकरा खाद के रूप में हमरा लोकन व्यवहार करै छी गमला सब में। एकर संगे कतेको प्रकार से अन्य काज में सेहो अंडी के हमरा लोकन व्यवहार करै छी, मुदा ई तखने भ पायत जखन कि एकर खेती हमरा लोकन आधुनिक ओ वैज्ञानिक विधि से करब।
2: ठीक गप कहलिए उगना भाई। देखियो उगना भाई, जे अंडी भारतक एकटा महत्वपूर्ण ई व्यापारिक तिलहनी फसल अछि, एकर क्षेत्रफल आ उत्पादन में देशक विश्व में प्रथम स्थान अछि। अंडीक तेलक भारतीय किस्म में 48% धरि तेल होइत अछि। एकर उत्पादन लेल गर्म आ नम जलवायुक आवश्यकता होइत अछि, जे देश में बेसी अनुकूल होइत अछि। अंडी के बीया सँ प्राप्त तेलक औद्योगिक महत्व अछि, एकर उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यक लेल सेहो कयल जाइत अछि। आ एकर सिंचाई में अंडीक प्रारंभिक अवस्था में बेसी पानिक आवश्यकता नहि होइत अछि, मुदा शुष्क अवस्था में लंबा समय धरि 20-25 दिन अधिकतम वृद्धिक समय सिंचाईक आवश्यकता होइत अछि। अंडीक कतार में दूरी में बढ़ाकर 5-8 फीट कयला सँ शुरुआती 4-5 माह के अंतर फसल एकर खेती जे बड़ बेसी सफल आ लाभदायक पायल गेल अछि। एकर संगे मूंग, मूंगफली, तिल, राहर, टमाटर, मुरई, गाजर आदिक अंतर फसल विधि विभिन्न राज्य में प्रचलित अछि।
3: ठीके कहलहुँ,

0: तो ई अंतर्वर्ती फसल कहला सा हमरा लोकन के ई लाभ होइत अछि विजय भाई जे मुख्य फसल तो भेटते एकर संग जे एकरा संग हमरा लोकन अंतर्वर्ती फसल के रूप में खेती करै छी लगाबे छी जाय फसल के ओकरो लाभ भेटैत अछि ओकरो सँ आर्थिक आमदनी होइत अछि तैं अंतर्वर्ती फसल के मुख्य फसल के संग सेहो लगेबाक चाही।
1: आ देखियौ गुना भाई एकर जे उन्नत किस्म है ओकर निक पैदावारक लेल अपन क्षेत्रक जलवायु के अनुसार प्रमाणित संकर या हाइब्रिड बीजक चुनाव करी। संकर अंडी उदा GCH7 DCH 177 क्षेत्र के आधार पर कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा अनुशंसित किस्मक एकर चयन करी। तेसर भेल बौगक तरीका आ समय, तो बौगक समय जुलाई से अगस्त धरि खरीफक मौसम बौगक लेल सबसे उपयुक्त अछि। एकर दूरी सिंचित क्षेत्र में लाइन से लाइनक दूरी 4 से 5 फीट आ पौधा से पौधा के दूरी 3 फीट रखना चाही। एकर बीजो उपचार अछि बाग से पहिने बीजक कार्बेंडाजीम या ट्राइकोडर्मा एकर उपचारित अवश्य करी।
0: ई उपचारित करवा के बीया के रसायन भेल तो एकरा मात्रा पर सेहो ध्यान दी।
1: हाँ हाँ, आ एकर देखियो जे एकर जे सिंचाई या उर्वरक जे है बौगक समय खेत में सरल गोबरक खाद 4 से 5 टन प्रति हेक्टेयर दी। अंडी के बेसी पानिक आवश्यकता नहीं होइत अछि, साल में केवल 5 से 6 सिंचाई का आवश्यकता होइत अछि। एकर जे ड्रिप सिंचाई विधिक उपयोग है ओ कयला सँ पानिक भारी बचत आ उपज में वृद्धि होइत अछि। एकर जे उत्पादन आ लाभ होइत अछि ओ उन्नत तरीका सँ खेती कयला पर अंडीक फसल लगभग 150 से 200 दिन में पाक कर तैयार भऽ जाइत अछि कि नहि?
0: ठीके कहलहुँ।
1: आ प्रति हेक्टेयर औसत उपज 25 से 35 क्विंटल धरि आसानी से प्राप्त कयल जा सकैत अछि। एकर सिंचाई आ खरपतवार नियंत्रण ई एक शुष्क आ कम पानि वाला फसल अछि।
0: आवश्यकता विजय भाई कमौनी निकौनी फसल में बड़ आवश्यक भऽ जाइत अछि, कारण कमौनी निकौनी नहीं कयला सँ अवांछित जे खर पतवार रहैत अछि ओकरा में वृद्धि होइत अछि, ओकर सभक विकास होबय लगैत अछि। परिणाम स्वरूप फसलक जे पोषक तत्व ओ प्राप्त करय लगैत अछि। तो अवांछित खर पतवार के रहला सँ जंगली घास पात के रहला सँ ओकर पोषक तत्व मुख्य फसल के ओकरा में चल जाइत अछि। परिणाम स्वरूप जे फसलक उपजा मनोनुकूल नहीं भऽ पबैत अछि, तैं बेर बेर पर फसलक नीक उपजा लेबाक लेल हमरा लोकन के कमौनी निकौनी करैत रहबाक चाही।
1: बड़ नीक गप कहले उना भाई। आ आवश्यकता अनुसार उना भाई देखियो बरखा नहीं भेला पर एकर सिंचाई करी। आ फसलक शुरुआती 40 से 50 दिन धरि खेतक बिल्कुल साफ आ खरपतवार सँ एकरा मुक्त राखी। एकर तुराई आ उपज जे अछि जखन उगना भाई अंडी के गुच्छ भूरा रंगक होमय लागे आर फली सूखय लागे तखन एकरा तुराई करी। आ सूखला के बाद ओकरा डंटा सँ पीट कऽ या अंडी थ्रेसर के मदद सँ बीया के अलग करी। सही तरीका से खेती केला पर एक हेक्टेयर में लगभग 25 से 30 क्विंटल उपज प्राप्त भ जाइत अछि। तो उगना भाई
0: ठीक है कहलो
1: एखन हमरा
0: ई अंडी के जे खेती करै छी आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से तो हमरा लोकन के लाभ होइत अछि, ताहि प्रसंग में चर्चा कर रहल छलहुँ। आ आब बेर रहत तो फिर गपशप करब, मुदा पहिने सुनै छी ई
1: सुनी हमारे लोग एकटा गीत अरविंद कुमार झा के स्वर में भोला बाबा गीत सुनी
0: तो सुनी।

0: एखन हमरा लोकन अरविंद कुमार झाक गाओल ई नटारी सुनलो आ आब सुनै छी एगो भेंट वार्ता।
1: हाँ, भेंट वार्ता के बिखैत खरीफ मासक उन्नत खेती पर बातचीत भेंट वार्ता कर छथि चंदन कुमार यादव, हुनका सब भेंट कर रहल छथि देव नारायण यादव।
0: तो सुनल जाए दुनू गोटा के बीच भेल ई गपशप,
1: सुनी।
2: कार्यक्रम खेती गृहस्थी के अंतर्गत आई हम आयल छी सुन्हा गाम। ई गाम वासदेवपुर पंचायत के अंतर्गत सदर प्रखंड के अंतर्गत आबत है। एत के जे किसान के जे देख रहल छी काफी कर्मठ है, देख रहल छी जे चारू कात हरियाली छायल है चौरचाकर में, और एत के किसान काफी जुझारू छथि, मेहनती छथि, परिश्रमी छथि। तो वही क्रम में एत के किसान से गपशप करी। श्रीमान अपने के की नाम भेल?
3: चंदन कुमार यादव।
2: चंदन कुमार यादव जी, अपने खेती बाड़ी करे छे?
3: जी जी करते हैं।
2: कौन कौन फसल के खेती करे छे?
3: हम धान गेहूं मक्का अभी वर्तमान में कर रहे हैं।
2: ठीक है, बहुत निक गप के यहाँ जो है समय के अनुकूल ओना तो देखे रहा छे, कभी तो छे कि समय से पहले चेत किसान। अखनका जो समय है जहाँ एतो के जो किसान है काफी कर्मठ है, और देख रहा छे जो बाद वन में जो अनेको तरहक जो बिया बाल जे एत के किसान खसैने छे, तो बड़ा देख के बड़ा खुशी भाव भेट रहा है। श्रीमान अपने जो खेती जो करे छे, तो अपने जो छे खेती के वास्ते पहले तो अहाँ खेत के तैयारी सेहो करत होबे, खेत के तैयारी कोना की करे छे? हल बैल से करे छे कि ट्रैक्टर से करे छे?
3: अभी वर्तमान में हम ट्रैक्टर से कर रहे हैं, हल बैल सब नहीं कर, इसीलिए
2: हल बैल से अहाँ कर रहा छे। ठीक छे, बहुत सुंदर। देखियो अखनका दौर में जो छे भारतीय कृषि में ओना तो देखे रहल छे जे छे जे वैज्ञानिक दौर चल रहल छे, नव नव तकनीकी जे छे विज्ञान के तरफ से आ रहले है, नया नया जे छे खोज भ रहले है। तो अखनका दौर में कम समय में कम लागत में जो छे यहाँ के जो छे बेसी से बेसी जो हमारे किसान श्रोता लोकन जो छे जे ट्रैक्टरे से खेती करे छथिन, किएक तो लागत कम लगे छे और बेसी से बेसी मुनाफा सेहो होइ छे, तो बेसी से बेसी जे छे अपन जो छे ट्रैक्टरे से काज लऽ रहल छे। श्रीमान खेती करवा से पहिने अहाँ तो खेत के तैयारी तो सेहो करत होबे?
3: जी हम अभी करते हैं कि खेत के अपने जोताई कोराई का, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है इसलिए पहले पटावन देते हैं, उसके बाद खेती का आगे प्रोसेस बढ़ाते।
2: देखियो श्रीमान हमर सबक जो किसान एत को जो है ना मानसून पर टिकल है, माने बरखा भेल तो खेती भेल, बरखा नहीं भेल तो बुझे जो सुखाड़ पड़ गेल। तो ते दुआरे एत के जो किसान छे कभी तो छे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मानसून के साथ जुआ कहल गेल है, जहन बरखा होय छे मानसून वाला किसान के चेहरा पर हरियाली आब जाय छे, कहल जाय छे कि बाप खेती निक जका है। बहुत सुंदर, माने अहाँ खेत के अपन जे छे जोत करके छोड़ देने छे?

0: मानले एना ही खेत जोतला से होइ छै कि जे अखिनका समय में जे कोनो तरह खरपतवार जो रहै छै या कोनो तरह कीट व्याधि रहै छै तो ओ बुझू जे तापमान में जे छै नष्ट भ जाय छै। तो श्रीमान अपने जो खेती करै छियै तो खेती के समय में तो खाद उर्वरक के अहाँ सेहो रखत, तो खाद उर्वरक में अहाँ कोन कोन खाद व्यवहार करै छियै, जैविक खेत के ज्यादा बढ़ावा दऽ रहल छियै या रासायनिक खाद बढ़ावा दऽ रहल छियै?
1: जैविक खाद के अथी बढ़ावा दै छियै क्योंकि रासायनिक खाद के मात्रा कम है कन, माने नहीं आबे गाम घर में, और जैविक खाद माने गोबर उबर लऽ के हम दै छियै कन, आ रासायनिक खाद हमरा घर पर अपने पहुँचे है कन, ओहिमे बेसी महंगा भी पड़े है कन, एहिला हम जैविक खाद के उपयोग करै छियै कन।
0: वाह श्रीमान, बहुत नीक विचार है अहाँ के। देखियो जैविक खाद के जे बढ़ावा अहाँ दऽ रहल छियै आ देबा को चाही, का दौर में जे देखे रहल छी कि अनेको तरह जे बीमारी जो छै रासायनिक खाद के व्यवहार कयला से भऽ रहल छै, चाहे मानव स्वास्थ्य हुए बा कोनो तरह के जीव जंतु, जो रासायनिक खाद के व्यवहार नहि कऽ कऽ जो जैविक खाद के व्यवहार करी तो मानव स्वास्थ्य लेल कल्याणकारी होइ छै। हयौ अखन के ओना तऽ देखल जाय तऽ हमर सबक जे अर्थव्यवस्था रहै पहिने तऽ बुझू जे हमर सबक पूर्वज जे बेसी से बेसी गोबर के गदौस के जे खेत पथार में बाहर करे छ, मुदा दिन प्रतिदिन जो देख रहल छी जे हमर किसान सुता लोकन जो छे माल मवेशी के जो छे विलुप्त कर रहल छ, पाले नहीं चाहे छ, तै दुआरे हमरा लोकन के बेसी से बेसी नीम कोटेड यूरिया के व्यवहार करना चाहिए। मानव के स्वास्थ्य बनले रहत, संग संग आन भी जीव जंतु के सेहो ऐसे कल्याण भ सकत अछि। तो श्रीमान अपने जो जैविक खेती के जो व्यवहार करे छियै तो ओय में जो छे हाट बाजार के मांग जो छे सतखने जो छे जे बनल रहे छे, तो अहाँ जो जैविक खाद के व्यवहार के लिए आ रासायनिक खाद के जो व्यवहार नहीं कर के अहाँ जैविक खाद के जो व्यवहार कर रहे छे तो आई लेल जो छे अहाँ माल जाल तो सेहो अहाँ पालने होबे?
1: हाँ माल जाल पालने छे, कमाई उमाई ओते नहीं छे ना, तो इसलिए माल जो अथी पा के की कहे दरभंगा सब में दूध पहुँचाबे छे और जे गोबर बचे से हम खेती करे छे।
0: कौन कौन माल जाल अहाँ पालने छे?
1: गाय भैंसी पालने छे।
0: देखियो ओना जो छे सरकार के सेहो आई दिस जो छे बेसी से बेसी बढ़ावा आ अनेको तरह के योजना सेहो चलाओल जा रहल अछि, जे सरकार के जे व्यवस्था छे जे किसान के बेसी से बेसी जो छे सहायता भेटे, एहि लेल जो छे बहुत तरह योजना चलाओल जा रहल अछि, जाहिमे जो छे किसान लोन योजना सेहो देल जाइ छे, ओहि लेल जो भेड़ पालन बकरी पालन के लेल सेहो सरकार समय समय पर जो छे जे योजना सब दऽ रहल छै। आवश्यकता अछि जागरूकता के, हमर किसान श्रोता लोकनि जो अछि जागरूकता के बुझथिन समझथिन और योजना चला कऽ सरकार के जे छै ऋण सरकार से लोन लऽ कऽ जहन बेसी से बेसी माल जाल पालै छथिन तऽ और बेसी से बेसी लाभदायक भऽ सकत अछि। अच्छा श्रीमान अपने जो माल जाल जो रखने छै बथान पर तो देख रहल छी जे अखन प्रचंड सन रौद पड़ रहल छै, तो प्रचंड सन रौद में अहाँ माल मवेशी के कोना रख रखाव करै छी, मतलब की करै छी माने गर्मी से बचाव के लिए?
1: अभी वर्तमान में की कहे कन जना घर बांध देलियै ओय में पथियालो स्टोर के घर छै ओय पर पानी दै छियै कन, ओय में माल जाल रहै कन और खेत सब छै तऽ ओय में सुजान जान बहु को दिन छियै कन और के काट खट के खियाबै छियै कन, ऐसे चलै है कन।
0: वाह बहुत सुंदर, मारा चारा करे कॉल छे आम के आम आ गुठली के दाम, कितना सुंदर अहाँ के विचार है खेती पथारी के प्रति अहाँ के लगाव है। देखियो जना अपने स्वास्थ्य के ध्यान रखे छे ठीक ओना ही जो हमरा लोकन के जे छे माल जाल के प्रति सेहो से न रखबाक चाहे, किएक तऽ माल जाल छे निमूधन होइ छे, ऊ नहि बुझै छे कि गर्मी छे कि जाड़ छे कि बरसात छे, जना अपने रंग बिरंग के खाना खाइ छे अपने स्वास्थ्य के रक्षा लेल ठीक ओना ही माल जाल के प्रति सेहो हमरा लोकन के ध्यान राखे पड़त, किएक तऽ माल जाल से बहुत रास हमरा लोकन के जो छे लाभ भेटत अछि, जना दूध दही पनीर मक्खन एहि तरह के लाभ जो छे हमरा लोकन के समय समय पर भेटत रहै छे, ठीक ओना ही जे हमरो लोकन के जे छे माल जाल के प्रति चारा फसल के प्रति हमरा लोकन के ध्यान रखबाक चाही। बहुत नीक गप कहलो हैं, यहाँ अपन जे छे माल जाल के लेल खेत पथार में जे छे जनेरा कयने छी, बरसीम कयने छी, बाजरा कयने छी, तो ये सब देखियो ये सब कैला से तो अहाँ के माल जाल के स्वास्थ्य नीक रहबे करत, संग संग जो छे ओकर दूध के जो छे सेहो बढ़ावा भेटे छे, तो तै दुआरे हमरा लोकन के सदखन ई प्रयास करबाक चाही, बेसी से बेसी जो छे मूंग के खेती के बढ़ावा देबाक चाही, बाजरा के बरसीम के आज तक चारा फसल के जो छे व्यवहार करे छी, तो ओइसे होइ छे कि अहाँ के खेत के उर्वरा शक्ति सेहो बनल रहत, किएक तऽ अखन कदवा के समय आबि रहल छै भदबरिया के समय आबि रहल छै, चारा फसल तऽ अहाँ माल जाल खिला दै छै, संग संग जे ओकरा जोति कोरि के जब कदवा विधि से जे ओकरा खेत में मिला दै छियै तऽ अहाँ के खेत के लेल सेहो एकटा रामबाण भऽ जाइ छै, खेत के ताकत भेटै छै, तऽ बहुत नीक विचार अछि। श्रीमान अपने जो माल जाल के जे छै दूध दही के तऽ सेहो अहाँ के देखे

0: छी, दरवाजा पर देख रहल छी जे अनेको तरहक जे जर्सी फ्रिजियन माल मवेशी सेहो पालने छी, तऽ एकरा जे छै गर्मी मास मे छै 2 से 3 बार अहाँ नहा दै छियै?
1: हाँ, 2 से 3 बार नहाबै छियै।
0: आ खान पान मे जे छै केना की करै छी?
1: जनेरा दै छियै, एखन की कहै घास सब दै छियै कंचे अथी मे खेत मे, तऽ ओ सब लाबै छियै आ सबके मिला के दज दै छियै, ओहिमे गुल्ली उल्ली सब मिला दै छियै तब दै छियै।
0: अच्छा, माने जे छै चारा के रूप मे ओकरा दै छियै। अच्छा, एकर जो गोबर कृषि जे होइ छै, गोबर कृषि की करै छै? माने ओकरा जलावन मे काज करै छै या खेत मे पटाबै छियै?
1: कुछ जलावन में काम करे आ कुछ खेतों में देखिए, क्या की खेत घरों में जलावने पर खाना सब बनते ना।
0: मतलब अखन का समय तो ओनाइयो देखे रहल छे कि सरकार के जो पोजीशन है अखन का जो गैस के, ओना तो गैस के जो समस्या छे, तो हमरा लोकन पुनः जे हमर पूर्वज सब जो करे छला वही स्थिति में आई हमरा लोकन फेनो आब गेल है। बहुत निक विचार जे अहाँ जो छे गोइठा पर लकड़ी पर जहाँ भोजन बनाबे छी, तो वैसे जो छे गैस के सेहो बचत होइ छे। बहुत निक विचार है। तो श्रीमान अपने जो गोबर के दो जहाँ खेत पटाबे छे, तो एहि लेल जे छे अपने व्यवहार करे छे कि एहि लेल आनो किसान के अहाँ सलाह दे सके छी? एला से अपने सके आर किसान के की सलाह देबन?
1: किसान के ई सलाह देबे कि से जना खाद सब खाद नहीं मिले, रासायनिक खाद नहीं मिले, तो एहि खाद के उपयोग क के अपना खेत में दियो, अहाँ के खेत फसल आगे बढ़त। गन
0: बहुत सुंदर जे भारतीय अर्थव्यवस्था में जो हमारे लोग पुराना पद्धति के जो अपना के चली, तो बेसी से बेसी लाभ भ सकत है। तो ते दुआरे हमरा लोकन के सदखन आन किसान सलाह श्रोता लोकन के से सलाह देबन कि बेसी से बेसी रासायनिक खाद के व्यवहार नहीं क के जैविक खेती के जो व्यवहार करथिन, तो अवश्य जो हमार सभक जो छे खेतक जे पोषक तत्व भेटबे करत, संग संग जो छे मानव स्वास्थ्य लेल सेहो निक भ सकत है। श्रीमान ऐ खेती गृहस्थी विषय पर गपशप क के बहुत निक लागल, ऐ लेल अपने अपने के बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ ठीक है, धन्यवाद।
2: हाँ उदना भाई, एखन हमरा लोकन सुन रहल छलौं
3: भेंट वार्ता
2: खरीफ मास की उन्नत खेती पर बातचीत। आ भेंट वार्ता कर छला चंदन कुमार यादव, हुनका सब भेंट करल छला देव नारायण यादव, तो इनका हम सब बहुत रास धन्यवाद दै छियनि। आ देखो उगना भाई, आ हमरा लोकन आजुक मौसम पूर्वानुमान के बारे में जानकारी दऽ दियन किसान भाई लोकन के। तो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 11 जुलाई से 15 जुलाई 2026 धरिक मौसम पूर्वानुमानक अनुसार उत्तर बिहारक अधिकांश स्थान पर 11 से 13 जुलाई के बीच मध्यम वर्षा हेबाक अनुमान अछि। समस्तीपुर, सिवान, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण जिला में किछु स्थान पर भारी वर्षा हेबाक संभावना अछि। वर्षापात के समय कतौ कतौ वज्रपात भ सकैत अछि तथा तेज हवा बहबाक संभावना अछि। पूर्वानुमानक अवधि में ज्यादातर दिन में आसमान में हल्लुक से घना बादल छायल जा सकैत अछि। वर्षाक गतिविधि के कारण एहि सप्ताह अधिकतम तापमान में पिछला सप्ताहक तुलना में कमी रहबाक संभावना अछि। अधिकांश जिला में अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री सी के बीच रहबाक अनुमान अछि, जखन कि बेगूसराय, वैशाली एवं सिवान जिला में ई 34 डिग्री सी से 36 डिग्री सी के बीच रह सकै छै
3: सेल्सियस के बीच।
2: न्यूनतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक संभावना अछि। सुबह में सापेक्षिक आर्द्रता 90 से 96% तथा दोपहर में सापेक्षिक आर्द्रता 50 से 55% के बीच रहबाक अनुमान अछि। तो ई छल मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान।
3: आ अहिक संग आब आजुक खेती गृहस्थीक बेर सम्पन्न भऽ रहल अछि, तस्ने किसान श्रोता भाई बहिन लोकनि से चलबाक आज्ञा लै छियनि।
2: गोर लगै छी उना भाई,
3: खूब प्रसन्न रहू विजय भाई।
4: ये था हमारा ग्रामीण प्रसारण। आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव घर और खेती गृहस्थी। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। हमारे अगले प्रसारण के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: पापा लाइए 3,000।
4: क्यों भाई?
3: मेरी पॉकेट मनी।
4: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
3: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
4: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
3: अपना मोबाइल लाओ।
4: ले ले।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: पशुपालक भाई बहन, अत्यधिक गर्मी में पशुओं के रख रखाव का कृपया ध्यान रखें।
8: पशुओं को लू से बचाने के लिए छायादार जगह पर रखें। पशु घर को ठंडा रखने के लिए जूट की टाट लटकाकर उसे गीला रखें। उन्हें दिन में 2 से 3 बार नहलाएं, 3 से 4 बार ठंडा और साफ पानी पीने को दें। खाने में अजोला घास, चोकर और जौ की मात्रा बढ़ा दें। चराने के लिए सुबह जल्दी और शाम को देर से भेजें। लू लगने पर नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें।
9: डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
10: और इस गीत के बाद
11: छाया की।

0: is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.
1: Namaskar.
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की समय सीमा समाप्त।

0: भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा, जन सुराज के प्रशांत किशोर और जन शक्ति जनता दल की वीणा मांडवी ने दाखिल किया पर्चा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार हेली और एयर टूरिज्म सेवा की शुरुआत की, अनुदानित दर पर लोग ले सकेंगे सेवा का लाभ। पटना में कल से शुरू होगा राज्य स्तरीय सहयोग शिविर, मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे शिकायतों की समीक्षा। और मौसम विभाग ने कल दरभंगा, सुपौल, भागलपुर, किशनगंज, मधुबनी और सहरसा समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नामांकन की समय सीमा आज समाप्त हो गई। नामांकन के आज अंतिम दिन भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा और जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके अलावा जन शक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मांडवी ने भी अपना पर्चा भरा। इससे पहले उम्मीदवारों ने रोड शो भी किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि भाजपा उम्मीदवार के नामांकन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सराफ की, पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।
1: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जिन अन्य प्रमुख उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं उनमें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तनवीर आलम, प्रोटेस्ट ब्लॉक इंडिया के प्रेम शंकर प्रसाद, प्रगतिशील जनता पार्टी के मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव और निर्दलीय सिकंदर कुमार तथा मिथिलेश कुमार शामिल हैं। एक किन्नर उम्मीदवार प्रियांशु राज ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। उपचुनाव के लिए उम्मीदवार 16 जुलाई तक नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 30 जुलाई को होगा जबकि मतगणना 3 अगस्त को कराई जाएगी। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सत्यम कुमार।
0: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में नामांकन के बाद जन शक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मांडवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उनको पटना की एक अदालत ने जमानत दे दी। हमारे संवाददाता ने बताया कि धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। इस बीच जन शक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा कि वीणा मांडवी को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया।
2: साजिश है, सरकार की तरफ से साजिश किया गया है। हमारे कैंडिडेट को जान बुझकर फंसाया गया है और ऐसा कोई मामला नहीं है। और ये आदि आबादी की बात कर रही थी और ये हमारा कैंडिडेट जो वीणा मांडवी जी है, इनका लोकप्रियता भी है और अपनी पार्टी जो जेडी जनशक्ति जनता दल की कैंडिडेट हुई है तो षड्यंत्र कर रहे हैं लोग।
0: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के साथ ही राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को किसी भी दल से कोई चुनौती नहीं है।
3: बांकीपुर की जनता बीजेपी के समर्थन में रही है, जंगल राज से लालू जी के खिलाफ रही है। हमारा एक बहुत प्रामाणिक सरल कार्यकर्ता बूथ का कार्यकर्ता खड़ा है, जनता निर्णायक मतों से जिताई।
0: जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन ने दावा किया कि बांकीपुर से भाजपा उम्मीदवार को भारी मतों से जीत मिलेगी।
4: मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे आसान जीतने वाली सीटों में से एक बांकीपुर है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है, इससे ज्यादा अहम क्या है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और एनडीए लड़ रही है। मतदाता सकारात्मक संदेश देंगे।
0: राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता और मंत्री दीपक प्रकाश ने भी दावा किया कि उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को एकतरफा जीत मिलेगी।
5: मुझे पूरा विश्वास है कि जो काम हुआ है केंद्र की सरकार के द्वारा, राज्य की सरकार के द्वारा और पिछले 20 सालों में जो काम हुआ है बिहार में, निश्चित तौर पर जनता उस पर मोहर लगाई। सरकार के काम के ऊपर वोटिंग होगी और जीत बिल्कुल निश्चित है एनडीए कैंडिडेट की।
0: राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता ने कहा कि बांकीपुर की जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है।
6: बांकीपुर विधानसभा की जनता है, उनका भी आशीर्वाद मिल रहा है मुझे और इस बार राष्ट्रीय जनता दल बांकीपुर विधानसभा से जीतेगी। कोई चुनौती नहीं है, सारी चुनौतियां पहले भी थी और फिर भी मैंने फेस किया और बहुत अच्छा समर्थन मिला, इस बार भी मिलेगा और इस बार जीत कराऊंगी।
0: इधर जन सुराज के प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बांकीपुर की जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनने का मन बना लिया है।
7: बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये बिहार में नेतृत्व बदलने का चुनाव है, ये बिहार

0: अहंकार पर अंकुश लगाने का चुनाव है, ये बिहार में चुने हुए प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाने का चुनाव है।
1: प्रदेश में अब पर्यटक हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवाओं का आनंद ले सकेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पर्यटकों के लिए आवागमन को सुगम बनाना और लोगों को बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों का सुविधाजनक अनुभव उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि राज्य के आर्थिक विकास में पर्यटन की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
2: ये हेली टूरिज्म, एयर टूरिज्म या होम स्टे की कल्पना तो सभी जिले में इसको फोकस किया जा रहा है। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझ गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। अभी तो सिर्फ हम लगा रहे हैं, 2100 रुपया आम जनता लगाएगी और 15,000 सरकार देगी। हम जरूर ये चाहते हैं कि हम इसमें प्राइवेट पार्टी को और लाएं। हमारे पास कई एयरपोर्ट सब आ गए और कई जगह हमारे पाइपलाइन में मुजफ्फरपुर, रक्सौल, बीरपुर, सहरसा, बेगूसराय, भागलपुर, राजगीर, कई जगह हम लोग और इस चीज की कल्पना कर रहे हैं।
1: हमारी संवाददाता ने बताया कि यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से शुरू की गई है। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। वर्तमान में साप्ताहिक आधार पर शुरू की जा रही एयर पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा के रूप में विस्तारित किया जाएगा।
3: राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रुपये, पटना राजगीर के लिए 4000 रुपये, पटना वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रुपये और पटना कैमूर के लिए 6000 रुपये में टिकट बुक कर सकते हैं। प्रति टिकट सरकार अधिकतम 15,422 रुपये का अनुदान दे रही है। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राज्य सरकार अब आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर आयोजित करेगी। इसकी शुरुआत कल से मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर स्थित संवाद भवन में होगी। एक रिपोर्ट।
5: यह विशेष शिविर उन आवेदकों के लिए होगा जो जिला स्तर पर आयोजित सहयोग कार्यक्रम में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद समाधान से संतुष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पिछले दिनों बोधगया में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि वे स्वयं के स्तर से चयनित आवेदकों की शिकायतों की समीक्षा करेंगे।
6: सहयोग कार्यक्रम मैंने चलाया, उसमें सब ऑटोमेटिक है, किसी को कुछ नहीं करना है। फिक्स किया कि 30 दिन में ऑर्डर करना है और 30 दिन में यदि किसी ने ऑर्डर नहीं किया तो 31वें दिन उसको सस्पेंशन ऑर्डर देना है, कोई दूसरा काम नहीं करना। और इसके बावजूद यदि लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं कि महीने में एक दिन वैसे लोगों से मिलूंगा जिन लोगों को बिहार के किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी ने न्याय नहीं दिया और सीधा उसको जोड़ूंगा।
5: राज्य स्तरीय सहयोग शिविर के लिए आवेदन सहयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकेगा। आवेदक अपने पहले से दर्ज आवेदन के रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर के जरिए OTP सत्यापन कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। चयनित आवेदकों की शिविर की तिथि, समय और अन्य आवश्यक जानकारी SMS के माध्यम से भेजी जाएगी। अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 1100 के माध्यम से ली जा सकती है। समाचार कक्ष से कामिनी ठाकुर।
1: मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान

0: पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, अररिया, मधेपुरा और मधुबनी जिले में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। पश्चिम चंपारण के मैनाटांड़ में सबसे अधिक 169 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। विभाग ने कल दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश जबकि अररिया, बांका, भागलपुर, किशनगंज, मधुबनी और सहरसा जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
1: दिनांक 14 जुलाई राज्य के दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया एवं सुपौल जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के खगड़िया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी एवं वैशाली जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, बांका, भागलपुर, जमुई, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी एवं सहरसा जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते कोसी और गंडक नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया कि आज दोपहर 2 बजे तक कोसी बराज से 172,435 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।
2: भीमनगर कोसी बराज पर पानी के बढ़ते दबाव को देखते हुए 20 फाटकों को खोल दिया गया है। बाढ़ नियंत्रण बीरपुर के मुख्य अभियंता संजीव शैलेश ने बताया कि पानी को डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोसी नदी के पूर्वी और पश्चिमी तटबंध समेत सभी बांध पूरी तरह सुरक्षित हैं। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी।
0: इधर हमारे बेतिया संवाददाता ने बताया कि गंडक नदी के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वाल्मीकिनगर गंडक बराज से नदी का डिस्चार्ज 1,00,000 क्यूसेक के पार पहुंच गया है। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। बागमती नदी सोनाखान में खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी अभिनेता कुंजन सिंह ने आज आर्म्स एक्ट के एक मामले में गोपालगंज की एमपी एमएलए विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण के बाद अदालत ने दोनों को जमानत दे दी। यह मामला मीरगंज थाना क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से हथियार लहराने का है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने वर्ष 2019 के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में आज बेगूसराय की एमपी एमएलए अदालत में आत्मसमर्पण किया। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें 10,000 रुपए के 2 निजी मुचलकों पर जमानत दे दी। पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भेलानाड़ी पुल के पास 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई। दरभंगा मंडल कारा के सहायक अधीक्षक नंदू कुमार चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इनके खिलाफ पत्नी की हत्या का मामला दर्ज है। इस मामले में न्यायालय ने उनके विरुद्ध वारंट भी जारी किया है। पटना के दीदारगंज से पुलिस ने कृषि विभाग के आयुक्त की बोर्ड लगी कार से 1,00,000 रुपए मूल्य की शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। शेखपुरा की एक अदालत ने मारपीट के 6 साल पुराने मामले में 5 दोषियों को 3-3 साल कारावास और 5 अन्य दोषियों को 2-2 साल कारावास की सजा सुनाई है। अररिया व्यवहार न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से कानूनी सहायता क्लिनिक की शुरुआत की गई है। यहाँ बौद्धिक दिव्यांगता वाले लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की समय सीमा समाप्त। भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा, जन सुराज के प्रशांत किशोर और जन शक्ति जनता दल की वीणा मानवी ने दाखिल किया पर्चा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार हेली और एयर टूरिज्म सेवा की शुरुआत की। अनुदानित दर पर लोग ले सकेंगे सेवा का लाभ। पटना में कल से शुरू होगा राज्य स्तरीय सहयोग शिविर। मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे शिकायतों की समीक्षा। और मौसम विभाग ने कल दरभंगा, सुपौल, भागलपुर, किशनगंज, मधुबनी और सहरसा समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।

0: नमस्कार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
4: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
3: अरे वही अपना 60 रुपया।
4: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
3: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
4: और दूसरा?
3: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
4: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
3: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
8: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है औरंगाबाद जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर।
9: औरंगाबाद जिले के बारून में सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने 11 जुलाई को प्रस्तावित परियोजना स्थल का निरीक्षण करने के बाद बताया कि बारून प्रखंड के मेह और शेखपुरा गांव के निकट 150 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता वाले सोलर पार्क के निर्माण को केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस परियोजना का निर्माण 2 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना के पूरा होने के बाद औरंगाबाद न केवल बिहार के प्रमुख सौर ऊर्जा केंद्रों में शामिल होगा, बल्कि राज्य की ऊर्जा व्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 पर औरंगाबाद और ओबरा में बाईपास की योजना को स्वीकृति मिल गई है। इसके बनने से औरंगाबाद और ओबरा में जाम की समस्या से नागरिकों को राहत मिलेगी। इधर औरंगाबाद पटना सड़क को 4 लेन किए जाने की मांग के मद्देनजर पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह और विधायक डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है। जनप्रतिनिधियों ने लोगों की मांग का समर्थन करते हुए इस सड़क निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा है। ग्रामीण विकास तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर श्रवण कुमार ने आकाशवाणी से बातचीत में राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आधुनिक हाट बाजार विकसित किए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इन स्थानों पर जीविका दीदियों और किसानों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री की जाएगी। डॉक्टर कुमार ने बताया कि इसके लिए नाबार्ड ने आवश्यक धनराशि देने की सहमति दे दी है। जन शिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए मदनपुर प्रखंड के नीमा अंजन पंचायत में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन विधायक प्रमोद कुमार सिंह, जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा तथा पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने किया। इस अवसर पर विधायक प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की पहल से प्रशासन के अधिकारी स्वयं पंचायत स्तर पर पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उनका समाधान कर रहे हैं। प्रशांत कुमार की पुस्तक चरैवेती एक जीवन यात्रा का विमोचन पिछले दिनों औरंगाबाद में आयोजित एक समारोह में किया गया। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह, विधान पार्षद जीवन कुमार, मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दिलीप केसरी और सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा ने संयुक्त रूप से पुस्तक का विमोचन किया। पंजाब नेशनल बैंक के औरंगाबाद मंडल के तहत रोहतास, औरंगाबाद और अरवल जिले में स्थापित 75 बैंक शाखाओं में ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए मंडल प्रमुख कंदर्प कुसुम ने आवश्यक निर्देश दिया है और लगातार बैंक शाखाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने औरंगाबाद जिले में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पटना में उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी से मुलाकात की। श्री सिंह ने इस दौरान उत्तर कोल सिंचाई परियोजना और बटाने जलाशय परियोजना के कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया। मगध विश्वविद्यालय के सबसे पुराने सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज में शैक्षणिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने की पहल की जा रही है।

0: प्राचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मेला जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। रामलखन सिंह यादव कॉलेज में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का संकल्प लिया गया है। प्राचार्य डॉक्टर विजय रजक ने बताया कि महाविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों की ओर से विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर 5000 वृक्ष लगाए जा रहे हैं। जिले में एनटीपीसी लिमिटेड की स्टेज 2 के तहत 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन की कुल 3 इकाइयों के निर्माण कार्य में तेजी आ गई है। क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक सह परियोजना प्रमुख एलके बेहरा ने बताया कि स्टेज 2 के निर्माण कार्य को निर्धारित समय पर पूरा किया जाएगा। इस परियोजना के निर्माण कार्य पर करीब 30,000 करोड़ रूपए खर्च किए जा रहे हैं। एनटीपीसी लिमिटेड और भारतीय रेल के संयुक्त उपक्रम भारतीय रेल बिजली कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर AJ राजकुमार की नियुक्ति की गई है। श्री राजकुमार ने अपना कार्यभार संभालने के बाद कहा कि बिजली उत्पादन के साथ साथ क्षेत्र के सामुदायिक विकास पर भी उनका विशेष ध्यान होगा। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी उपेंद्र नाथ वर्मा ने औरंगाबाद के नए पुलिस अधीक्षक का कार्यभार संभाल लिया है। श्री वर्मा ने जिले में आपराधिक तथा अन्य अवैध गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण के लिए सघन अभियान चलाने और पुलिस गश्त तेज करने का निर्देश दिया है। जिले के दाऊदनगर के रहने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विकास कुमार को पटना में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
1: अभी आप सुन रहे थे औरंगाबाद जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता कमल किशोर।
2: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आप सुन रहे हैं हमारी आज की दूसरी सभा के कार्यक्रम। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश के गाए कुछ दर्द भरे नगमे। ये पहला गीत फिल्म विश्वास से। गुलशन बावरा के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

लीजिए अब मुकेश की ही आवाज में ये गीत सुनिए जिसे लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने, फिल्म का नाम है तीसरी कसम।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश के गाए कुछ दर्द भरे नगमे। यह कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म संगम से। शैलेंद्र के लिखे गीत के लिए धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने।

और अब लीजिए कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवाते हैं मुकेश का गाया, हसरत जयपुरी का लिखा, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया ये गीत। फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे मुकेश के गाए कुछ दर्द भरे गीत। जिन फिल्मों के गीत आप सुन रहे थे वो फिल्में थीं विश्वास, तीसरी कसम, संगम और मेरा नाम जोकर। गीतकार थे गुलशन बावरा, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी, संगीत कल्याण जी, आनंद जी और शंकर जयकिशन। फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया गया। हमारे अगले कार्यक्रम सिंगरहार के लिए थोड़ी इच्छा करें।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है मैथिली में हमारा कार्यक्रम सिंगारहार।
1: नमस्कार, कार्यक्रम सिंगारहारक संग हम छी माला झा। साहित्यिक एहि कार्यक्रम में जत गप होइत अछि कथा वार्ता के, जीवनी के, संस्मरण के, उपन्यास के और कतेको रूप गद्दी के संगई चर्चा मैथिलीक नव कविता के समालोचना के। इस संदर्भ में

ई कहबाक प्रयोजन नहि जे जखन नव कविता जन्म लैत अछि तखन ओहि संग आलोचनाक नव सिद्धांत जन्म लैत अछि आ जखन नव कविक आविर्भाव होइत अछि तऽ हुनक पाछा पाछा नव आलोचक सेहो उपस्थित रहैत छथि। सम्प्रति मैथिलीक नव कविता विकासावस्थामे अछि। जे आलोचक अत्यधिक ऊपर पहुँच गेल छथि ओ एहि नव काव्यक कठिनताके पूर्ण रूपेण नहि बुझि सकैत छथि। यद्यपि नव कवि लोकनि ई बुझैत छथि जे प्राचीन आलोचकके हुनकासँ की अपेक्षा छनि। जाहि निश्चिन्तासँ कवि लोकनि आइ धरि गीत गबैत आ छन्द बनबैत आयल छथि ओ निश्चिन्तता आजुक कविके प्राप्त नहि छनि। ई नव काव्य प्राचीन कवितासँ ओहि तरहें पृथक भऽ रहल अछि जाहि प्रकारे कोनो आगिक चिनगी अग्रासीसँ कात भऽ गेल हुए। प्राचीन आ नव कविताक संबंधक कोनो सूत्र जोड़ब कठिन काज अवश्य छैक परंच असंभव नहि। एहि काजके नव आलोचके सम्पन्न कऽ सकैत छथि। रूप जे हुए मुदा भाव अवश्य हेबाक चाही जेना ई गीत।

0: सुनि रहल छलहुँ ममता ठाकुरके स्वरमे ई गीत। पद्यक विभिन्न रूपके अपन विशेष महत्व होइत अछि, ओहिना कविताक किछु विशेष वातावरण होइत अछि, ओहिमे युगक प्रवृत्तिक प्रतिध्वनि होइत अछि। केओ कहने छथि जे कवि निरंकुश आ वैचारिक रूपसँ स्वतंत्र होइत छथि, मुदा एकर तात्पर्य ई नहि जे कविता बात पीड़ितक प्रलाप थिक। कवि स्वतंत्र छथि कारण हुनक इच्छा पर विषयक कोनो प्रतिबंध नहि रहित अछि, मुदा ओ आकाश कुसुमक सृष्टि कऽ अपन कवि नामके सार्थक नहि कऽ सकैत छथि। कविक अनुभूतिक उद्गार जतेक गंभीर संबंध हुनक जीवनसँ रहित अछि, ओतबे हुनक युगसँ सेहो। जँ युग कविक वाणीमे नहि बजैछ तँ बुझि लेबाक चाही जे कवि भीरु छथि वा दुराग्रही। आजुक कवि अपन समयके सुन्दरतम देखऽ चाहैत छथि आ कामना इएह रहबाको चाही। मरुभूमिमे हरितिमा आनब आ काँटमे फूल प्रस्फुटित करब कविक यथार्थ धर्म थिक। जाहि प्रकारें प्रत्येक वस्तु सरस आ नीरस भऽ सकैत अछि, तहिना कवितामे सेहो दुनू पक्ष संभव थिक। आलोचकके काज नीरसतामे सरसता ताकब थिक, सरसतामे नीरसता ताकब नहि। काव्यक गंभीरताके ताकब कविक गहनतम अंतरंग अन्वेषण थिक। आजुक कविता एकटा नव दिशा ग्रहण कयलक अछि। जे प्रतीक परम्परा मैथिली कविताक मधुर स्वरोमे शिथिल बुझना जाइत छल, वैह आइ नव कवितामे चमकैत दृष्टिगोचर भऽ रहल अछि। आइ गद्य कविताक शैली बनि गेल अछि। कोमल कांत पदावली रहबे करय से अनिवार्य नहि, मुदा ओहिमे हृदय कंपित के निहार शब्दावली रहब अनिवार्य थिक। आजुक नव कवि यथार्थतः नव कविक मार्गक निर्माण कऽ रहला अछि आ ओहि मार्ग के सम्यक रूपे देख प्रकाशन करब आ नव प्रेरणा देब आलोचक लोकनि के काज थिक। आइ नव कविताक चर्चा कऽ रहल छी तँ सुनै छी एहने सन काव्य पाठ।
1: पहिल कविताक शीर्षक थिक

दुनिया में। बरती करम आपे च पांच छह दुनिया में, सब ठा झूठे आई सांच छह दुनिया में। बरती करम आपे च पांच छह दुनिया में, सब ठा झूठे आई सांच छह दुनिया में। सिमसल जारन सौंकी भानस भात हेतई, सिमसल जारन सौंकी भानस भात

डेग डेग आ शब्द शब्द पर छै आंकुश, डेग डेग आ शब्द शब्द पर छै आंकुश, प्रतिपल प्रतिशोधीक जांच छै दुनिया में, प्रतिपल प्रतिशोधीक जांच।

पहाड़ बनल छै ई जिंदगी, जकरा हिए नहीं छौ पांच छै दुनिया में, जकरा हिए नहीं छौ पांच छै दुनिया में। सोझा में सोझमतिया

देखू परखू केहन नाच छै दुनिया में, बरतिक रम आ पेच पाँच छै दुनिया में, धुआं संग पझैल आँच छै दुनिया में, भीतर अम्मत कोत कांच छै दुनिया में। दोसर कविता के शीर्षक थिक परिचिति। एक जोर चिड़ै उड़ जाइत अछि आकाश देश, एक जोर चिड़ै उड़ जाइत अछि आकाश देश, मस्ती में गबैत जौवनक गीत संगीत, छोड़ि सब हित मीत, पाँखि में पुरजोर शक्ति भरि, छुबि लैछ गगन आनन्दे मगन। एक जोर चिड़ै उड़ जाइत अछि आकाश देश, मस्ती में गबैत यौवनक गीत संगीत, छोड़ि सब हितमीत, पाँखि में पुरजोर शक्ति भरि, छुबि लैछ गगन आनन्दे मगन। मुदा आब भऽ गेल छैक सब बाट बन्न, मुदा आब भऽ

गेल छैक सब बाट बन्न, जैत तो जैत कतौ, सब सीमा तो कऽ लेलक पार, हाय रे कपार। माइक चोराओल कोसलैता सधिते समाप्त भऽ गेलै इलबाइस, मुदा आब भऽ गेल छैक सब बाट बन्न, जैत तो जैत कतौ, सब सीमा तो कऽ लेलक पार, हाय रे कपार। माइक चोराओल कोसलैता सधिते समाप्त भऽ गेलै इलबाइस, एम्हर झमा कऽ खसैत छथि माय, एम्हर झमा कऽ खसैत छथि माय। खसि पड़ैत छनि बापक माथक पाग, बेटा बेटीक नव उड़ानसँ। माइक चोराओल कोसलैता सधिते समाप्त भऽ गेलै इलबाइस, एम्हर झमा कऽ खसैत छथि माय। खसि पड़ैत छनि बापक माथक पाग, बेटा बेटीक नव उड़ानसँ। मायके बूझल छनि संतानक उड़ानक सीमा, मायके बूझल छनि संतानक उड़ानक सीमा। ओ पार केने छथि 50 वसंत, अनुभवक पेटार छथि तीत मीठक, ई तँ प्रवेश कयलक अछि बैसेमे। मायके बूझल छनि संतानक उड़ानक सीमा, ओ पार केने छथि 50 वसंत, अनुभवक पेटार छथि तीत मीठक, ई तँ प्रवेश कयलक अछि बैसेमे। देखाउँसमे लोक बिसरि जाइत अछि अपन अस्तित्व, देखाउँसमे लोक बिसरि जाइत अछि अपन अस्तित्व, विचलित भऽ जाइत अछि बाटसँ। सशक्तिकरणक ई सोपान नहि जे ओंघरा कऽ खसि पड़ी, तोड़ि दी नवताक नाम पर ठाढ़ कयल सब सभ्यताक अट्टालिकाकेँ। देखाउँसमे लोक बिसरि जाइत अछि अपन अस्तित्व, विचलित भऽ जाइत अछि बाटसँ। सशक्तिकरणक ई सोपान नहि जे ओंघरा कऽ खसि पड़ी, तोड़ि दी नवताक नाम पर ठाढ़ कयल सब सभ्यताक अट्टालिकाकेँ। भूमंडलीकरणक एहि युगमे, भूमंडलीकरणक एहि युगमे कतबो घोर भट्ठा भऽ जाओ संस्कार आ संस्कृति, भूमंडलीकरणक एहि युगमे कतबो घोर मट्ठा भऽ जाओ संस्कार आ संस्कृति, मुदा पेरिस आ पटना किन्नहु नहि भऽ सकै छै कखनो एक, मुदा पेरिस आ पटना किन्नहु नहि भऽ सकै छै कखनो एक। कारण दुनूक अपन फराक फराक परिचिति छै, दुनूक अपन फराक फराक परिचिति छै, दुनूक अपन फराक फराक परिचिति छै। अंतमे पुनः एकटा गीत, आइ काल्हि ई जति

में काटी मारी, अपने में काटी मारी, निखातर में जाई छई, दोबर के कीनी रहल जकरा लग पाई छई, दोबर के कीनी रहल जकरा लग पाई छई। चान आ सुरूज धरा छोरी।

लोक आब अन्न छोरी, लोक आब अन्न छोरी, लोके के खाई छई दूबर के कीनी रहल जकरा लग पाई छई, दूबर के कीनी रहल जकरा लग पाई छई। सूप महक भट्ट

0: आई छई दो बर कैंकी निरहल जकरा लग पाई छई आई काल्हि इज्जत हवा में उड़ियाई छई दो बर कैंकी निरहल जकरा लग पाई छई दो बर कैंकी निरहल जकरा लग पाई छई दो बर कैंकी निरहल जकरे लग पाई छई।
1: फूल चंद्र झा प्रवीण से अपने लोकन सुन रहल छलूं काव्य पाठ। वास्तव में आजुक नव कवि यथार्थतः क्रांतिकारी छथि, नवीनताक पक्षधर छथि। नव कविताक संबंध में कतेक गोटे के आपत्ति छन जे ओ शब्दाडंबर मात्र थिक, मुदा जाधिर ओकरा में सार्थकता आ प्रेषणीयता होइत अछि ताधिर ओ कोनो शैली में किएक नहीं हुए कविताक पद सँ क्यों फराक नहीं कऽ सकैत अछि। परिवर्तनक संग उपमान में सेहो परिवर्तन आबि रहल अछि। सामाजिक स्थिति जाहि क्रम में परिवर्तित होइत रहैत अछि, युग चेतना जेना बदलैत अछि, ताहि संगे कलाक माध्यम, शैली, प्रकार आ छन्दादि सहगामी विचरण प्रक्रियाक सिद्धांत बदलैत रहैत अछि। कोमल संगीत प्रायः गीतक प्रतीक थिक, यथार्थ के गीतक पाँति द्वारा नहीं बानल जा सकैत अछि, कारण गीत बुद्धिक सब बत्ती मिझा हमरा लोकन के एकटा दिव्य लोक में प्रतिष्ठित कऽ दैत अछि। गीत संगीत सँ मोनक भाव व्यक्त भऽ जाइत अछि, से अनुभूति अपनो लोकन प्राप्त कऽ सकैत छी।

0: विदुषी शारदा सिन्हा के गाउल ए गीतक संग अब अपने लोकन से चलवाक आज्ञा चाहे छी। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे मैथिली में हमारा कार्यक्रम सिंगरहार। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।

गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर-19 और अंडर-23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन

0: आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फु कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4N को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनके बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। ये कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री गडकरी ने

0: लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
1: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
2: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
3: Provisionally, we are looking at a 10% increase.
4: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4,000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4,418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है, ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
3: Other operating income is not included.
0: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: नागालैंड के चूमो केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध IED विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपेन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
6: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले

0: के जवाब में की गई। वहीं ईरानी, जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमेरिकी हमलों की निंदा करते हुए अमेरिका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीषा।
1: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस: India and US engage for balanced and commercially meaningful trade pact, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, dismisses media reports of deadlock in trade talks. India's total exports jumps over $232 billion, registering growth of 11.37% during first quarter of current fiscal. Former AAP leader Tahir Hussain and 4 others convicted for killing of IB officer during 2020 Delhi riots. The US and Iran exchange another wave of strikes as dispute over control of Strait of Hormuz raises tension in the region. In cricket, India scripts history beating England by 270 runs in first ever women's test at the Lords. And 16 Indian boxers enter finals at Asian Under-19 and Under-23 championships in Jakarta. And now the news in detail. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with US Trade Representative Jamieson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Goyal today began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Minister of Economy, Trade and Business Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the India-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology.

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका एक मुतवाजिन और तिजारती लिहाज से मौसर तिजारती माहदे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने तिजारती मुजाकिरात में तातुल से मुतालिक मीडिया की खबरों को मुस्तरद कर दिया। रवां माली बरस की पहली सहमाही में भारत की मजमुई बरामदात 232 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज कर गईं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले 11.37% ज़्यादा हैं। आम आदमी पार्टी के साबिक लीडर ताहिर हुसैन और दीगर चार अफराद को साल 2020 के दिल्ली फसादात के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अफसर अंकित शर्मा के कत्ल के मामले में मुजरिम करार दिया गया है। अमरीका और ईरान ने एक बार फिर एक दूसरे पर हमले किए हैं। आबनाए हुरमुज पर कंट्रोल के तनाज़े के बायस खत्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। ख्वातीन क्रिकेट में भारत ने तारीख रकम करते हुए लॉर्ड्स के मैदान में खेले गए पहले ख्वातीन टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया। और जकार्ता में जारी 19 साल और 23 साल तक की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कम से कम चांदी का तमगा यकीनी बना लिया है। अब

0: बेजाब्ता गियों में नामजद तमाम 8 मुलजिमीन की अदालती तहवील में मजीद 14 दिन की तौसी कर दी है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज प्रतिभा नारायणन ने हुक्म दिया कि मुलजिमों को दोबारा 27 जुलाई को अदालत के सामने पेश किया जाए। खसूसी तहकीकती टीम SIT ने भी अपनी छानबीन शेयर करते हुए धर्म सेना के सदर संतोष दुबे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीबन 1 घंटे तक पूछताछ की। मुजवजा एक मुल्क एक इंतखाब फ्रेमवर्क के इम्कान पर गौर कर रही मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी JPC ने आज लखनऊ में मुख्तलिफ शोबों के शराकत दारों और माहरीन से तबादला ख्याल किया। ये कमेटी मुल्कगीर मुशावरत के हिस्से के तौर पर उत्तर प्रदेश के 2 रोज़ा दौरे पर है। भारतीय महकमे मौसमियात ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मगरबी बंगाल, आसाम, सिक्किम और मेघालय में भी कल शदीद बारिश हो सकती है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का गुजर श्री गंगानगर, हिसार, मुरादाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, बालूरघाट और फिर मणिपुर के मशरक जुनूब मशरक की जानिब जारी रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कारेकल में कल मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि साहिली आंध्र प्रदेश में गर्म मौसमी हालात बरकरार रहेंगे। दिल्ली में महकमे मौसमियात ने कल मतला जुजवी अब्र आलूद रहने और तेज़ हवाओं के चलने की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कौमी राजधानी में कल ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 36 से 38 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। नई दिल्ली से अक्षत की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: खवातीन क्रिकेट में आज लॉर्ड्स के मैदान में पहली मरतबा खेले जाने वाले खवातीन क्रिकेट टेस्ट मैच में हरमनप्रीत कौर की क्यादत में भारतीय टीम ने मेज़बान इंग्लैंड के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल की। भारत ने इंग्लैंड को 270 रन से शिकस्त दी। जीत के लिए 457 रन के निशाने का पीछा करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन लंच से पहले अपनी दूसरी इनिंग्स में 186 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की जानिब से स्नेह राणा ने 4 विकेट जबकि सयाली सतघरे, क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट हासिल किए। भारत ने कल चाय के वक्फे पर अपनी दूसरी इनिंग्स 7 विकेट पर 341 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी और इंग्लैंड को जीत के लिए 457 रन का निशाना दिया था। जकार्ता में 19 साल और 23 साल तक की बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 23 साल तक की उम्र के जुमरे में भारत के 8 मर्द और खवातीन मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए हैं। इस तरह 7 मुक्केबाज सेमीफाइनल में पहुंचे हैं और कांसे का तमगा हासिल किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका एक मुतवाजिन और तिजारती लिहाज से मौसर तिजारती माहदे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने तिजारती मुजाकरात में तातुल से मुतालिक मीडिया की खबरों को मुस्तरद कर दिया। रवां माली बरस की पहली सहमाही में भारत की मजमू बरामदात 232 अरब अमरीकी डॉलर से तजावज़ कर गई, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 11.37% ज़्यादा हैं। आम आदमी पार्टी के साबिक लीडर ताहिर हुसैन और दीगर 4 अफराद को साल 2020 के दिल्ली फसादात के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अफसर अंकित शर्मा के कत्ल के मामले में मुजरिम करार दिया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। अच्छा, नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। एक पुरानी कहावत है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ये पंक्ति पानी के पर्यायवाची अर्थों के साथ साथ जल के अप्रतिम महत्व को भी दर्शाती है। हमारे देश में विशाल भूमिगत जल भंडार मौजूद है, लेकिन हाल के दशकों में इन संसाधनों को अत्यधिक दोहन, घटती गुणवत्ता, सीमित विनियमन के कारण बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा है, जिससे भविष्य में जल की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। बढ़ते शहरीकरण, वर्षा के बदलते पैटर्न और घटते भूजल स्तर के साथ सवाल उठ खड़ा हुआ है कि हम भविष्य के लिए जल को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। आज बचाया गया पानी का हर बूंद भविष्य के लिए सुरक्षा कवच है। हमारे देश की जल सुरक्षा केवल बड़े बांधों या नदियों पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि प्रत्येक नागरिक अपने घर में वर्षा जल का प्रबंधन कैसे करता है। वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाकर जहां पानी के लिए नगरपालिका की आपूर्ति पर निर्भरता घटाई जा सकती है, वहीं पर्यावरण संरक्षण में भी

0: सक्रिय योगदान दिया जा सकता है। बढ़ते भूजल संकट ने प्रभावी प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। वर्षा जल संचयन के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। आज हम जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुमंत नारायण जी। स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद मैडम।
0: श्रोता, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूले। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम के शुरुआत में सुमन जी, हम ये जानना चाहेंगे कैच द रेन के बारे में। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जल संचय की अपील की थी लोगों से और कहा था कि वर्षा का जो बूंद बूंद जो है वो हमें बचाना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस अभियान के बारे में?
1: धन्यवाद मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक बार फिर से कैच द रेन की इंटेंसिफाई करने के लिए, इसको एक मास मूवमेंट बनाने के लिए सबसे अपील किया है। उन्होंने हमको 5 बिंदुओं पे एक्शन लेने के लिए अपील भी किया है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रत्येक घर में, समाज में, वर्क प्लेस में अपनाएं। दूसरा, उन्होंने कहा है कि रिचार्ज पिट को, रिचार्ज शाफ्ट को अप्रोप्रिएट जगह पे इंस्टॉल करा जाए। अपने हमारे ट्रेडिशनल बॉडीज हैं, जैसे बाउलीज होती थी, कुएं होते थे, उनको रिस्टोर किया जाए। इसी क्रम में ये भी कहा गया है कि क्या हमारे जैसे पुराने तालाब हैं या वाटर रिजर्वॉयर्स हैं जिनमें सिल्ट जमा होने से उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो क्या उस कैपेसिटी को हम डीसिल्ट करके उनकी कैपेसिटी को रिस्टोर करें ताकि अधिक से अधिक वहाँ पे मॉनसून का जल एकत्रित हो सके। और अंत में मैक्सिमम जितना हम वृक्षारोपण कर सकें ताकि इन वाटर रिटेंशन एरियाज के निकटतम जितना ग्रीन कवरेज बढ़ेगी उतना ही जल संरक्षण भी अधिक होगा।
0: हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से रवि जवालिया जी। रवि जी, अपना सवाल पूछिए।
2: हाँ जी, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार
2: जी, और विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ सर, आप कैसे हैं सर?
1: मैं ठीक हूँ रवि, आप बताएं। आप तो गंगा नगरी में हैं, आप तो गंगा की नगरी से बोल रहे हैं।
2: जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, हरिद्वार गंगा की नगरी है, गंगा पवित्र नदी है राष्ट्र में। मैं जानना चाहता हूँ कि वर्षा का जल बचाने के लिए एक आम नागरिक उसमें किस प्रकार से अपना योगदान देना दे सकता है सर?
1: रवि जी, आपने तो जैसे मेरे मन की बात छीन ली, जैसे मैं सबको इस प्रोग्राम के माध्यम से सबको बताना ही चाहता था। और यदि मैं सबसे पहले बताऊं, हम लोग आप रवि जी कहाँ रहते हैं? आपकी कॉलोनी है, आपका अपना घर है, कैसे?
0: हमारा संपर्क इनसे टूट गया, हालांकि ये हमारी बात सुन पा रहे हैं।
1: ओके, सो मैं ये मानता हूँ कि रवि जी किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, एक अपार्टमेंट में हैं। तो रवि जी, यदि आपका ऐसा है तो इस कॉलोनी में कम्युनिटी बेस्ड प्रत्येक घर में, जैसे हमारे वर्षा हुई, सारी छतों पे पानी एकत्रित होता है, क्या हम उसको पाइप के माध्यम से एक रिचार्ज पिट, एक कॉमन एरिया में गड्ढे खोद के, मे बी 3x3x3 का गड्ढा खोद कर उसमें कुछ ग्रेवल और सैंड टाइप से डाल सके ताकि जल सभी छतों से जो बहे वो व्यर्थ होने के अपेक्षा में उस गड्ढे में एकत्रित हो जाए ताकि धीमे धीमे वो भूजल को भी बढ़ा सके?
0: भूजल का स्तर इससे बढ़ता है और भूजल का जो स्तर गिर रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है कि वर्षा जल संचयन किया जाए। तो क्या जो आम आदमी के लिए आपने जो बात बताई कि वर्षा जल का संचयन किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और कितना खर्च आएगा अगर हम वर्षा जल संचयन करना चाहें अपने घर की छतों पर तो?
1: थैंक यू मैडम, और इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे बचपन में हम

0: लोग सर्वप्रथम पहले कहते थे कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए
1: जी।
0: कहते थे पहली बारिश से जो धूल निकल जाए, धूल मिट्टी निकल जाए, उसके पश्चात नहाना चाहिए। उसी तरह से जैसे हमारे छतों पे अगर धूल मिट्टी है तो फर्स्ट फ्लश जो अंग्रेजी में कहा जाता है, वो फर्स्ट फ्लश का पानी सारी धूल मिट्टी को साफ कर दे। तो छतों पे अगर हमारे एकत्रित हमारे छत का एरिया निर्धारित होता है सभी के घरों के छत, उसको पाइप के माध्यम से जैसे मैंने पहले बताया नीचे ले जाएं, लूज सैंड ऑफकोर्स ये सब उस रीजन के हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन और जियोलॉजिकल कंडीशन, वहाँ कैसी भूमि कैसी है, वहाँ का एक्विफर लेवल कैसा है, उस पे निर्भर करेगा। बट यदि मैं एक जनरल ज्ञान दूँ तो फर्स्ट फ्लश सिस्टम लगाएं, सैंड का प्रयोग करें, बजरी डाल लें ताकि पानी दलदल बनने के बजाय वो सीधे भूजल में जाए, और चारकोल या कार्बन फिल्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बोलूँ तो मल्टीपल लेयर फिल्टर, ताकि जो अगर कोई धूल मिट्टी आ रही है वो भी फिल्टर होके ताकि भूजल में जब जाए तो वो स्वच्छ पानी जाए। इसका खर्चा अंदाजन अगर ये 3x3x3 का करते हैं तो मुझे बताया गया कि 10 से 15 हज़ार। ऑफकोर्स ये रीजन स्पेसिफिक होगा, वहाँ पे पत्थर की क्या है, भूमि कैसी है, उस पे निर्धारित करेगा, पर अंदाजन इतना खर्चा आना चाहिए। जो कि अगर हमारे एक कॉलोनी में हम बनाने की कोशिश करें तो एक सार्वजनिक रूप से ये शायद, चूंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य, हमारे अपने भविष्य के निर्भर करता है इस इन चीजों पे, तो शायद मेरा मानना है कि हम इतना खर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।
1: हमारे दूसरे श्रोता हैं सासाराम बिहार से अमित
2: जी। नमस्कार। मेरा ये सवाल था कि जैसे हम लोग रेन हार्वेस्टिंग का जिसे सरकार की तरफ से कुछ जिसे कैसे अभी घर सूर्य घर योजना के तहत बहुत व्यापक तौर से इसको व्यापक तौर पर सरकार प्रचार प्रसार करे, उसी टाइप से इसको भी एक लेकर जल संचय को लेकर बहुत लोग सोचते हैं कि घर में हम रेन हार्वेस्टिंग करें या फिर अपने कॉलोनी में जैसे सर अभी बता रहे थे कि इसको संचय करने का क्या तरीका हो सकता है, कैसे इसमें सरकार कुछ सब्सिडी दे ताकि अधिक से अधिक लोग इस ओर झुकाव करें और बचाने के लिए इस बारे में सोचे।
0: अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का, और आपके माध्यम से मैं आपके सभी अपने सभी भाइयों बहनों और बाकियों को भी ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने जल संचय जन भागीदारी नाम की एक अभियान का इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत हमारा प्रयत्न है कि कैसे, जैसे ये नाम ही सजेस्ट करता है, जल संचय जन भागीदारी, तो कैसे अधिकाधिक इसमें जनता, समुदाय, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाएं, उद्योग और जो कहते हैं ना नॉन गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स, उनका भी अधिक से अधिक इसमें वो सम्मिलित हो सके। और सम्मिलित होने का मतलब ये है, जैसे इसमें कई उदाहरण भी मैं देना चाहूँगा
1: जी।
0: कुछ एग्जांपल अगर बोलूँ तो छत्तीसगढ़ का कोरिया डिस्ट्रिक्ट है, और इसको माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने एक और मन की बात में भी इसका जिक्र किया है। वहां के किसानों ने अपने 5% भूमि जल संरक्षण के लिए यूटिलाइज किया। उसी क्रम में जैसे बानसकांठा डिस्ट्रिक्ट है, वहां की बानस डेयरी ने वाटर कंजर्वेशन के लिए अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन किया। मैं इस तरह एग्जाम्पल दे सकता हूँ, नॉर्थ त्रिपुरा में एक कम्युनिटी करीब 500 घर हैं, वहाँ कम्युनिटी ने मिलकर ही अपने सभी घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाया और इम्प्लीमेंट किया। तो सरकार तो अपना काम कर ही रही है, मगर सबसे बड़ी बात इस अभियान का या इस इनिशिएटिव का मैं बोलूँ तो इसमें जन जागरूकता एक, जन पार्टिसिपेशन दो, एंड कम्युनिटी ओनरशिप, ताकि ये मेरा भविष्य है, मेरे बच्चों का भविष्य है,
1: मेरी जिम्मेदारी है,
0: उस पे जोर डाला जा रहा है। और अधिकाधिक आप सभी जगह जानकर ये खुशी भी होगी कि JSJB जल संचय जन भागीदारी के सीरियल जो 1.0 था, जो कि 24 से 25 में था, 31 मई 2025 को खत्म हुआ था। माफी चाहूंगा यदि मेरा जवाब ज्यादा लंबा हो रहा है, बट जनता को बताना भी जरूरी है कि जो
1: है।
0: जी तो 10 लाख का टारगेट, मतलब इस पीरियड में इतने आर्टिफिशियल

0: रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था जन भागीदारी से, और जो मैंने बनस काठा का एग्जांपल दिया और जो अदर एग्जांपल जी, 10 लाख के अगेंस्ट करीब 25 लाख से अधिक स्ट्रक्चर्स बने, और उसका एक आकलन के हिसाब से 2.4 बिलियन क्यूबिक मीटर रिचार्ज हुआ। अगर मैं इसको एक इक्विवेलेंस के टर्म में बोलूं तो एक रंजीत सागर डैम है थेम रावी रिवर पे, या उसकी कैपेसिटी करीब इतनी है। तो ये मानना होगा कि 6-8 महीने में, सितंबर से लेकर मई तक, इतने स्ट्रक्चर्स बने कि उसने एक, और जन भागीदारी से बने कि उसने एक डैम के बराबर का
1: पानी इकट्ठा,
0: जल इकट्ठा एक्वीफर में कर दिया।
1: बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और तो ये भी प्रेरणा
0: है, ये सभी के लिए हौसला अफजाई का भी है, और हमको ये आगे के लिए भी इंस्पायर करती है कि हम कैसे और से आगे कर सके।
1: फोन लाइन पर उड़ीसा से है अब देशदीप दास। देशदीप जी, आप हमें सुन रहे हैं?
2: जी नमस्ते जी, नारायण जी और कनकलता जी, मेरा सादर नमन आपसे।
1: नमन,
0: प्रणाम आपको भी देशदीप जी।
2: जी नमस्ते जी। जी मेरा सवाल है
1: जी,
2: एक सामान्य आवासीय घर या बड़ी इमारत के लिए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने में कितना खर्च आता है, और इसके मुख्य कंपोनेंट्स क्या है?
0: देशदीप जी धन्यवाद। मैं मुख्य कंपोनेंट्स आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को दोबारा बता देना चाहूंगा कि इसके मुख्य आम तौर पे जो फिल्टर सो छत में पानी जो एकत्रित हुआ उसको एक पाइप के माध्यम से नीचे ले गए जमीन के स्तर पर, और जमीन में एक रिचार्ज पिट बनाया जिसमें फिल्टर लगाया, जो मैंने फर्स्ट फ्लश सिस्टम बताया, फिर मैंने सैंड का सो ताकि सैंड ऊपर फाइन मटेरियल हो, नीचे ग्रेवल हो ताकि वो पानी को दलदल ना बने या मिट्टी इकट्ठा ना हो, तो और धीमे धीमे सीप करे। इस तरह से बड़ी ही सिंपल तरीके से एक आम नागरिक, आपके और मेरे जैसे लोग, इस भूजल को मतलब रिचार्ज करने के लिए प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक समाज इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। बहुत ही सिंपल प्रणाली है, इसको अपनाएं और अपने और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें।
1: एक बात और बताइए कि क्या ये जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है, ये सिर्फ नई इमारतों में ही लगाया जा सकता है, या जो पुराने घर बने हुए हैं कहीं पर भी इसको स्थापित किया जा सकता है?
0: मैडम, इसको कहीं भी लगाया जा सकता है, क्योंकि जब वर्षा होती है
1: जी,
0: वो पुराने और नए घरों में डिफ्रेंशिएट नहीं करती, वर्षा तो प्रकृति से आ रही है। ये हमको ध्यान देना है कि जो पुरानी अगर इमारत है तो जो छत है उस कितनी समतल है, क्या स्लोप है, उससे वो निर्धारित, ताकि जो पाइप में जो पानी एकत्रित हो, इधर उधर एकत्रित होने के बजाय पूरा अधिक से अधिक जल पाइप के माध्यम से भूजल तक पहुंच जाए। शॉर्ट आंसर, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। लॉन्ग आंसर, मैंने आपको बताया।
1: इस तरह का जो पानी जो इकट्ठा किया जाता है, वो क्या पीने में और खाना बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है?
0: बहुत ही अच्छा सवाल किया मैडम आपने। इस तरह से पानी हम लोग ये सोचेंगे कि अगर जैसे फर्स्ट फ्लश से सारी धूल मिट्टी निकल गई, फिर हम इसको भूजल में रिचार्ज करें। अगर हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया है, फिल्टर्ड ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ है, इनफैक्ट आज भी जो हम दोहन कर रहे हैं, जिन भी डिस्ट्रिक्ट्स में या गांवों में या ब्लॉक्स में हम दोहन कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर दोहन कर रहे हैं, वहां तो हम आराम से इस्तेमाल कर रहे हैं,
1: उसी तरह से भी कर सकते हैं। रमाकांत वाजपेयी जी हैं उत्तर प्रदेश से।
3: नमस्कार
1: रमाकांत जी।
0: नमस्कार
3: रमाकांत
0: जी। नमस्ते।
3: मैं ये पूछना चाहता था कि जिस तरह से जल सुरक्षा और जल पुनर्भरण, भूगर्भीय जल पुनर्भरण, तो जल सुरक्षा का मतलब है कि जब हम 1 लीटर पानी खर्च करते थे, आज उस जगह जो है नए व्हीकल आ गए, नए नई परंपराएं हो गई, नई चीजें, इनमें हजारों लीटर पानी खत्म होता। और दूसरी चीज है भूगर्भीय जल पुनर्भरण, तो कंक्रीट का सड़क, कंक्रीट की गली, ऊपर से नीचे पानी जाता नहीं है, कुंड सूख दिए गए हैं, तो बताइए कैसे जो है जल पुनर्भरण हो।

0: रमाकांत जी, आपने बिल्कुल सही बात की कि हमारी डिमांड्स बढ़ रही हैं, हमारे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, हमारे समुदाय बढ़ रहा है, उनकी ग्रोथ जरूरी है। और कहते हैं ना, जल ही जीवन है, तो इन सब के लिए जल तो अति आवश्यक है। सो आपकी, मेरी, कनकलता मैडम की और पूरे समुदाय की यह जिम्मेदारी भी है कि कैसे हम अधिक से अधिक जल को संरक्षण कर सकें, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, चाहे समुदाय के तौर पे हम कंटूर ट्रेंचेस बनाएं, या मतलब कई सारे तरीके होते हैं आर्टिफिशियल कृत्रिम स्ट्रक्चर बनाने के। एक उनमें से है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दूसरा कि जैसे किसान, मैंने कोरिया वाला बताया, अगर कंटूर ट्रेंच बना ले या रिचार्ज पिट बना ले, सो ये छोटे छोटे तरीकों से, जैसे जमीन हुई, जैसे इकोसिस्टम हुआ, उस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया, पानी का संरक्षण किया, भूजल का अपग्रेडेशन हुआ, और साथ ही साथ ऐसे समझे कि जो बारिश, अगर सरफेस रन ऑफ या पानी का व्यर्थ बह जाती, वो पानी मैंने एकत्रित कर लिया जो मैं अपने भविष्य में इस्तेमाल कर सकता
1: भविष्य के
0: हूं।
1: लिए निवेश है।
0: भविष्य का बिल्कुल निवेश है, जैसे हम पिगी बैंक में अपने एक एक पैसे डालते
1: जैसे
0: हैं,
1: बच्चे डालते हैं,
0: बिल्कुल
1: सही
0: उसी तरीके से हम अपने भविष्य के लिए एक एक बूंद को, जैसे माननीय
1: बचाना
0: प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा कि एक एक बूंद को बचाना
1: बचाना
0: है,
1: है।
0: उसी तरह हमारे प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी हो जाती है।
1: हर बूंद कीमती है।
0: जी बिल्कुल।
1: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप इस पर सवाल भेज सकते हैं। नंबर है 2331-04-81, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-44-44। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। अब हमारे साथ अगले श्रोता की भी प्रतीक्षा है, तब तक आप हमें ये बताइए सुमंत जी की जो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो प्रोसेस है, जो प्रणाली है, इसका रख रखाव भी क्या कठिन होता है, किस तरह करते हैं?
0: मैडम, बिल्कुल आपका सही सवाल है कि, बट जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बनाना, उसको कंस्ट्रक्ट करना या एस्टैब्लिश करना जितना सिंपल है, रख रखाव उससे भी अधिक मैं कहूँगा सिंपल है, कि बस साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर 6-8 महीने में एक बार, जैसे मानसून से पहले एक बार सफाई कर दिए, ताकि वो रिचार्ज होने के लिए, जैसे कहते हैं ना, तैयार है,
1: तैयार होना,
0: तो वो साफ सफाई हो गई, धूल मिट्टी हट गई, अगर कोई एक्स्ट्रा कुछ गर्द आ गई हो वो साफ हो गया, ताकि जब जल आए वो धीमे धीमे भूजल पे मतलब अपग्रेड हो जाए,
1: उसका जो स्तर ऊपर हो
0: स्तर
1: जाए।
0: ऊपर हो जाए।
1: वर्षा जल संचयन योजना 2025 की काफी चर्चा है, आप इसके बारे में श्रोताओं को थोड़ा विस्तार से बताइए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैंने पिछले उत्तर में शायद आधा ही बताया था कि जैसे JSJB जल संचय जन भागीदारी 1.0 जो 2024 से 25 चली, उसमें क्या हुआ। अब ये अवसर मुझे आपके प्रश्न से मिलता है कि 2025 से 26 जो जल संचय जन भागीदारी, जिसको हम 2.0 कहते हैं, वो 1 जून 2025 को स्टार्ट हुई थी और 31 मई 2026 को ख़त्म हुई है। उसके अंतर्गत भी देश से बहुत करीब 700 डिस्ट्रिक्ट्स, वहाँ पे वहाँ की जनता ने, वहाँ के क्राउड ने, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स ने, वहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ने, वहाँ की इंडस्ट्री ने, वहाँ के NGOs ने, सब ने मिलकर जो आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया रूफ टॉप रेन वाटर या हार्वेस्टिंग, या फिर जैसे रिचार्ज पिट हुआ या रिचार्ज शाफ्ट हुआ, इस तरह के जो करीब 18-19 तरीके के लो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स हैं, 1 करोड़ का टारगेट हमारा, हमने इंटरनली जो जो हमारे लिए सेट किया गया था, उस 1 करोड़ टारगेट के अगेंस्ट पूरे भारतवर्ष से करीब 1.5 करोड़ स्ट्रक्चर्स बन
1: बन
0: चुके हैं।
1: ज्यादा बन गए,
0: मतलब
1: जितना लक्ष्य था
0: उस
1: उससे
0: लक्ष्य
1: ज्यादा।
0: से

0: 50% अधिक बने। और मैंने बताया ना कि अगर 2.4 BCM जो कि करीब 23-24 लाख स्ट्रक्चर से बने थे जितना रिचार्ज हुआ था, तो हम अभी ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका इसका कितना फायदा हमारे आने वाले समय में दिखेगा। सो इसमें भी जन समुदाय भागीदारी, नॉन गवर्नमेंटल, ऑफकोर्स सरकार तो कंट्रीब्यूट कर ही रही है,
1: जी,
0: बट सभी लोग
1: लोगों की भागीदारी बहुत
0: बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई भी कहते हैं ना, कोई भी, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी ये फोकस है कि जैसे इसको मास मूवमेंट बनाया जाए, कैसे इसकी जन ओनरशिप, कम्युनिटी ओनरशिप हो, ये हमारा भी प्रयत्न है कि इसको हम आगे से आगे कैसे ले के जा पाए। इनफैक्ट आज जो आपका रेडियो का कार्यक्रम है,
1: जी,
0: ये एक अपने आप में एक माध्यम है कि लोगों की अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए, लोगों को कैसे पता चले कि आप जैसे आपके स्टूडियो में मैं 3-4 लोगों को देख सकता हूं, जब हम अपने घर जाएं क्या हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो हम भी कंट्रीब्यूट
1: कर
0: करेंगे।
1: सके, आपने कहा लोगों तक हम पहुंच सके। देखिए शिमला से एक सवाल आया है राकेश जी का। राकेश जी
2: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला जिले की कोटखाई से।
1: नमस्कार।
2: और मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे कि हमारे सर्दी में जो कई बार जो है माइनस में तापमान चलता है और हमारी जो है बर्फबारी होती है काफी कोटखाई क्षेत्र में, तो मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो बर्फ का जो पानी है उसको किस तरह से जो है संरक्षण किया जा सकता है।
0: राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का, बिकॉज आप शिमलाई के लिए नहीं, ये प्रश्न मेरे ख्याल से हमारे पहाड़ी राज्यों में कई डिस्ट्रिक्ट्स पे ये लागू किया जा सकता है।
1: लद्दाख के बारे में बताइए।
0: आई एम सो ग्लैड आपने ये पूछा। इनफैक्ट लद्दाख का एक अभी कुछ हफ्तों पहले ही मुझे एक एग्जांपल बताया गया था कि लद्दाख में कैसे लोग अपना वाटर कंजर्वेशन या जल संरक्षण कर रहे हैं। वहाँ डिटेल्स तो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, मगर जल स्तूपा का कॉन्सेप्ट वो लोग लाए हैं कि एक बर्फ के एक स्तूप बनाते हैं और उस स्तूप से ताकि वो धीमे धीमे जब वो पानी गलता जाए तो विंटर में जाड़ों में वो पानी एकत्रित हो गया, बर्फ बन गई, और वो समर में जब वो गलना स्टार्ट होती है तो धीमे धीमे पाइप के माध्यम से मेन स्ट्रीम में ले जाया जाता है। तो राकेश जी आपने बहुत सही सवाल पूछा कि हम शिमला हो, लद्दाख हो, सिक्किम में ये सब एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ऐसी गुड प्रैक्टिसेस अपनाई जा सकती हैं। हमने सभी राज्यों से यह शेयर भी किया है और आप वेबसाइट भी अगर अपने वेबसाइट देखेंगे तो भी आपको इसके विस्तृत जानकारी मिल सकती है। बट बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का।
1: एक और श्रोता हमारे साथ है विवेक। विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। विवेक जी
3: नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव जयपुर से बोल रहा हूँ
1: जी।
3: सर मेरा प्रश्न ये था, जैसे सोलर के लिए बहुत मार्केटिंग है, काफी लोग फोन आते हैं तो हम लोग इससे करा भी लेते हैं, बहुत सोलर के लिए जैसे अच्छा रेस्पॉन्स है, इस तरह के हम लोग जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए या कोई टोल फ्री नंबर या कोई संस्थाएं सरकारी जिसके लिए प्रेरित करें, हमें बताएं कैसे लगाएं, क्या करें, तो एक यूजर फ्रेंडली चीज होना तो इसको करा जा सकता है।
0: विवेक जी बहुत सही सवाल है कि आम नागरिक के लिए इसको कैसे आसान किया जाए। तो आपको और मैडम आपके माध्यम से बाकी श्रोताओं को भी ये जानकर बताने से मुझे हर्ष हो रहा है कि देश भर में करीब 700 जल शक्ति केंद्रास हैं। जैसे हमारे कृषि विज्ञान केवीकेज हैं
1: जी,
0: उसी तरह जल शक्ति केंद्रास हैं हर, अब ये जयपुर से कर रहे हैं तो मुझे उनका टोल फ्री नंबर नहीं पता है, मगर डिस्ट्रिक्ट में जल शक्ति केंद्र में एक टोल फ्री नंबर है, आप उनको फोन करें, आपको जो सिंपल तकनीकी राय लेनी हो कि हम कैसे संरक्षण, बिकॉज जयपुर की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है अपितु शिमला से या उत्तर प्रदेश, जो हमारे डिफरेंट श्रोता हुए हैं, तो आपको रीजन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सबसे आसान और सुविधाजनक समाधान होगा वो आपको आपका जल शक्ति केंद्र ही बता सकता है लोकल रिक्वायरमेंट।
1: जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन पर चर्चा कर रहे हैं।

0: आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुमंत नारायण। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन के DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। सुमंत जी, मिशन अमृत सरोवर की चर्चा होती है और अटल भूजल योजना की भी चर्चा काफी हो रही है। ये सारी जो पहले है सरकार की ओर से की जा रही है ताकि वर्षा जल का संचयन किया जा सके, भूजल के स्तर को बढ़ाया जा सके, इन सब के बारे में आप कुल मिलाकर क्या कहना चाहेंगे?
1: धन्यवाद मैडम आपके इस सवाल का। आप यही समझे कि जो होल ऑफ गवर्नमेंट होल ऑफ सोसाइटी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये मोटो है कि कैसे सरकार के सभी अंग होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से अडॉप्ट करके बनाए, उसी के अंतर्गत आपने अमृत सरोवर बोला या अटल भूजल योजना बोली, एक एक सरकार का अंग ये कंट्रीब्यूट कर रहा है कि कैसे भूजल, कहीं पे सरोवर बनेगा कि बड़े सरोवर बने, कहीं पे भूजल डायरेक्ट इंजेक्शन वेल से चला जाए, किसी और स्कीम के अंतर्गत अगर रिचार्ज पिट बन जाए, या अगर मैं होल ऑफ सोसाइटी की बात करूं तो अगर मैं रायपुर का एग्जांपल दूं तो वहां पे इंडस्ट्री एसोसिएशन ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनवाए। इस तरह मैं एग्जांपल्स देश भर में अनगिनत एग्जांपल्स हैं जो जन भागीदारी होती जा रही है, मगर अभी रास्ता लंबा है। हम सबको अपना, रिपीट कर रहा हूं, मगर अपना और अपने बच्चों का भविष्य इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सुदृढ़ करना आवश्यक,
0: बच्चों को भी जागरूक किया जाना चाहिए इसके लिए।
1: एब्सोल्युटली कहते हैं ना कि बच्चों से ही जितना बिहेवियर चेंज होता है वो सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो बच्चों के सिलेबस में
0: इसको जोड़ा जाना चाहिए।
1: कई कक्षाओं में जुड़ा हुआ है, जैसे छठवीं सातवीं कक्षा के सिलेबस में चैप्टर्स हैं। इसको हम और अवेयरनेस मॉडल्स, जैसे एक ये रेडियो प्रोग्राम हुआ या यूट्यूब हुआ या सोशल मीडिया हुआ,
0: आकाशवाणी पर भी इसके बारे में प्रचार किया जा रहा है।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी पे डेली जिंगल्स चल रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे शामिल हो सकते हैं, कैसे इस मिशन को या अभियान को हम और इंटेंसिफाई कर सकते हैं।
0: सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में भी प्रभावी भूजल प्रबंधन आवश्यक है, और जैसा कि आपने बताया कि जो बावड़ियां हैं पुरानी, उन सबको भी, उनका ही पुनरुद्धार करने की कोशिश चल रही है ताकि वर्षा जल का संचयन किया जा सके। अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुमंत नारायण, स्टूडियो में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? कार्यक्रम के संबंध में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIRNSDtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कनक लता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

आप आए बाहर आइए। इस फिल्म में आप सुन रहे थे आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया गीत। और अब लीजिए हम आपको अगला गीत सुनवा रहे हैं जिसे लिखा है शकील बदायूनी ने, रवि ने संगीत दिया है, मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को गाया है। फिल्म का नाम है दो बदन।

फिल्म दो बदन का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शकील बदायूनी के बोल थे, रवि का संगीत था, फिल्म थी दो बदन। मेरे हम सफ़र, इस फिल्म में आइए हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश और लता मंगेशकर का गाया गीत, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत से संवारा कल्याण जी आनंद जी ने।

और अब लीजिए किशोर कुमार की आवाज़ में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म अमानुष का ये गीत। शब्द इंदीवर के हैं, संगीत श्यामल मित्रा का।

लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, प्रेम धवन का लिखा और चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया ये गीत फिल्म जबक से।

ये रात फिर ना आएगी। इस फिल्म में SH बिहारी का लिखा और OP नैयर का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में। ये है फिल्म सेहरा का गीत जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, रामलाल का संगीत है, मोहम्मद रफी की आवाज है।

फिल्म निकाह का ये गीत आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में। हसन कमाल के बोल थे, रवि का संगीत था।

और अब लीजिए एक सपेरा एक लुटेरा इस फिल्म का गीत सुनिए। असद भोपाली ने इस गीत को लिखा है, उषा खन्ना ने संगीत दिया है और इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने।

अभी जो गीत आप सुन रहे थे उसे गाया था मुकेश ने, आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, दान सिंह का संगीत था, फिल्म थी माई लव। और अब लीजिए कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनिए, फिल्म दो बदन से। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा है, रवि ने संगीतबद्ध

0: शकील बदायूनी के लिखे, नौशाद के संगीत बद्धकीय मोहम्मद रफ़ी के गाए फिल्म राम और श्याम के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन

0: और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फूक वॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने कहा कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में सहयोग और सहायता के लिए वियतनाम सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 6 अब भी लापता हैं। राज्य के मत्स्य मंत्री राजेश महतो ने कहा कि सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाज और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अंडर 19 में 8 महिला खिलाड़ी फाइनल में पहुंच चुकी हैं। पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल टुडे डिसमिस्ड मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ अ डेडलॉक इन इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स, कॉलिंग देम एज कंप्लीटली फॉल्स, बेसलेस एंड मिसलीडिंग। In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with the US trade representative Jameson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said, both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal today began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Ministry of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the Indian-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to the same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to the same month last year. The major drivers of merchandise exports growth in June include gems and jewellery, engineering goods, organic and inorganic chemicals, electronic goods and rice. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives following a boat capsizing in West Bengal's South 24 Parganas district. social media post, the president said her thoughts and prayers are with the affected family.